0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

0: Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन है चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओ टू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते जब निकले
1: या तो बैंगर या फिर बैन बैन
0: बैन या भाई तेरा बस लिखते गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन है चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए

किसी का कैजुअल सवाल मुझे तो सोच में ही डाल दिया यार। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम, सिंपली आफ्टरनून जुड़ गई है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और किसी ने मुझे ऐसे ही कैजुअली पूछा कि यार लाइफ में क्या एक्साइटिंग चल रहा है बताओ जरा, एंड समटाइम्स आपका आंसर होता है नहीं कुछ भी नहीं, एंड यू फील दैट ओ माई गॉड लाइफ कितनी बोरिंग है हमारी, नो हॉलीडेज बुक्ड, कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है, नो ड्रामेटिक अचीवमेंट, बस आपका वही रूटीन, ऑफिस, घर, बच्चे, एवरीथिंग नॉर्मल लाइफ। बट ये मैं सोच रही थी कि हमने नॉर्मल को इतना बोरिंग वर्ड क्यों दे दिया है ना, क्यों बना दिया। अ डे वेयर एवरीवन यू लव इज ओके, एक ऐसा दिन जहाँ आप अपना काम कर रहे हो, एक ऐसा दिन जहाँ पर बिजी रहना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग है, यानी आपके पास काम है और आप फिट हो, आप हेल्दी हो वो काम करने के लिए, एक ऐसा दिन जहाँ पर आप अपने घर वालों के साथ में सुकून से एक डिनर कर पा रहे हो, विच शुड बी कंसिडर्ड एक्चुअली अ प्रीटी गुड डे रादर देन जस्ट अ बोरिंग नॉर्मल रूटीन डे, है ना। तो बस हर दिन को मेमोरेबल बनाने का प्रेशर होना ही नहीं चाहिए ना, कि हर आपकी जिंदगी का हर मोड़ एक्साइटिंग होना चाहिए, कभी कभार नॉर्मल इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। तो आज इस मंडे मॉर्निंग के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि मंडे को तो हमने इतना बदनाम करके रखा है, बोरिंग सा, डल सा, लेकिन कभी कभार डल, बोरिंग, नॉर्मल, ये सब भी अपने आप में ब्लेसिंग है। माइक से दिल तक आफ्रीन है आपके साथ, और दिन की शुरुआत करते हुए दिस लवली मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग। जग लगाना आपका इंतजार कर रहा है और मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virtua la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
4: Hello,
5: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
4: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
5: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
4: हाँ जी.
5: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
4: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
5: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे 3 लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
4: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
5: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
4: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
5: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम.
4: आपका पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई है.
5: दफा 300 ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
4: है. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार
5: होगा आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ पे श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
4: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
5: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
4: हाँ बताइए
5: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
4: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
5: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे
4: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: खट खट.
8: कौन है?
7: अज्जू.
8: अज्जू कौन?
7: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए. होए
8: खट खट. हु दैट?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: सॉन्ग यार, विशाल ददलानी और शालमली कोलगर की आवाज में ये गाना गिविंग द राइट काइंड ऑफ एनर्जी दिस मंडे मॉर्निंग. मंडे है यार, देखते देखते हफ्ता शुरू होके मंडे भी लग गया है और यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस मेरा इंतजार कर रहे हैं. हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगी मैं सभी को जिन्होंने मुझे मैसेज किया है. गुड वाली मॉर्निंग जी, हैव अ ब्लेस्ड डे. हरपाल संधू फ्रॉम दुखान कहते हैं, उसके अलावा यहाँ पर उमेर कहते हैं गुड मॉर्निंग आफरीन, और उसके अलावा काफी बड़ा मैसेज है इनका मेरे पहले से रिलेटेड बात से रिलेटेड. उसके अलावा गुड मॉर्निंग, जस्ट कॉलिंग टू रिक्वेस्ट द स्वीटेस्ट डे अहेड फॉर माई फेवरेट आर्जे. हाउ स्वीट इज दैट इमरान. गुड मॉर्निंग आफरीन कहते हुए अलीशान, गुड मॉर्निंग अलीशान. Good morning, Robert D'Souza from Amchi, Mumbai. So well, so many good morning messages here. 5001896 is my number. You can connect here. और आप भी अपना good morning का पैगाम जो है हमारे तक पहुंचा सकते हो.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
2: Weather update.
0: वेल जी वेल, वेदर क्या कहता है उस पर तो नजर डालें. 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, 30 डिग्री सेल्सियस मिनिमम कहते हुए ह्यूमिडिटी तो आज चरम पर है, 81%, मच हायर देन यस्टरडे. हवाएं चल रही है धीमी धीमी सी, जो बिल्कुल पता नहीं लगी फिलहाल मुझे तो. 13 किलोमीटर पर आवर पर हवाएं चल रही है. ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से दिस वीकेंड इज गोना गेट इवन मोर प्लेजेंट. बस इसी उम्मीद के साथ अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए श्रेया घोषाल की आवाज में क्यूट सा गाना राइट ऑन मिर्ची.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
6: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
5: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
7: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
8: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

यार मुझे तो लगता है द परफेक्ट काइंड ऑफ एनर्जी वी नीड मंडे मॉर्निंग विशाल ददलानी ने ये गाने के साथ हमको दे दी है. देखो वैसे तो हम हमारी एनर्जी जो है हर रोज सुबह में यहाँ पर एयरवेव्स के थ्रू जो है रेडियो एयरवेव्स के थ्रू आप तक पहुँचा देते हैं, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे स्पेशली इस वक्त पर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो हमें सुन रहे होते हैं स्कूल जाते समय. एंड मेरे सामने क्या सोचा मिर्ची जो है बच्चों के स्कूल के कुछ एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ ख़त्म होने वाले हैं, कुछ के ख़त्म हो चुके हैं, तो यार बच्चों को अब फिर से एक थोड़ी सी हमारे मिर्ची रिचार्ज की ज़रूरत तो ज़रूर है. और बस यही करने आज मिर्ची की टीम पहुँचने वाली है DMIS school. If any kids out there who is from DMIS and listening to me right now, drop in a message yaar. 5001896 is my WhatsApp number. Kyunki Mirchi ki team aaj wahan hone wali hai chote bachcho ke saath mein ek entertainment program lekar, and this is in association with GWM aur Mirchi lekar aa raha hai ye Mirchi Recharge. Aur aise hi aaj jo hum ye iski shuruaat hai wo hum Doha Modern Indian School se kar rahe hain. Uske baad agar aapke school mein bhi, agar aapke bachcho ke स्कूल में भी अगर आप चाहते हैं कि मिर्ची की टीम आए, देन यू ऑल्सो हैव टू जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज. 5001896 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो यू नेवर नो हम आपके भी बच्चों के स्कूल में पहुंच जाएंगे. तो बस एंटरटेनमेंट का जो डोज है वो मिर्ची बराबर हर जगह पहुंचा ही देता है. एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एंड कैच अप विद सम रियली स्मार्ट किड्स टुडे विद दिस. अगला गाना लकी अली, श्रेया घोषाल और विशाल ददलानी की आवाज में फ्रॉम द मूवी बचना है हसीनो. Right here on Mirchi, it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
3: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
2: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेज, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट। और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड, गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
8: आएंगे दीदी।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
10: 89.6
12: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
13: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, वो सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
12: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।
14: रुक रुक,

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: वेल मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7 बजे की तरफ. आप सुन रहे हो आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड संजू राठौड़ का गाना आपके लिए इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

देखो एज अ पेरेंट्स ना हर कोई बहुत सारी चीजें सोचता है, बहुत सारे फैक्टर्स सोचता है जब अपने बच्चों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी चूज करने की बात आती है। जैसे कोर्स फीस कैंपस करियर अपॉर्चुनिटीज एंड सो मेनी थिंग्स। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और एक चीज जो स्पेशली इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में चेक करनी चाहिए वो है इज द प्रोग्राम इंटरनेशनली एक्रेडिटेड। यस, और इसीलिए UDST की ये अपडेट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस टेक्नोलॉजी के 6 प्रोग्राम्स को मिली है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फ्रॉम ABET विच इज US बेस्ड organization that evaluates engineering, computing and technology programs against established quality standards. Ab isme information system hai, information technology hai, chemical, electrical aur mechanical engineering ke programs hai, plus mechanical engineering technology diploma included bhi hai. Ab accreditation ka simple matlab kya hota hai main aapko bataun. Sirf university ka naam nahi, these specific programs were independently evaluated including inka curriculum, faculty, student outcomes, facilities and continuous improvement. So parents aur students ke liye ye kafi useful takeaway hai ki university short लिस्ट करते वक्त सिर्फ कौन सा कोर्स है ये मत पूछिए, कहीं पर भी हो इज दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एक्रेडिटेड, ये बहुत जरूरी है। एंड जैसे मैंने बताया है कतर में रहते हुए UDST एक कॉलेज है जो बहुत से बच्चे देसी बच्चे जो है वो ऑप्ट करते हैं एंड दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल। मैं हूं आफरीन आपके साथ राइटर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefef La virgo alla murga. Milci murga.
1: हेलो
2: हाय, ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो
2: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4198393।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार, अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं कभी वो दबा रहे हैं, आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा।
1: तो वही मैं सुन रहा था, मतलब
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी।
2: कुकड़ों को
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
5: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स, रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
6: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
5: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
7: खट खट,
8: हू देयर?
7: बनता
8: बनता हूँ।
7: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
8: खट खट, हू देयर?
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: Well, बातों में उलझाने के लिए तो हम आते नहीं हैं यहाँ पर, बस एंटरटेन करने के लिए आते हैं। Well, that was Tanishq Bagchi, Raghav और Asis Kaur की आवाज में टाइटल ट्रैक ऑफ द मूवी टीवी मौज, that's all how you say, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। माई गॉड, आई एम सो डन विद दिस लॉन्ग टाइटल्स ऑफ दिस मूवी। यार छोटे छोटे अच्छे रहते हैं यार, लगान, गुलाम, वही हमारे लिए सही है। वेल, आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ लाइट्स, कैमरा, सीन टेस्ट। वक्त से थोड़ा सा पहले सोचा कि हमारे ये जो ऑडियंस है जो इस वक्त पर ट्रैवल करते हैं उन्हें भी इसमें मौका मिले पार्टिसिपेट करने का। तो मैं बता दूँ भाई होता क्या है इसमें, सीन सुनाती हूँ मैं आपको और आपने गेस करना होता है कि बॉस ये कौन सी मूवी से सीन है। सो आज का सीन कुछ ऐसा है, एंड यू गॉट टू सेंड मी योर आंसर्स ऑन व्हाट्सएप, दैट इज 5000 1896।
1: लाइट्स, कैमरा, सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: नंगा काम करूं कैसे डैड, सब थर्ड क्लास स्क्रिप्ट आते हैं मेरे पास। ये देखो डैड, बेवड़ा बादशाह, मवाली मकसूद, मुन्ना भाई MBBS, राजा टपोरी, सब अच्छे स्क्रिप्ट तो वहां मेरे शाहरुख लेके जाते हैं।
3: ये स्क्रिप्ट तो कभी पढ़ता भी है क्या?
2: सब डिटेल में पढ़ता हूँ।
0: ओके ओके, व्हिच मूवी इज दिस? दिस इंडीड हैड अ वेरी ह्यूज हिंट इन इट इटसेल्फ, है ना? 5000 1896। मेरे कोई हिंट्स की आज जरूरत है ही नहीं आपको, इस पूरे डायलॉग में ही एक अच्छा खासा हिंट था। सो वेल, आंसर्स भेजिए, अपने व्हाट्सएप कीजिए मुझे 5000 1896, एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ आंसर्स। लेट मी गो एंड रिस्पॉन्ड टू देम। मीनवाइल अगला गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में एंजॉय कीजिए। Go on, Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
6: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kafi hai. Ab sirf 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट। और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
8: कट-कट।
9: अबे कौन है?
8: उत्तपा।
9: उत्तपा कौन?
8: उत्तपा में दो डोसा और सांभर ऑर्डर किया था, आया क्या?
9: खट-खट।
10: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

0: दैट इज शुद्ध देसी रोमांस जिगर सैया और प्रिया सरैया की आवाज में गुलाबी गाना. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग. और आज मैंने एक ऐसी गुगली फेंकी थी आपको, मुझे लगा था कि यार इधर तो गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी अभी भी गलती हो गई. मजा आ गया मुझे. वेल किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट हम खेल रहे हैं. सीन सुनाया है, फिर इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, पहले सीन सुन ले.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट.
2: का काम करूं कैसे डैड? सब थर्ड क्लास स्क्रिप्ट आते मेरे पास. ये देखो डैड, बेवड़ा बादशाह, मवाली मकसूद, मुन्ना भाई MBBS, राजा टपोरी, सब अच्छे स्क्रिप्ट तो आमिर शाहरुख लेके जाते
0: हैं.
2: ये स्क्रिप्ट तो कभी पढ़ता नहीं
0: है. कौन सी मूवी है ये? हेलो,
3: गुड मॉर्निंग आफरीन.
0: हाँ जी, गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स. दिस इज कुमार.
0: हाय कुमार.
3: And this recording you've played is from movie Mona by MBBS, starring Sanjay Dutt and Arshad Varsi.
0: Okay, thank you so much. Chakravyuh mein phans gaye hain aap, Kumar, clearly. Hello.
4: Hi, good morning.
0: Hi.
4: It's movie Sanju.
0: ओके, दैट इज द राइट आंसर. कि ये जो मूवी है इसमें जरूर आपको लगा संजय दत्त होंगे, लेकिन ये संजू मूवी है जो रणबीर कपूर ने ये किरदार निभाया था. यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं. उजैर का मैसेज है, देन आई हैव हुजैब, खुमैल, शाहनवाज, देन आई हैव हुज दिस. अपना नाम भी लिखा करो ताकि मैं यहाँ पे अनाउंस कर पाऊँ, ठीक है ना? संजू संजू संजू बहुत सारे लोगों ने कहा है, लेकिन अपने नाम नहीं लिखा है, ठीक है? सो यस, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं. त्रिशा का मैसेज है, चार्ली, सैवियो, एंड यस, इट इज इंडीड द राइट आंसर, समायरा, संजू. और आज मैंने संजू का डायलॉग इसलिए प्ले किया है क्योंकि
5: बॉलीवुड बर्थडे बैश.
0: यस, संजय दत्त का बर्थडे नहीं है, रणबीर कपूर का बर्थडे है, जिन्होंने संजय दत्त का किरदार निभाया था इन दिस मूवी संजू. एंड यर यू नो, संजय दत्त का ये किरदार निभाने के लिए रणबीर कपूर वॉज रियली स्केप्टिकल, ही वॉज नॉट श्योर अबाउट इट, बट वंस ही गॉट इन टू द स्किन, लिटरली ही रियली डिड अ गुड जॉब. एंड इनफैक्ट एक बार संजय दत्त ने सरप्राइज बिना कुछ कहे एंट्री भी कर दी थी संजू के सेट्स पर, एंड उनके सामने ही रणबीर कपूर ने परफॉर्म किया है. आई एक्चुअली लाइक दिस मूवी. एंड कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, सुरु निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में. मैं भी बढ़िया हूँ और आप भी बढ़िया हो, बस आपका दिन भी इस तरह से बढ़िया रहे. और मिर्ची, इट्स ऑल.

देखिए वैसे तो हम अपने घर की चाबी जो है किसी रैंडम इंसान को नहीं देते, लेकिन फोन नंबर, ईमेल, क्यूआईडी डिटेल्स, अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स हम कितने कैजुअली ऑनलाइन शेयर कर देते हैं ना। और इसी पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कतर्स नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने फ्रेश अवेयरनेस वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। तो बस फोकस जो था इस वर्कशॉप का कतर के पर्सनल डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ पर और कंपनीज और एम्प्लॉयज को पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफली हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने पर था। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा हम सबको पता होनी चाहिए कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल डेटा ब्रीच होता है और उसे किसी इंडिविजुअल्स डेटा या प्राइवेसी को सीरियस हार्म का रिस्क है तो कतर के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टेड इंडिविजुअल्स और कंसर्न्ड अथॉरिटी को 72 आवर्स के अंदर नोटिफाई करना होता है। और हमारी तरफ से सिंपल रूल ये होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई फॉर्म या ऐप अननेसेसरी पर्सनल डिटेल्स मांगे, बस एक सेकेंड थोड़ा से रुक जाइए, पूछ लीजिए अपने आप को कि ये इन्फॉर्मेशन की एक्चुअली जरूरत होनी चाहिए ये ऐप को, उसी के बाद उसे अलाउ कीजिए, बिकॉज ऑनलाइन दुनिया में सिर्फ पासवर्ड ही प्राइवेट नहीं होता है, ये बात समझ लीजिए दोस्त। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो भी आपकी ही प्रॉपर्टी है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग

0: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: दोस्ती कहीं कुछ सुले मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
1: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
3: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: नो सॉरी नो थैंक यू।
1: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
3: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
3: FM
4: मिर्ची वन।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए, सवाल क्या है
0: सर? वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: वेल स्वैग से स्वागत करती हुई मैं आफरीन आपके साथ जुड़ गई हूँ ये अगले घंटे में। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। एंड अगले घंटे में आते ही आपको तो पता है हमारा यूजुअल रूटीन
2: गोल्ड अपडेट।
1: यस, इसे हम आगे नहीं बढ़ाते शो को जब तक कि हम आपको सही गोल्ड अपडेट्स नहीं देते हैं। इनफैक्ट आपके लिए आज तो फायदे की बात है, गोल्ड के रेट्स और भी ज्यादा गिर गए हैं। यस, पैम्प 1 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 567 का 3 रियाल, वेर एज 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2652 का 3 रियाल। 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5235 का 3 रियाल, वेर एज 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16179 का 3 रियाल। एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 60059 का 3 रियाल। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल्फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतार। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स
4: एंड अर्न कतार एयरवेज एवियोस टुडे।
3: विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vidva la burga.
1: Mirchi, burga.
2: हेलो
1: हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में है क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
1: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
2: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
2: हेलो
1: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा अभी
1: आप देख बदतमीज से बात मत करिए आप समझ गया मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा
2: हूँ
1: मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
2: आराम कर दिया तुम
1: जीना बता रहा हूँ भाग यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है
5: अरे रिलैक्स लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है
4: हाफ पे बैक मतलब
5: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली
4: वाओ किस किस चीज पे
5: रेडीमेड गारमेंट्स साड़ीज चूड़ीदार फुटवेयर लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज
4: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी
5: बिल्कुल वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो तो देर किस बात की हेड टू लूलू हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा लूलू वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप
6: अरे वाह आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन
7: हाँ जी 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स संडे सिर्फ QR 5 से स्वर्ल्स QR 9 में ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से
6: तो देर किस बात की अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ डेरी क्वीन हैप्पी टेस्ट्स गुड तो देर किस बात की सब कुछ आधे प्राइस में
8: फेस्टिविटीज की प्लानिंग इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग बट व्हेन इट कम्स टू Planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8th November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already. To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
9: Cut, cut.
10: Who that?
9: Zaheer.
10: Zaheer. जाहिर हूँ
9: जाहिर सी बात है मैं ही हूँ और कोई नहीं
10: खटखट हो दैट
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

अलीशा चिनाई की आवाज में, व्हाट अ सॉन्ग यार, मेड इन इंडिया। ये गाने में मुझे अलीशा चिनाई के साथ साथ अगर कोई और याद है तो दैट इज मिलिंद सुमन फॉर श्योर यार। और जहां हम इंडिया की बात कर ही रहे हैं तो जरा इंडिया के एक्सचेंज रेट पर भी नजर डालते हैं, साथ साथ दूसरे कंट्रीज के भी। वेल, जैसे आज का एक्सचेंज रेट कहता है, कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.27, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.15, बांग्लादेशी टाका इज एट 33.79 और एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं श्रीलंकन रुपीज दैट इज 90.64 एंड नेपाली रुपीज जो है वो मिल रहे हैं आपको 42.01। ये थी आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, वन एंड ओनली 9.6 machine one, it's hard.

0: वेल, क्या आपका मानना है कि कतर इज एन एक्सपेंसिव कंट्री इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म? तो फिर शायद आपका ये कहना गलत हो सकता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और टूरिज्म से जुड़ी हुई ये अगली खबर।
1: क्या खबर कतर?
0: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लेटेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कतर हैज रिकॉर्डेड द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट इन टूरिज्म प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबली। यस, अब प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस सुन के ये मत समझना कि कल से होटल्स और फ्लाइट सडनली चीप हो गए हैं। बेसिकली ये देखता है कि एक ट्रैवलर के लिए डेस्टिनेशन ओवरऑल कितना कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक एकोमोडेशन, ट्रैवल रिलेटेड कॉस्ट। और कतर का स्कोर इस कैटेगरी में 49% इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से कतर 10 प्लेसेस जंप करके 47th ग्लोबली आ गया है। ओवरऑल टूरिज्म डेवलपमेंट स्कोर भी 2024 के कंपैरिजन में 6% इंप्रूव हुआ है, द फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट इन द मिडिल ईस्ट। यस, दैट्स ट्रू। सो नेक्स्ट टाइम अगर इंडिया से कोई फ्रेंड बोले कि यार कतर तो आना है बॉस, लेकिन सुना है बहुत महंगा है, तो फिर उन्हें आप ये नंबर्स बता सकते हैं। वेल, मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

जानते हो सोनम कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर, इन सब में एक कनेक्शन है, वो भी दोहा से जुड़ा हुआ। And well, that is the jewelry connection. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को right here on Mirchi Mornings. And over the years, Bollywood का Doha Jewelry and Watches Exhibition के साथ काफी glamorous connection रहा है. Sonam Kapoor से लेकर Alia Bhatt और फिर Kareena Kapoor Khan तक, we have seen some pretty big Bollywood names associated with and attending previous editions. और दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन इज बैक फॉर इट्स 22nd एडिशन फ्रॉम 28 सितंबर टू 3rd अक्टूबर एट DECC. वेल, इस बार 49 प्लस एग्जीबिटर्स और 500 से ज्यादा ब्रांड्स अंडर वन रूफ होने वाले हैं विद ज्वेलरी एंड वॉचेस फ्रॉम कतर एंड अराउंड द वर्ल्ड, प्लस अ डेडिकेटेड कतरी डिजाइनर्स, इंडियन एंड टर्किश पैवेलियंस भी होने वाले हैं। एंड वन इंटरेस्टिंग न्यू एडिशन दिस ईयर इज क्रिस्टीज, द फेमस ऑक्शन हाउस फाउंडेड वे बैक इन 1766. Can you believe that? They'll have a dedicated space plus specialist talks around jewelry and watches. Ab Doha jewelry watch exhibition generally jo hai, it attracts 30,000 visitors from more than 175 countries. Can you believe that? So ye sirf shopping exhibition nahi hai, Doha ke major luxury calendars mein se ek event hai. Ab sawal mera ye hai that is bar Bollywood se कौन इधर आएगा? What do you think? Let me know 5001896 और whom would you love to see कि यार ये कोई है, ये अगर सेलिब्रिटी हमारे कतर आ जाए तो एक मजा ही आ जावे। चलिए माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
2: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। आई ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो हो गया। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
1: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
5: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cash back. Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
4: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
6: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew! So much to do. We know education is important, but hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
7: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes, and lots of surprises. Because learning comes with responsibility, but responsibility deserves a little fun too.
6: This initiative is driven by GWM.
8: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
9: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
10: बहुत कुछ होगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afrin. It's hot.
1: 89.6 Mirchi One. It's hot. Mirchi घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9 बजे की तरफ. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को on Mirchi Mornings. It's hot.
2: Time check. In association.

Well, my friends, कल का दिन was definitely विराट डे. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड क्रिकेट की दुनिया से बात करते हैं एंड दैट इज कि क्रिकेट में कुछ नंबर्स ना सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं होते, वो बताते हैं कि कोई प्लेयर कितने सालों से कंसिस्टेंटली एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहा है. एंड विराट कोहली ने कल एक ऐसा ही नंबर टच किया है, 15,000 रन्स का. वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट तिरुवनंतपुरम में फर्स्ट ओडीआई में विराट कोहली बिकेम ओनली द सेकेंड बैटर इन ओडीआई हिस्ट्री टू स्कोर 15,000 रन्स आफ्टर सचिन तेंदुलकर. बट एक बड़ा सेट है इसके पीछे, वो ये है कि सचिन तेंदुलकर ने ये जो गोल था, ये 15,000 ओडीआई रन्स का, इन्होंने पूरा किया था इन 377 इनिंग्स, वेर एज विराट गॉट देयर इन जस्ट 303, मेकिंग हिम द फास्टेस्ट एवर टू द लैंडमार्क. और माइलस्टोन टच करके रुक गए बिल्कुल भी नहीं. कोहली वेंट ऑन टू स्कोर एन अनबीटन 139 ऑफ जस्ट 88 बॉल्स इंक्लूडिंग 9 सिक्सेस, ब्रिंगिंग अप हिज 55th ओडीआई सेंचुरी एज इंडिया चेज 296 एंड बीट वेस्ट इंडीज बाय 8 विकेट्स. और मैच के बाद विराट ने एक बात जो कही जो मुझे एक्चुअली बहुत ना विराट लाइक लगी. His focus has never really been on milestones, but on doing the job for the team. 15,000 runs, 55 ODI, hundreds, और फिर भी focus next job पर. Maybe इसी को longevity कहते हैं. Records आपके पीछे बनते जाए और आपकी नजर अब भी next run पर हो. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ. Right here on Mirchi, it's hot.

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirci, burka.
2: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा?
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहा है, ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
3: हेलो हेलो,
2: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये? है
2: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
3: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
3: अच्छा भैया मेरे
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
7: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है?
6: हाफ पे बैक मतलब?
7: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
6: वाओ, किस किस चीज पे?
7: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
6: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी?
7: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
8: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
9: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स। संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
8: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
10: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
11: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
12: दोनों मिलेगा।
5: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, 89.6
13: FM, मिर्ची 1, इट्स हॉट।

जानते हो बॉलीवुड का एक ए लिस्टर एक्टर है जो सोशल मीडिया पर है ही नहीं, लेकिन सोशल मीडिया इनके बारे में कभी बात करते थकता नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और बात कर रही है आफरीन अबाउट रणबीर कपूर। यस, रणबीर कपूर का क्या आप जानते हो, सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है, बट कहा यह जाता है दैट सीक्रेटली ही हैज सम अकाउंट जस्ट कीप एन आई ऑफ एवरीथिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। लेकिन आज रणबीर कपूर के बारे में बात क्यों कर रही है आफरीन? Yes, happy birthday रणबीर कपूर who turns 44 today and let me tell you, रणबीर कपूर नाम आने से पहले ना उनके कैरेक्टर्स के नाम मुझे याद आते हैं, जॉर्डन, बर्फी, बनी, संजू, है ना। एंड बर्थडे पर एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। रॉकस्टार में रणबीर को प्रीतमपुरा के जनार्दन जाकर, राइट, दैट वाज हिज नेम, यस, से जॉर्डन बनना था। तो रोल प्रिपेयर करने के लिए रणबीर और डायरेक्टर इम्तियाज अली एक्चुअली प्रीतमपुरा गए और एक जट फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। रणबीर ने ऑब्जर्व किया कि वो कैसे बात करते हैं और कैसे चलते हैं, फैमिली के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इवन देयर क्लोथ्स एंड फूड हैबिट्स फॉर दैट मैटर। और जॉर्डन को म्यूजिशियन बिलीवेबल बनाने के लिए रणबीर ने गिटार सीखा, प्लस एआर रहमान के स्टूडियो में टाइम स्पेंड किया वॉचिंग हाउ रहमान वर्कड। और एक लवली पीस ऑफ ट्रिविया इज दिस दैट रॉकस्टार वाज आल्सो द फर्स्ट एंड ओनली फिल्म इन विच रणबीर शेयर्ड द स्क्रीन विथ हिज ग्रैंड अंकल शमी कपूर, द ओरिजिनल रॉक स्टार ऑफ इंडिया इंडियन सिनेमा, है ना। वेल, रणबीर कपूर को बहुत बहुत मुबारक आज का दिन मिर्ची की तरफ से। और बस यही कहना चाहूंगी कि ऐसे कैरेक्टर्स करते रहो रणबीर जो आइकॉनिक रहे, अब तक के आपने बहुत ही बढ़िया किया है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सच कैरेक्टर्स। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: चले फिर आज मोहब्बत को डीकोड करें। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइटर अन मिर्ची मॉर्निंग्स। और वैसे तो मोहब्बत समझना ही मुश्किल है, लेकिन आज इसके एक एक अल्फाज एक एक लेटर का मतलब समझते हैं मेरी शायरी के अंदाज में।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: अर्ज किया है कि तुम क्या जानो मोहब्बत में म का मतलब, मिल जाए तो मालामाल, ना मिले तो मुहाल। मुहाल यानी वो चीज जो बड़ी मुश्किल से मिलती हो या फिर नामुमकिन सी लगे, बड़ी मुश्किल लगे। तुम क्या जानो मोहब्बत में म का मतलब, मिल जाए तो मालामाल, ना मिले तो मुहाल। तुम क्या जानो मोहब्बत में ह का मतलब, मिल जाए तो हकीकत, ना मिले तो हताशा। तुम क्या जानो मोहब्बत में ब का मतलब, मिल जाए तो बेमिसाल, ना मिले तो बेहाल। और तुम क्या जानो मोहब्बत में त का मतलब, मिल जाए तो तकदीर, ना मिले तो तहमत। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा। आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us how old were you when you made the song?
2: What I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था। सारे बादल नीचे आ चुके। And उस बीच में ना I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है। देखो ना देखो it's raining, it's raining, it's raining.
1: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा Black Sheep के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, It's out.
0: Bollywood Boldal, Bollywood Bollywood Bollywood Boldal, only on Mirchi, It's hot.
3: खट खट,
4: कौन है?
3: इशांत।
4: इशांत कौन?
3: इशांत गदाधारी भीम इशांत।
4: खट खट, who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

वेल हाजी संधू और स्वास्ति मेहुल की आवाज में राइट हियर ये गाना ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मैं हूँ आफरीन आपके साथ. और ना ना कहते कहते मेरे यहाँ पर जाने का यानी टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है. यस, मंडे मॉर्निंग्स की यही मैं बात कहती हूँ हमेशा कि ये जितना बोरिंग साउंड करता है ना उतना हकीकत में होता नहीं है. इट्स ऑल इन द माइंड माय बॉस. तो बस यही मैं कहती हूँ कि भाई मंडे को एक नॉर्मल दिन की तरह ही ट्रीट कीजिए. जैसा आपका दिन गुजर रहा है गुजरे, और कुछ भी गलत सलत सा होता है ना तो अक्सर हम मंडे के दिन को ही ब्लेम करते हैं. अरे यार आज तो मंडे है ना, आज तो ये होना ही है. तो नहीं, ऐसा नहीं होता है. जहां हम हमारे मंडे मॉर्निंग्स की यही मैं बात कहती हूँ हमेशा कि ये जितना बोरिंग साउंड करता है ना उतना हकीकत में होता नहीं है. इट्स ऑल इन द माइंड माय बॉस. तो बस यही मैं कहती हूँ कि भाई मंडे को एक नॉर्मल दिन की तरह ही ट्रीट कीजिए. जैसा आपका दिन गुजर रहा है गुजरे, और कुछ भी गलत सलत सा होता है ना तो अक्सर हम मंडे के दिन को ही ब्लेम करते हैं. अरे यार आज तो मंडे है ना, आज तो ये होना ही है.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं।
2: oh, no.
0: फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, किसी काउंटडाउन की रैंकिंग के बारे में कोई सवाल, बिंदास आके हिट मी अप। हफ्ते के टॉप 10 गानों के काउंटडाउन में एक नई एंट्री है। शो पर हम अपना 90s एंड 2000 का इंडी पॉप क्लासिक बजाने वाले हैं, सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। संजू राठौर की आवाज की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है बैंगल्स। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रहे गाना, 16 हफ्ते हो गए हैं इसको काउंटडाउन पर। बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद रोमांटिक बैलेड ऑफ द सीजन, राघव कौशिक एंड रेखा भारद्वाज जी की आवाज में, राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन। दिस वन हैज टेकन इंटरनेट बाय स्टॉर्म। गाने का नाम है दरमिया। मुसाफिर कैफे शो से है ये गाना एंड अपेरेंटली इट्स अ लव सॉन्ग ऑफ द सीजन। 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दरमिया, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 10।

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's hot
1: Mirchi
2: Iska bana uska bana sabka bana Murga murga Nugget wala murga Mirchi murga
3: Hello
4: Hi ye से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
3: हेलो
4: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4198 3983।
5: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
3: वही मैं सुधरा था, मतलब।
4: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
3: हाँ जी।
4: कुकड़ू को
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: गाना इंडी टॉप टेन
0: कनिका के साथ ओन मिर्ची नंबर 7।
7: हो चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संग जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, हर्ष का म्यूजिक, गाने का नाम है साड़ी सुन। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। उससे पहले एक नई नवेली एंट्री, KDS 54 एंड रॉन का गाना फीचरिंग श्रेया घोषाल, गाने का नाम है कल्याणी। इस गाने ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 8।
1: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. इन टॉप 10 गानों के बाहर इंडिपेंडेंट म्यूजिक की दुनिया इतनी डाइवर्स, इतनी वास्ट है, ऐसे इतने आर्टिस्ट, इतने गाने हैं जो शायद अभी तक आप तक पहुंचे नहीं है, लेकिन जिस दिन आप इस गाने को सुन लेंगे यू विल बी लाइक ये कहां था अभी तक। फरक का तारे ऐसे एक गाने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तारे उन गानों में से है जो धीरे धीरे लोगों ने डिस्कवर किया, इतना पसंद आया दैट हमारे काउंटडाउन में टॉप 10 पर है। बट आई ट्रूली बिलीव दैट वी लिव इन अ टाइम जहां हम जो भी ढूंढना चाहें हमको सब मिल जाता है। इंटरनेट, AI, तो आपको इसके आगे और क्या सर्च करना चाहिए, 10 मोर थिंग्स यू शुड नो अबाउट इट, सब कुछ बता देता है। तो इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में हमारी क्यूरियोसिटी इज अ बिगेस्ट करेंसी। क्यूरियोसिटी टेक्स अस टू प्लेसेस, एंड अगर यू आर वन ऑफ दोज क्यूरियस पीपल जिनको नए आर्टिस्ट, नए गाने डिस्कवर करने हैं, वो गाने जो अभी तक आपके एल्गोरिदम के थ्रू आप तक नहीं पहुंचे, देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड विजिट गाना डिस्कवर। ऑल द न्यू प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट एक साथ क्यूरेटेड फॉर यू, हिंदी के साथ साथ पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं, एंड 10/10 गारंटी लेके कह सकती हूँ व्हेन यू लिसन टू दोस सॉन्ग्स यू विल बी लाइक यार ये गाने अभी तक मुझे किसी ने क्यों नहीं सुनाए। सो फॉर ऑल यू क्यूरियस बेस्टीज, गाना डिस्कवर इज अ प्लेस फॉर यू। नाउ काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो भी उस प्लेलिस्ट में है। गाने का नाम है तारे, रिटन एंड कंपोज्ड बाय फरक, फरक का ही म्यूजिक। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार तारे इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद कृष्णा धंधन्योलीवाला का गाना बूम शाका, पिछले हफ्ते से एक नहीं, दो नहीं, तीन पोजीशन ऊपर जंप मार के बूम शाका इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दोनों गाने बैक टू बैक, फरक का तारे ऑन नंबर 6, बूम शाका ऑन नंबर 5, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 6।

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खटखट,
6: कौन है?
5: दवे।
6: दवे कौन?
5: The way you love me, आई हाय मर जावा।
6: खटखट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: I like that song.

0: आई फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: कट कट,
4: हू दैट?
3: भट्ट.
4: भट्ट? अरे भट्ट हूँ.
3: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है.
4: खट खट, हू दैट?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
6: Ghana Indie Top 10.
7: Kanika ke saath on Mirchi.
8: Number 4.

0: बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन। 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। आई एम स्टिल नॉट बोर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, हरियाणवी पॉप सॉन्ग। आई एम सैट दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @rjkanika। सितंबर जा रहा है, अक्टूबर आ रहा है, एंड आई एम श्योर आपने तो नोटिस कर ही लिया दैट मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने का सबसे पहला सिग्नल ना हमको शाम दे देती है। दिन तो वैसे ही निकलता है, मे बी आप कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, सेम ट्रैफिक, सेम काम, सेम फोन कॉल्स, लेकिन जैसे ही शाम होती है ना हवा बदलने लगती है, रोशनी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, नई आवाजें, नई तरह की आवाजें, मौसम का मिजाज ही बदल जाता है। एक तरफ हम पूरा दिन रैप कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ यू आर रियली excited to start our day. And somehow, यार मुझे पता नहीं क्यों ये शाम का वक्त बड़ा emotional लगता है. Ever since I was a little kid, शाम को खेलने के बाद घर वापस जाना, मतलब sad वाला emotional नहीं, just I am really aware of how I feel in the evenings. So obviously, full feelings वाली playlist भी है मेरे पास for these evenings. And I'm going to play my top pick for you today. गाने का नाम है शाम तन्हा by अग्नि।
2: शाम तन्हा,
0: कुछ तो है इस गाने में दैट हर साल ये गाना मुझे और अच्छा लगने लगता है। मोहन कनन ने जिस तरह से इस गाने को गाया है ब्रो, इट्स लाइक कोई रश नहीं है, ही इज नॉट पुशिंग यू टू फील समथिंग बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फील थिंग्स। @rjkanika ऑन इंस्टाग्राम पर प्लीज आके मुझे बताना कि व्हाट डिड दिस सॉन्ग मेक यू फील। मैं तो इतना कुछ शेयर कर देती हूँ, इतनी वल्नरेबल हो जाती हूँ यहाँ पे, बट कुछ खास है इस गाने में। इट विल टेक यू बैक टू समथिंग, सम मेमोरी और एन इवनिंग दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इट्स फॉर ऑल दोस इवनिंग जहाँ पर आपको लगा कि कुछ खास हुआ भी नहीं है, बट स्टिल यू फाइंड दैट स्टिलनेस एंड आप उसे कितनी बार भी जी सकते हो। अग्नि द बैंड का गाना, मोहन कनन एंड अरिजीत की आवाज में। दिस इज शाम तन्हा प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi.
2: Mirchi par, this is the Gana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani hai, bindas aake hit me up. I truly, really believe that gaane share karne se pyar badhta hai. Tabhi to it's time for what we call
0: Kanika's Kasat Classic.
2: हमारी कसर क्लासिक जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
3: डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी.
2: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
3: पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी.
2: गाने का नाम है तेरा मेरा प्यार बाय द वन एंड ओनली कुमार सानू. ये गाना 2004 में रिलीज हुआ था एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स अबाउट लव एट फर्स्ट साइट. इसकी मेलोडी में राइट देयर इन द कॉम्पोजिशन वो अर्ली 2000s वाली रोमांटिक एनर्जी है विच इज वेरी इनसेंट, थोड़ी फिल्मी बट बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड. आई हैव टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू वन ऑफ आवर लिसनर्स आरुष जो पुणे से हैं. उन्होंने इतनी बार रिक्वेस्ट किया ये गाना. आरुष दिस वन इज फॉर यू. अकॉर्डिंग टू आरुष ही इज लुकिंग फॉर लव एंड थोड़ी मुश्किल आ रही है. वो कहते हैं कि यार डेट पे जाने के लिए बात करने के लिए तो बहुत लोग हैं बट वो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग नहीं आ रही है. सो ही वॉन्ट्स टू लिसन टू दिस सॉन्ग एंड गो बैक टू दोज सिंपलर टाइम्स जब लाइफ सिंपल थी और किसी को पसंद करना एक बहुत बड़ी डील होती थी. किसी के फोन के लिए वो पूरा दिन वेट करते थे, उनका नाम स्क्रीन पे देखकर बिना रीजन स्माइल करते थे, फिर रात को सोने से पहले वो सारी कॉन्वर्सेशंस अपने दिमाग में रिप्ले करते थे. आरुष ने मुझे वो नाम बताया, मैं आपको नहीं बताऊंगी बट आई ट्रूली फील यू आरुष. दिस सॉन्ग इज लाइक अ टिकट टू सिंपलर टाइम्स जहाँ बस कॉलेज कैंपस से बस स्टॉप तक जाना, साथ में चलना ही डेट लगती थी. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. रियल लाइफ में आई माइट नॉट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट बट इस गाने में इट वर्क्स आउट. कुमार सानू की आवाज में दिस इज तेरा मेरा प्यार ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

पहला प्यार, पहली नजर वाला कुमार सानू की आवाज, ये इतना इमेजिनेटिव है। आई थिंक फर्स्ट लव का जो मेगा मैजिक है वो इसी में है, दैट उस वक्त किसी को पता ही नहीं है दैट ये मेमोरी आपकी जिंदगी की इतनी बड़ी मेमोरी बन जाएगी। कुमार सानू की आवाज में दैट वाज तेरा मेरा प्यार ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर। आओ 90s एंड 2000s के वो गाने जो आपको आज आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से सिंपल टाइम्स में ले जाते हैं हमारे साथ आके शेयर करो। मैं और अश्काय माय प्रोड्यूसर, हम दोनों आपके रिकमेंडेशंस का बेसब्री से इंतजार करते हैं। नाउ बैक द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर मी टू टेक यू टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। बाजरा हितेन शर्वी यादव का गाना, गाने का नाम है बैंगर। 4 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक बैंगर इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद मिट्टा रोर का शीशा, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले 4 हफ्तों से ये गाना नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है, दिस वीक ऑल्सो ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक, बैंगर ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi helpline.
2: Hi there. What's up? Tell me.
1: यार मुझे नींद नहीं आती.
2: Oh, no.
1: क्या करूं?
2: It's so simple, man. Just don't worry. Part time watchman का काम कर लो. Extra income भी हो जाएगी.
3: खाने का खोपड़ी तोड़. खोपड़ी तोड़.

0: कैसे इमोशंस को मेटाफर्स में डाल के अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके हमारे जो गाने लिखने वाले गीतकार हैं लिरिसिस्ट, उन्होंने दिल टूटने को क्या बखूबी बयां किया है। सो फॉर एग्जाम्पल, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, कहीं आग लगे कुछ भी हो जाए गगन गिर जाए लेकिन टूटे दिल की पीड़ को सहना इज बहुत ही मुश्किल।
1: मिर्ची कैफे।
0: वेल, इस टूटे दिल को मैं बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक के द्वारा जोड़ने की कोशिश करूंगी। मैं हूँ पारुल। शो शुरू हो गया है मिर्ची कैफे, ओनली ऑन मिर्ची। अभी आपने सुना ताल से ये ब्यूटीफुल ट्रैक, और ब्यूटीफुल का नाम ले रही हूँ तो मुझे याद आ रहे हैं अमित त्रिवेदी। अगला गाना आपके लिए लेकर आई हूँ ब्यूटीफुल। इस शो पे आज बहुत ही अमेजिंग बातचीत होने वाली है, एक गेस्ट होने वाले हैं स्पेशल मेरे साथ। आप बस यहीं बने रहिए एंड रिमेम्बर, चाहे दिल कितनी भी बार टूट जाए हमारा, लेकिन ना दिल की एक ऐसी छिपकली की पूंछ वाली टेंडेंसी होती है कि फिर से जुड़ ही जाता है हमारा दिल। वक्त लगता है पर जुड़ जाता है। अब आप कहोगे क्या गंदा मेटाफर दिया इसने यहाँ पर, बट कोई नहीं, गाने अच्छे चला रहे हो आपके लिए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, अभी आ रही हूँ लौट के वापस। इट्स हॉट।

0: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
1: Hello,
2: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
1: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबीर सिंह बोल रहा हूँ.
1: हाँ जी.
2: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
1: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
2: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे, 3 लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
1: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
2: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
1: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
2: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका
1: पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
2: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं?
1: नहीं, मत सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार होगा
2: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
1: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
2: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
1: हाँ बताइए
2: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
1: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
1: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब रुकू.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1. इट्स हॉट.

0: इज फ्रॉम 2004 की एक फिल्म कॉल्ड मीनाक्षी, रीना भारद्वाज की आवाज, राहत इंदौरी साहब के पोएटिक लिरिक्स और रहमान सर का म्यूजिक, ये मैजिकल कॉम्बिनेशन जो बनता है ना भाई इस गाने में, मजा आ गया मुझे सुनकर।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और पता है, रिश्तों की बात करो, ऐसे गूजबम्स वाली फीलिंग्स की बात करो, और एक तरफ लोग कहते हैं कि भाई जो ये प्यार है, मोहब्बत है, सेल्फ लव पहले आना चाहिए, बिकॉज लव इज नॉट टू बी फाउंड इन समवन एल्स बट इन आवरसेल्व्स। पर मुझे पता क्या लगता है, इस धरती पे जो हम ये सारे लोग भेजे गए हैं, आई डोंट थिंक जो सेल्फ लव भी है वो भी पता चलेगा जब तक आप के पास कोई और ना हो फीलिंग्स शेयर करने के लिए। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि कभी कभी ना खुशी सिर्फ तभी महसूस होती है जब आप उसे शेयर कर सको। होता है ना कि हमें कोई चाहिए बताने के लिए कि यार आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, या कोई पूछने के लिए चाहिए कि ए सुन तू ठीक है। समटाइम्स इट्स जस्ट आपके दिल की बात समझने वाला कोई, फिर आप अपने आप से प्यार करो, खुश रहो, जो भी करो, बट वी नीड पीपल अराउंड अस। नहीं, आफ्टर ऑल दिल बहुत ना समझ है, 10 बार टूट कर भी वही करता है, तो कोई तो चाहिए ना समझाने वाला आसपास। और ये अगला गाना केके की आवाज में, राइट हियर ऑन मिर्ची कैफे। एंजॉय दिस, आती हूँ वापस, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी
2: यार। तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।
9: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे

ताज शब जो चांद ने है रूठने की ठान ली, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान ली, अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली के आज हाथ थाम

0: आज शब जो चांदनी है रूठने की ठान ली, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान ली, अंधेरी शह जिंदगी को सूझती नहीं गली, कि आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली। अरे भाई, give a loud applause to this beautiful song and lyrics. कमाल करते हैं नहीं लोग, क्या लिखते हैं भाई। खोया खोया चांद फिल्म से आपने सुना ये गाना स्वानंद किरकिरे एंड अजय जहिंगरन की आवाज में।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पार्ल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और मुझे ना सच में कभी कभी मन करता है कि ये लिरिसिस्ट्स को मैं अपने सामने बिठाऊं और पूछूं कि कैसे लिखते हो इतनी अमेजिंग लिरिक्स। तो बिफोर आई डू दैट, आज मेरे पास इस गाने के लेखक स्वयं स्वानंद किरकिरे जी हैं, और मैं उनसे वो बात पूछने से पहले एक और बात पूछना चाहती हूँ जो बड़े दिन से मेरे दिल के अंदर उमड़ घुमड़ कर रही थी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वानंद किरकिरे जी।
2: मैं एक अदना सा छोटा सा क्रिएटर हूँ, गाने बनाता हूँ, स्वानंद किरकिरे नाम है मेरा, और पारुल के साथ आज बातचीत करने आया हूँ।
0: नमस्ते सर, वेलकम टू रेडियो मिर्ची। और मुझे प्लीज ये बताएं कि क्या रियल लाइफ में भी इतने एक्सक्विजिट और एक्सप्रेसिव होते हैं लिरिसिस्ट्स? जो इतना उम्दा आप लिखते हैं गानों में, क्या रियल लाइफ में भी होते हैं उतने एक्सप्रेसिव?
2: रियल लाइफ में उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते एक्चुअली लिरिसिस्ट लोग, मतलब खासकर अपने भावनाओं के बारे में। हम काफी शर्मीले होते हैं जितने भी लिरिसिस्ट को मैं जानता हूँ, और वो गीतों के जरिए बात इसीलिए कहनी पड़ती है उनको, क्योंकि उनको वैसे बात करनी नहीं आती। जिन लोगों को वैसे बात करनी आती है वो गीत क्यों लिखेंगे। थिएटर में, एक्टिंग में, सिनेमा में, मैं जब एक्टिंग करता हूँ तो मैं थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हूँ वहाँ पे, लेकिन वो कोई और किरदार बन के, अपने खुद के किरदार में मैं उतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ।
0: यही मुझे पूछना था, बिकॉज आई ऑलवेज हैड अ डाउट कि जो आप लिख देते हो ना इतना बखूबी, क्या ऐसा बोल भी पाते हो? नहीं। अच्छा एक चीज और बताया आप मुझे, प्लीज मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा गाना है जो आपने ऐसे बहुत क्विकली लिख लिया था, और कौन सा था जिसके लिए आपको बहुत वक्त लगा लिखने में?
2: बनने में था तब में बहुत वक्त लगा, बहुत वक्त। और बर्फी, आला बर्फी, वो मैंने शायद 5 मिनट में लिखा होगा, 10 मिनट। मतलब मुझे गाना दिया प्रीतम ने, मैं नीचे उतरा वहां से लेके, एक कॉफी शॉप में बैठा, मैंने गाना लिखा, अनुराग को भेजा, अनुराग बसु, उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि जा ऊपर जाके रिकॉर्ड कर दे।
0: थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट। तो गाइज, आई हैव स्वानंद किरकिरे जी, द ग्रेट लिरिसिस्ट, एक्टर, राइटर हिमसेल्फ, कंपोज भी कर रहे हैं आजकल, मैं आपको बताती हूँ। और जैसा कि इन्होंने कहा कि आला बर्फी इन्होंने खटाक से बना लिया था, तो चलो यार, मोहित चौहान की आवाज में ये गाना सुनना तो बनता है। लेट्स हियर दिस आउट। और बहुत सारे सवाल मुझे पूछने हैं लिरिसिस्ट लोगों से, सारे पूछ डालूंगी आज। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
3: ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए, बुड़ बुड़ बुड़।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
3: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
2: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: हू देयर,
4: हू आर यू,
5: हू आर यू, हू,
4: अरे हू आर यू लुकिंग फॉर मैडम?
5: खट खट, हू देयर,
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1,
7: मिर्ची,
6: इट्स हॉट।

कभी कभी सोचती हूँ कि क्या मुझे ऐसे डिक-चिक बीट्स वाले गाने या फ्लैशी लोग पसंद हैं, या क्या मुझे सिंप्लिसिटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आपको क्या ज्यादा अट्रैक्ट करता है? अभी आपने ये गाना सुना खला फिल्म से शौक। स्वानंद किरकिरे ने ये गाया है और लिखा है वरुण ग्रोवर ने। एंड यू नो, मुझे हमेशा लगता है कि तृप्ति डिमरी जो खला फिल्म में लगी है ना, द ब्यूटिफुल सिंपल इनोसेंट, वो मुझे कहीं नहीं लगी। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। ब्यूटिफुल शी लुक्ड हियर। मिर्ची कैफे सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। वेल, बातचीत चल रही है स्वानंद किरकिरे से, तो एक चीज और पूछनी बनती है। सर मुझे प्लीज ये बताएं ना, आप गाते भी हैं, लिखते भी हैं, ये गाना आपने गाया है, तो व्हेन यू आर सिंगिंग और परफॉर्मिंग और राइटिंग, क्या चीज ज्यादा मायने रखती है, सिंप्लिसिटी या एकदम ऐसे

0: डेप्थ वाली भारी शब्द, और कैसे आप ये एनालाइज कर पाते हैं कि कहाँ बिल्कुल सिंप्लिसिटी चलेगी या कहाँ डेप्थ या भारी भरकम शब्द चलेंगे? हाउ डू यू डू दैट?
1: नहीं देखिए, सिंप्लिसिटी ही वर्क करती है। डेप्थ भी सिंपल भाषा में ही अगर आप बोलेंगे तो ही डेप्थ निकल के आएगी। जीवन बहुत जटिल है, तो जीवन को जब आप सिंपल तरीके से समझाते नहीं है तो लोगों को उसका मर्म नहीं पहुंचता। सिंप्लिसिटी इज द कोर, भले कितनी भी गहरी बात हो, आपको अगर सिंपल तरीके से कहते आए, मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते की जड़ है। इट्स अ सिंपल थॉट, बट इट टच मी व्हेन आई रोट इट। नो, इट्स लाइक या नाइस।
0: देखिए, ये बात बिल्कुल प्यारी कही आपने कि लाइफ इज ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड, कितना जटिल है जीवन, तो हम शब्दों को जटिल क्यों बनाएं? और शायद इसलिए कहते हैं कि बनावटी ना ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, सिंपल क्लासिक हमेशा टिकता है। तो देखिए स्वानंद किरकिरे साहब, मेरे उल जलूल सवालों के जवाब तो दे ही रहे हैं जो मेरे मन में उमड़ घुमड़ करते हैं। साथ में ये यहाँ बैठे हैं तो मैं कैसे हो सकता है कि इनसे ये ना बोलूं कि प्लीज थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे साथ। तो इसी सिलसिले में यू नो, लेट्स गेट ऑन टू सिंगिंग अ सॉन्ग विद स्वानंद जी। और ये एक वन ऑफ माय फेवरेट्स अगेन फ्रॉम यू, ये गाना है जो आपने गाया है, लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य जी ने। चलिए ना प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ गुनगुनाइए। उमर

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।

0: वेल स्वैग से स्वागत करती हुई मैं आफरीन आपके साथ जुड़ गई हूँ ये अगले घंटे में। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। एंड अगले घंटे में आते ही आपको तो पता है हमारा यूजुअल रूटीन
1: गोल्ड अपडेट।
0: यस, इसे हम आगे नहीं बढ़ाते शो को जब तक कि हम आपको सही गोल्ड अपडेट्स नहीं देते हैं। इनफैक्ट आपके लिए आज तो फायदे की बात है, गोल्ड के रेट्स और भी ज्यादा गिर गए हैं। यस, पैम्प 1 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 567 का 3 रियाल, वेर एज 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2652 का 3 रियाल, 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5235 का 3 रियाल, वेर एज 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16179 का 3 रियाल, एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 60059 का 3 रियाल। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: चला फ्रॉम द फिल्म रंग दे बसंती, मोहित चौहान की आवाज में, एन इंटेंस सॉन्ग, राइट? मैं ना कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं दुनिया में जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, ठीक है, दे कैन नॉट एक्सप्रेस द लव या अफेक्शन या जता नहीं पाते, लेकिन ये जो हमारा खून है, ये जो इतने उबाले मारता है यार, गुस्सा तो हम सबको एक्सप्रेस करना आ जाता है, लेकिन प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों है?
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। सो द मैन हिमसेल्फ स्वानंद किरकिरे मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने कहा कि एज अ लिरिसिस्ट भी उनको रियल लाइफ में मुश्किल होती है प्यार जताने में, एक्सप्रेस करने में। प्लीज बताए ना मुझे, आपको क्या लगता है इस बारे में स्वानंद जी, क्यों हमें प्यार दिखाना या जताना नहीं आता?
2: सही बात है, हम लोगों को, हमारे और खासकर हम सभी लोगों को प्यार दिखाना नहीं आता, प्यार जताना नहीं आता। तो जब हम गाने के थ्रू कोई बात बोलते हैं तो वो बात पहुंचती है लोगों तक, और मैं भी वही हूँ, मुझे प्यार नहीं एक्सप्रेस करना आता असली जीवन में, इसलिए मैं घुमा घुमा के बातें करता हूँ और यहाँ वहाँ के गाने बनाता उल्टे सीधे।
0: ठीक है, टेढ़े मेढ़े शब्दों में ही सही, कहीं ना कहीं आप जता रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो जो वक्त था ना जब हम लेटर राइटिंग करके एक्सप्रेस करते थे या एक चिट में छोटा सा मैसेज देके चले जाते थे, अब कहाँ वो व्हाट्सएप पे इमोजी के जरिए एक्सप्रेस कर पा रहा है कोई। सिखाना पड़ेगा ना प्यार जताना, तुम सिखा दो। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो हाँ जी बोलिए
4: क्या बोलूँ जी
3: आप बोलिए ना
4: कॉल आपने किया आप बोलिए
3: कॉल मैंने किया है हेलो
4: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
3: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
4: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
3: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
4: नींद में है क्या
3: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
4: क्या बेल मेरे यहाँ बजी
3: है आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
4: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
3: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
4: हेलो
3: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
4: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
3: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
4: फोन नहीं कर रहा
3: मैं देख बदतमीज से बात मत करिए आप समझ गया मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
4: चप्पल पता
3: नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
4: आराम कर दिया तुम
3: जीना बता रहा हूँ यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
4: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
3: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं
6: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
7: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
6: Bima for your peace of mind. Terms and conditions apply.
8: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew. So much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
9: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
8: This initiative is driven by GWM.
10: Festivities keep planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% पे करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
11: Hello Sharps, our product is phenomenal, one of a kind but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain.
12: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao, profit aayega.
11: Relative se advice lo to kehte hain.
13: Kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga.
11: Isiliye main aapke paas aaya hoon promotion fund ke liye, jiske liye aap 50% equity le sakte ho.
14: Bhai kya kar raha hai tu? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट
15: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची टेक योर पार्टनर विद अस नाउ योर बिजनेस विल गो वाओ कॉल नाउ 7070-7687

0: सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। कितने सारे हमारी जिंदगी में रिश्ते होते हैं ना, लेकिन जो सबसे खास होते हैं हम सबसे ज्यादा उन्हीं को हर्ट करते हैं, उलझा लेते हैं, सुलझाते नहीं है हम। ये जो सुलझाने वाले शब्द है ना, ये सिर्फ गानों में आ रहे हैं मुझे लग रहा है।
1: मिर्ची कैफे,
2: मैं हूँ स्वानंद गिरगिरे और आप मुझे सुन रहे हैं मिर्ची कैफे पर पारुल के साथ।
0: थैंक यू सो मच कि आपने ये वक्त निकाला मेरे लिए स्वानंद जी। मैंने सुना है आप सिंगल्स भी बना रहे हैं, नए गाने लेकर आ रहे हैं, प्लीज उनके बारे में बताइए।
2: ये बहुत इंडिपेंडेंट गाने बनाने की मैंने जो एक पहल शुरू की है, फिल्म के गानों के अलावा जो इतर जो गाने बनाए हैं, मैंने 6 गाने बनाए। शोरगुल नाम का एक गाना है, मेरी जान नाम का एक गाना है, ऐसे नाम को देखिए, चांद आवारा, तो उस सीरीज में मैंने ये मेरे साथ चल बनाया है और ये बिल्कुल ही अपने लिए बनाया है, अपने हिसाब से बनाया है और खुद कंपोज भी किए हैं ये सारे गाने, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अगर ये लोगों को अच्छे लगते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यार आपके काम को पूरी स्वीकृति मिली है।
0: तो मुझे लगता है मैजिक यही लाए करता है कि कैसे आप जीवन की रियलिटीज को जो आप जी रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, उनको शब्दों में पिरोने का काम जो आप करते हैं माइंड ब्लोइंग करते हैं सर। गाते भी आप कमाल का है, तो आप प्लीज एक काम करिए मेरे लिए, जो आपका नया गाना आ रहा है इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग कॉल्ड मेरे साथ चल, ये मैं आज मिर्ची कैफे पर मैं सुनाने वाली हूँ सभी मेरे लिसनर्स को। लेकिन उसके पहले ये गाना आपको मुझे सिखाना है, ठीक है? चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा ऐसे निभा पाऊं थोड़ा बहुत। प्लीज अब मैं आपके साथ ये गाना गाऊंगी और फिर हम सारे लिसनर्स को ये आपका लिखा हुआ कंपोज किया हुआ नया गाना सुनाएंगे। लेट्स डू दिस सर।
2: ठीक है।

0: कर।
1: बहुत सुंदर। मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ ही गाओ।
0: मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। बहुत प्यारा, दिल खुश हो गया सर मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं मेरे साथ चल स्वानंद जी का गाना। एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, अभी जाइएगा मत, आ रही हूँ वापस। इट्स हॉट।

0: था तो
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
5: मिर्ची इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: ब्यूटीफुल गाने आपके लिए लेकर आती हूँ मैं मिर्ची कैफे शो पर। ये मेरा काम है और मेरा नाम है पारुल।
1: मिर्ची कैफे।
0: कृष्णा सोलो की आवाज में अभी आपने सुना रंग रेज, अमेजिंग गाना नहीं? अच्छा, आज क्योंकि स्वानंद जी यहाँ पर थे मेरे साथ, बातचीत करी हमने, एक छोटा सा पीस ऑफ एडवाइस मैं अभी यहाँ पर आपको देकर जाना चाहती हूँ आज, बिफोर आई लीव यू। अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपने नोटिस की है, आपने कीड़े देखे होंगे मैंगोज में, आपने वर्म्स या कीड़े देखे होंगे एप्पल्स में, पर क्या आपने कभी नींबू में देखा है कोई कीड़ा? नहीं ना। सो ऑलवेज रिमेम्बर, डोंट बी टू स्वीट टू द रॉन्ग पीपल, क्योंकि फिर वो ज्यादा स्वीट होना डायबिटिक बन जाता है हमारे नेचर के लिए और वो हमारे लिए ही अच्छा नहीं होता फिर, समझ रहे हैं आप? अरे यार, जो लोग आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो, तारे गिनते में छोड़ दो उनको। अरे आगे बढ़ो यार, लाइफ में चिल करो, बस अपने आप को खुश रखो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत सारा ढेर सारा प्यार आप सबको, अपना अपना ख्याल रखो, अपने अपनों का ख्याल रखो। डू कनेक्ट विद मी ऑन 7045983983 या फिर इंस्टाग्राम parul.world। मुझे बता सकते हो कैसे गाने लगे आपको आज के शो के, कैसी बातचीत लगी, आपको कौन सा गाना सुनने का मन है इस शो पे, प्लीज यू लेट मी नो। और जितने भी लोग मुझे डीएम्स करते हैं ना, अब मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा इधर उधर एक दो दिन शायद लेट हो जाती हूँ, पर रिप्लाई सबको करती हूँ। सो या प्लीज डू राइट टू मी। चलती हूँ अभी यहाँ से, सायोनारा, टाटा, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
2: जब से हो

0: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
1: मारी चोरियां चोरों से कम है के?
2: मारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
3: कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
6: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन?
7: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
6: सर मैं जब भी घर आता हूँ ना पापा जाग ही रहे होते हैं, वो सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
7: अच्छा पापा जाग रहे होते हैं तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

0: जैसे कश्मीर में पश्मीना बनता है ना, पश्मीना कितना एक्सपेंसिव होता है, कितना वैल्यूएबल होता है, कितना डेलिकेट वॉर्म और प्रेशियस होता है, वैसे ही मोहब्बत होती है। इसी फीलिंग को पिरोया गया है इस फिल्म में। द फिल्म वॉज कॉल्ड फितूर और ये गाना और इसका म्यूजिक, कॉम्पोजिशन, लिरिक्स सब ओवरऑल वही एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं देते हैं। यार म्यूजिक ही हमें ओवरऑल ऐसा एक्सपीरियंस देता है कि हम कहीं ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी गाना आपके दिल को पहुंचा है ना, या कोई लिरिक्स जो आपके दिल को छुए हैं और आप कहीं और चले गए, जो लाइफ में चल रहा था उसको भूल कर एक सेकेंड के लिए भी, तो म्यूजिक है ना फिर मेडिटेशन। मेडिटेशन भी तो यही करता है।
1: मिर्ची कैफे,
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और खूबसूरत गानों की और खूबसूरत म्यूजिक की और खूबसूरत लिरिक्स की ये जादूगरी होती है कि ये हमें कहीं और ले जाता है, भाग जाता है हमारा मन खटाक करके और हम कहीं पहुंच जाते हैं। ब्यूटी ना, तो चलो थोड़ा सा ये वाला मूड ब्रेक करके आपको दूसरे मूड की तरफ ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुनिधि चौहान जी को बुलाते हैं गाना गाने के लिए हमारे लिए। नहीं, मेरे साथ बात करने नहीं आ रही है वो, बट द नेक्स्ट ट्रैक उनकी आवाज में आप सुनेंगे। मैं हूं पारुल, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टाग्राम पे paruls.world के नाम से। लेट्स कनेक्ट यार, बताओ मुझे कि कैसा लगा आपको ये शो। और जब तक ये गाना सुन रहे हो, डू गो टू इंस्टाग्राम एंड कनेक्ट विद मी paruls.world के नाम से मैं आपको मिलूंगी। प्लीज मुझे बताते रहा करो आपको कौन सा गाना अच्छा लगा इस शो पे, कौन सा गाना सुनना चाहते हो, डू लेट मी नो। पर अभी शो खत्म नहीं हुआ है, वापस आ रही हूँ थोड़ी देर में। सुनो तब तक इस गाने को, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

एंड आई वॉज लाइक वाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट इट. मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है. मतलब क्या फर्क पड़ता है, हमें पता है हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारी जॉब कैसी चल रही है, बिजनेस कैसा चल रहा है. सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट. नहीं चलो ठीक है, हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे इफ यू रियली वॉन्ट टू नो अबाउट इट. बट मूवी सीरीज ओटीटी सब चीज के बारे में बात करेंगे. मीन वाइल आप तो पहले मुझे ये बताओ कि क्या सही में ये लिस्ट देख के आपको कोई सेटिस्फैक्शन मिलता है या मोटिवेशन मिलता है? व्हाई डू वी इवन लुक एट दिस लिस्ट? मिर्ची क्रिश के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूं. KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम. आज वहां बात करते हैं. फिलहाल कुछ बढ़िया से गाने सुन ले सबसे पहले. दिस इज मिर्ची. इट्स हॉट.

सबको जानना है किसके पास कितने पैसे हैं। जैसे ही richest एक्टर्स की लिस्ट आती है, everyone is so excited to see कि कौन है richest, कौन है। पिछले हफ्ते ये लिस्ट आई ना, एवरीवन वाज लाइक कि एसआरके अभी भी क्या बात है।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई, हमारे जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बच जाएगा।
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चढ़ेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चढ़ाएंगे।
2: हेलो हेलो,
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के सरात का बजा रहा है ये?
3: मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर।
2: अरे कॉफिन ऑफिन कर तो यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया आप मेरे यहाँ वाले थे, बजाने वाले थे।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
7: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स, संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
6: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
8: फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8th November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
9: Our business is our business, none of your business.
10: Par didi, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
11: Qatar ka number one radio station.
12: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: लहंगे में गोटा जड़ा के चली थी, बालों में गजरा लगा के चली थी, बाली छूटी बाली छूटी।
1: फ्रेश और नया आता है ना, तो ट्रेलर देख के मजा आ जाता है, मन करता है कि ये मूवी देखनी है। स्पेशली वो मूवी जो डायरेक्टली ओटीटी पे ही रिलीज हो रही हो। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिसेंटली रिलीज ट्रेलर ऑफ अ मूवी मिर्ची, टॉप ट्रेंडिंग। सो मूवी का नाम है पूजा मेरी जान, स्टारिंग मृणाल ठाकुर, हुमा कुरेशी, विजय राज, डायरेक्टेड बाय नवजोत गुलाटी। एक सुसाइड पर बेस्ड है जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एंड इट कीप्स ऑन गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। ये ट्रेलर हमें दिखाता है कि मूवी एक्सप्लोर करेगी लव, रिजेक्शन, ऑब्सेशन, लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू, लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू, पेरेंट्स की लाइफ आफ्टर लूजिंग देयर सन टू सुसाइड एंड सो मच मोर। एकदम इंटेंस मूवी लग रही है एंड सही में मेरा ट्रेलर देखते ही मन करा कि मैं इसको देख लूं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये मूवी 2 अक्टूबर को ही रिलीज हो रही है, यानी कि बस होने ही वाली है एंड डायरेक्टली ओटीटी पे रिलीज होगी। बस ये मेक श्योर कर लेना कि ये ओटीटी आपके पास है या नहीं, उसमें तो मैं भी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस मूवी इज कि ये एंड कैसे होगी। आप एक बार ट्रेलर देखो तो आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि मुझे एंड देखना है मूवी का, क्या होगा। वॉच द ट्रेलर एंड लेट मी नो आर यू एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी कॉल्ड पूजा मेरी जान। मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पर हूं, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। दिस इज मिर्ची एट साथ।

2019 में एक ऐसी मूवी आई थी जिसके बाद से अभी तक इस बड़े लेवल की मूवी का इंतजार चल रहा है। I am talking about Marvel Studios की Avengers Endgame. Yes, and people are waiting for such a big level movie जो कि December 18th को हमें मिलेगी, called Avengers Doomsday. If you are an MCU fan, तो आपको already पता है कि क्यों इतना इंतजार कर रहे हैं लोग इस superhero movie का. लेकिन 2019 के बाद Endgame का एक और version इस बार release किया गया पिछले हफ्ते, एंड सोशल मीडिया पे इसी के बारे में बात हो रही है. एवेंजर्स एंडगेम ऑनकोर. ना ऑनकोर में 3 मिनट समथिंग सेकंड्स की एक्स्ट्रा फुटेज डाली गई, लेकिन वो भी सारे फॉर्मेट्स में नहीं, कुछ 2 स्पेशल फॉर्मेट्स में. आप अगर देखने जाओगे तो आपको 3 मिनट समथिंग सेकंड्स की फुटेज मिलेगी जो डायरेक्टली आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्टेड होगी. यस, और उसके अलावा अगर आप नॉर्मल फॉर्मेट में देखने जा रहे हो तो 1 मिनट समथिंग सेकंड्स की वो फुटेज होगी. सो पीपल आर गोइंग क्रेजी अबाउट इट. मैं खुद पहले ही दिन देख कर आया हूं, एंड आई नो द स्पॉयलर्स, बट आई वोंट टेल यू. आई कैन जस्ट टेल यू दैट देर आर 3 एक्स्ट्रा सीन्स एंड 1 ग्लिम्स जो कि देख के मजा आ जाएगा. कनेक्टेड ऑल टू एवेंजर्स डूम्सडे. हमें पता है दिसंबर 18th का बहुत सारे लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है. आई एम वन ऑफ यू. अगर आप भी देख के आए हो तो आओ डिस्कस करते हैं मेरे सोशल मीडिया पे. मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूं. KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम. दिस इज मिर्ची. इट्स ऑल.

0: आए हाय
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Khat khat.
8: Who that?
7: Akbar.
8: Akbar who?
7: Are Akbar bata diya hai. Baar baar nahi na bata payenge.
8: Khat khat. Who that?
9: Only on 89.6 Mirchi 1.
10: Mirchi,
9: it's hot.

ऐसी लिस्ट जिसमें दुनिया की इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी जगहों का नाम है, उसमें दो इंडियन जगहें भी एडेड हैं। भाई किसी भी लेवल पर किसी भी बड़ी लिस्ट में इंडिया का नाम आ रहा है, दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लिस्ट जो कि 2027 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 50 बेस्ट प्लेसेस आई है टू विजिट। इन 50 बेस्ट प्लेसेस में जहां पर यूएसए, वियतनाम, कनाडा, मोरक्को, इन सारी जगहों का नाम है, उसमें दो इंडियन एंट्रीज भी हैं, जिसमें से एक है गुजरात, दूसरी है दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल। सो गुजरात इज देयर फॉर इट्स सॉल्ट फ्लैट्स और वाइल्ड लायंस, इसको देखने के लिए आप जा सकते हो। इसके अलावा दार्जिलिंग इज देयर फॉर इट्स टॉय ट्रेन जर्नी, जो कि मैंने आज तक नहीं करी, एंड आई रियली वॉन्ट टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। ये मेरे बकेट लिस्ट में कब से है भाई। अगर तुम गए हो देन मुझे बताओ कि है ना वर्थ उतना, कि भाई 50 वर्ल्ड की बेस्ट प्लेसेस टू विजिट में इसका नाम आ रहा है, बताना मुझे। मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पर हूं, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम। फिलहाल कुछ बढ़िया गाने सुनेंगे ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
3: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
2: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
5: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

89.6 Mirchi 1. It's hot.

सो आई फिगर्ड कि जस्ट लाइक हॉरर मूवीज हम ये भी कहते हैं कि बॉलीवुड ने साईफाई मूवीज भी कुछ खास अच्छी नहीं बनाई. बट आई एक्चुअली डिसएग्री. मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है. सो आज के पांच का पंच में मैं कुछ ऐसी पांच साईफाई बॉलीवुड मूवीज लेकर आया हूँ जिन्होंने सिर्फ ट्राई ही नहीं किया, वो सक्सीड भी हुई. स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर 5 आती है कार्गो. 2019 में आई ये मूवी स्टारिंग विक्रांत मेसी एंड श्वेता त्रिपाठी. इज डायरेक्टेड बाय आरती कदव. दिस मूवी इज अबाउट अ फिक्शनल ट्रीटी जो कि साइन हो चुकी है बिटवीन ह्यूमंस एंड डीमंस यानी राक्षस, जिसमें एक प्रॉपर स्पेसशिप बनी है जिसका नाम है पुष्पक 634A, जो मरने के बाद सोल्स को कलेक्ट करती है, उनकी मेमोरीज इरेज करती है, उन्हें हील करती है और फिर उनके दूसरे जन्म या पुनर्जन्म में भेज देती है. इतने यूनिक टॉपिक पर बनी है इंडी स्टाइल मूवी इज एक्चुअली अ वेरी अंडररेटेड मूवी. सो जस्ट वॉच इट ऑलरेडी. फिर नंबर 4 पर आती है एक्शन रिप्ले. 2010 में आई ये मूवी स्टारिंग अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय, आदित्य रॉय कपूर एंड रणविजय सिंघा. डायरेक्टेड बाय विपुल शाह. स्टोरी में आदित्य रॉय कपूर किसी तरह टाइम ट्रैवल करके 70s में जाते हैं अपने मम्मी पापा की शादी और प्यार को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. एंड ऑफकोर्स मम्मी पापा प्लेड बाय अक्षय कुमार एंड ऐश्वर्या राय. मूवी इज अ ब्रिलियंट साईफाई कॉमेडी. मैं बता रहा हूँ ब्रिलियंट है. इसको नॉन सेंसिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना बिकॉज इट इज अ साईफाई कॉमेडी विच इज एक्चुअली रियली गुड. सो जस्ट वॉच इट. आगे की लिस्ट अगर आप गेस कर सकते हो देन मेरे इंस्टाग्राम पर आओ, मिर्ची क्रिश के नाम से मिल जाऊंगा. KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम. दिस इज मिर्ची. इट्स ऑल.

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana.
1: Rambana.
0: Burga, burga. La virtua, la burga.
1: Mirchi, burga.
2: Hello?
3: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवीद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुधरा था, मतलब।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: खट खट।
7: कौन है?
6: अज्जू।
7: अज्जू कौन?
6: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
7: खट खट। Who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

चलो आज की लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं। टुडे इन पांच का पंच वी आर टॉकिंग अबाउट पांच साईफाई बॉलीवुड मूवीज जिन्होंने सिर्फ ट्राई ही नहीं किया वो सक्सीड भी हुई। मिर्ची सुन रहे हो, मेरा नाम क्रिश है। नंबर फाइव पे हमने बात करी कार्गो मूवी के बारे में। नंबर फोर पर आई एक्शन रीप्ले। अब बारी है नंबर थ्री की, विच इज रोबोट। 2010 में आई ये मूवी स्टारिंग रजनीकांत एंड ऐश्वर्या राय, डायरेक्टेड बाय एस शंकर। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने खुद के जैसे दिखने वाला एक यूनिक रोबोट बनाया जिसका नाम रखा चिट्टी, टू प्रोटेक्ट मैनकाइंड। बट रोबोट के पास हैं ह्यूमन इमोशंस। रजनीकांत की बहुत अच्छी एक्टिंग ऑब्वियसली। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा फ्यूचरिस्टिक रोबोट का कॉन्सेप्ट, विच इज अ वाइडली सेलिब्रेटेड पीस ऑफ आर्ट टिल डेट। फिर सेकंड नंबर पर आती हैं एक ही फ्रेंचाइजी की दो मूवीज जो कि कंटिन्यूएशन में है, कोई मिल गया इन 2003 एंड क्रिश इन 2006। अपना नाम लेकर आया हूं साथ में। स्टारिंग ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा एंड रेखा जी, डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन। पहली मूवी एलियन के अर्थ पर आने की है और दूसरी मूवी बॉलीवुड के पहले ऑफिशियल और ओरिजिनल सुपर हीरो मिलने की है। फ्रेंचाइजी इतनी अच्छी है कि क्रिश 3 भी आई थी और इनफैक्ट रूमर्स ये भी हैं कि क्रिश 4 पर ऑन एंड ऑफ स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा है और अगर ये बनती है तो इसको ऋतिक रोशन खुद को डायरेक्ट भी करने वाले हैं। अब बारी है नंबर वन स्पॉट की। कैन यू गेस दिस मूवी, जो बॉलीवुड की मेरे हिसाब से नंबर वन साईफाई बॉलीवुड मूवी है। गेस करो मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर, मिर्ची क्रिश के नाम से मिल जाऊंगा। KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। गानों के उस पार आके ये भी क्लियर करता हूं, दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

लिस्ट कितनी भी लंबी हो, एक नंबर वन स्पॉट तो होता है ना। बस अब उसी स्पॉट के बारे में बात करना रह गया। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। आज के पांच का पंच में वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप फाइव साईफाई बॉलीवुड मूवीज जिन्होंने सिर्फ ट्राई ही नहीं किया, सक्सीड भी किया। नंबर फाइव पे हमने बात करी कार्गो मूवी के बारे में। नंबर फोर पर आई एक्शन रीप्ले। नंबर थ्री पर थी रोबोट। नंबर टू पर थी कोई मिल गया एंड क्रिश। फिर आता है नंबर वन स्पॉट, लेकिन ये टफ है तो इसीलिए इससे पहले एक स्पेशल मेंशन दे देते हैं। मिस्टर इंडिया 1987 में आई ये मूवी, स्टारिंग अनिल कपूर, श्रीदेवी, सतीश कौशिक एंड अमरीश पुरी साहब। डायरेक्टेड बाय शेखर कपूर, अरुण प्लेड बाय अनिल कपूर, जिनको एक घड़ी मिल जाती है जिससे वो कभी भी गायब हो सकते हैं। नाउ 1987 में एक ऐसी साईफाई बॉलीवुड मूवी आना विच इज स्टिल टूडे लव्ड बाय सो मेनी पीपल, ये अभी भी अनबिलीवेबल लगता है, राइट? इसीलिए इट हैड टू बी स्पेशली मेंशन। नाउ नंबर वन, रावण मूवी 2011 में आई। रावण मूवी के बारे में मैंने अब क्यों बात करी, इसको नंबर वन स्पॉट क्यों दिया बताता हूं। तो स्टारिंग SRK, करीना कपूर एंड अर्जुन रामपाल, डायरेक्टेड बाय अनुभव सिन्हा, एक गेमिंग विलन कैरेक्टर रियल लाइफ में आ जाता है एंड इट जस्ट बिकम्स रोग। रावण मूवी जब रिलीज हुई थी ना तो इट डिड नॉट गेट दैट अटेंशन, लेकिन धीरे धीरे इट बिकेम वन ऑफ दोज मूवीज जो इवेंचुअली कल्ट क्लासिक बन गई। एंड अनुभव सिन्हा वॉज नॉट रॉन्ग एट ऑल व्हेन ही एंड एवरीबडी एल्स सेड कि रावण वॉज मेड टू सून, थोड़ा और रुक जाना चाहिए था। एंड आई ऑल्सो अग्री, अगर ये मूवी आज बनती तो शायद हम एक सक्सेसफुल गेमिंग यूनिवर्स भी देख सकते थे इन आर ओन बॉलीवुड। इनफैक्ट रिसेंटली SRK ने भी बोला था दैट ही वोंट माइंड डूइंग अ सीक्वल टू दिस मूवी, लेकिन उनकी बस ये शर्त है कि उसमें भी अनुभव सिन्हा ही इन्वॉल्व होने चाहिए। सो ये होगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई और साईफाई बॉलीवुड मूवी भूल रहा हूं तो मुझे याद दिलाओ। मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पर मिलूंगा। KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। आ जाओ, दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

हमने इतने टाइम पैसे इकट्ठे करे, मतलब हमने, मैं नहीं, आप लोग, आपने इतने टाइम पैसे इकट्ठे करे, आपकी जिद थी कि आईफोन 18 खरीदना है, आप इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगे और अब फोन में लाइनें दिख रही हैं। Yes, this is the latest complaint coming from iPhone 18 users. मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। तो पहले तो जो फर्स्ट डे पे ही जाते हैं फोन लेने, वो लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, कई बार 6-7 घंटों तक लगना पड़ता है। उसके बाद आपने फोन खरीदा, कुछ ही दिनों में उस पे पर्पल और ग्रीनिश टाइप की लाइंस विजिबल हो रही हैं, और अब या तो फेस आईडी काम नहीं कर रही है, या फोन रीस्टार्ट करना पड़ रहा है मल्टीपल टाइम्स, या वो अपने आप ही रीस्टार्ट हो रहा है फ्रीज होके। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आईफोन 18 के लेटेस्ट दो मॉडल्स में, और कंपनी ने कहा कि अब हम एक नया अपडेट डाल रहे हैं, उससे बग फिक्स हो जाएगा। तो फिक्स तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा प्रीमियम सर्विसेज देते हैं तो ये तो प्रीमियम नहीं हुआ ना फिर, इतने सारे पैसे खर्च करने बाद, इतनी लंबी लाइनें लगने के बाद, अब हम लाइनें भी देखें, नॉट फेयर एट ऑल। आपके फोन में आ रही है दिक्कत? आपने अगर खरीदा आईफोन 18 तो बताना मुझे, और अगर नहीं खरीदा तो आप किसी को जानते हो जिसको देख के हंसी आ रही हो, जिसके साथ ये प्रॉब्लम, मतलब शेयर कर सकते हो। मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पे हूँ, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम, दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

0: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8th November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secure.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कदर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं, फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूं?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं 3।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

ऐसे ही नहीं कहते दोस्त कि कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है। आई मीन ऑफकोर्स दूसरों को हंसाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क टू डू आजकल के टाइम में, जब इतना ज्यादा स्ट्रेस है ऑलरेडी। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। लेकिन ऐसे में अगर कोई शो चलता है तो उसमें कभी भी कोई भी कुछ भी आके बोल सकता है। ऐसे में कोई तीसरा बंदा हर्ट हो जाए तो अब क्या करें, अब उसको सॉल्व करना भी मुश्किल है। सो यस, ओटीटी पे आता है अब इंडियाज गॉट लेटेंट, साथ में यूट्यूब पर भी आता है इंडियाज गॉट लेटेंट। लेकिन इसके एक रीसेंट

एपिसोड की वजह से दोबारा कंट्रोवर्सी हो रही है एंड इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ कंट्रोवर्सी। एक्चुअली मुकेश हाबड़ा आए थे इसमें, हु इज अ वेरी फेमस कास्टिंग डायरेक्टर, और उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिसकी वजह से एक व्यूअर ने एक कंप्लेंट फाइल कर दी इनके अगेंस्ट। सो अब ये भी होता है कि आपने किसी को कुछ बोला और जिसको बोला उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन देखने वाले को प्रॉब्लम हो गई कि इसकी लैंग्वेज में खराबी है। अब ये थोड़ा सा मेरे लिए समझना मुश्किल है, बट या अगर ये जेन्युइन है तो मुझे भी समझाइए प्लीज। इंस्टाग्राम पर मिर्ची क्रिश के नाम से हूँ, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम, बट टूडे आई फॉर्मली बिलीव नाउ कि कॉमेडी करना है तो मुश्किल, चाहे वो किसी को हंसाना हो चाहे शो चलाना हो, है ना। दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Mirchi, burka.
1: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
2: Hello,
3: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
2: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
3: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
2: हाँ जी.
3: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
2: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
3: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे. तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
2: मैंने अगर लगा रखा है मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करेगा.
3: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है मैं, मेरे को पता था. मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
2: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
3: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए तुझे देखा तो ये जाना सनम.
2: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
3: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप. आप क्या कर सकती हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही हैं.
2: सुनिए मत, सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
3: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे क्वालिटी ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
2: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
3: आपको क्वालिटी ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी क्वालिटी ट्यून लगाएंगी.
2: हाँ बताइए
3: आप क्वालिटी ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
2: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
3: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
2: यार आप लोग किसी दिन ना मतलब
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: खट खट
6: पूरे
5: बनता
6: बनता हूँ.
5: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को.
6: खट खट हू दैट
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.

लव इन वॉर फॉर अ चेंज संजय लीला बंसाली जी कुछ अलग बना रहे हैं। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है एंड लव इन वॉर उनकी अपकमिंग मूवी जो कि काफी बार डिले होने के बाद अब फाइनली जनवरी में रिलीज होने वाली है, लेकिन इसका ट्रेलर अभी ड्रॉप नहीं हुआ है, शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आई थिंक पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। कैरेक्टर के पोस्टर्स आए और आलिया भट्ट का तो बहुत ही स्टनिंग लगा है मुझे, मतलब मजा ही आ गया देख के। लेकिन रणबीर कपूर का जो पोस्टर आया ना, अब क्या है ना कि रणबीर कपूर ने जब मूवीज करी है ऐसी तो ऑब्वियसली पीपल विल ऑलवेज ड्रॉ सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो उनका पोस्टर रिलीज हुआ उसमें कार में बैठे हुए हाथ से खून निकल रहा है तो वो लोगों ने एकदम ये तो एनिमल पार्क का लग रहा है, ये तो एनिमल वाला कैरेक्टर है, ये कॉपीड लग रहा है। हम थोड़ा सा तो सब्र कर सकते हैं ना, मतलब क्या हो गया, ट्रेलर आ जाए थोड़ा और पता लग जाएगा, फिर मूवी आएगी तो डेफिनेटली पूरा ही रिवील हो जाएगा, थोड़ा वेट करो। संजय लीला बंसाली ने इस बार थोड़ा कुछ तो अलग बनाया एंड आई एम एक्साइटेड टू वॉच इट। प्लस कास्ट इतनी अच्छी है, विकी कौशल, आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर तीनों टेरिफिक एक्टर्स हैं। सो लेट्स सी, आपको भी ऐसा लगा क्या कि सेम कैरेक्टर है? लगना तो नहीं चाहिए, बाकी आप बताना। मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पे हो, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम, दिस इज मिर्ची, इट्स हॉट।

So this was almost Jamtara, but in real life. मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। हमने बात करी थी स्कैम के बारे में, जिसने एक्स या ट्विटर को हिलाकर रख दिया था। पिछले कुछ दिनों में ये काफी ज्यादा चल रहा था सोशल मीडिया पे। एक इंसान जिन्होंने लाइफ में शायद पहला स्कैम किया, लोगों को बोला कि मेरी 12 साल की बहन है, उसकी आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, क्राउड फंडिंग करनी है। लोगों ने 1.5 लाख रुपए के आसपास इकट्ठे करे, इनको दिए। बाद में इन्होंने हॉस्पिटल के बिल्स दिखाए, और हॉस्पिटल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आया नहीं है। बाद में जब फोरम्स बने तब वहां पे डिस्कस हो रहा है कि ये जय सिंह राठौर कौन है जिसने हमसे पैसे लिए, इसने हमारे साथ स्कैम कर दिया। उन फोरम्स में एंटर होके उनके साथ डिस्कस कर रहा है कि हाँ मेरा स्कैम पहला ही स्कैम था, एक्चुअली ना मैं बड़ा नर्वस था, साथ में चाय पी रहे हैं। तो इनको पकड़ा गया। हमने इस पूरे केस के बारे में बात करी थी पहले भी। अब फाइनली इनको अरेस्ट कर लिया गया है। आगरा से ये कर रहे थे स्कैम। सो मेरे को ऐसा लगा बिल्कुल कि जैसे OTT पे वो सीरीज आई थी ना जमतारा, वही चल रहा है लेकिन रियल लाइफ में चल रहा है। सो ऐसे स्कैम्स बड़े खतरनाक आ गए हैं। एंड आप ये सोचो कि इंसान में पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो अप फ्रंट आकर बोल रहा है कि हाँ मैंने किया है, मैं नर्वस भी था, इट वाज लाइक माय फर्स्ट टाइम, सो अजीब है भाई। खैर फिलहाल आप कुछ बढ़िया से गाने सुनो, डरो मत, बस सावधान रहो। दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट। अगरकर।
6: अगरकर हूँ।
5: अगर करना है तो कर, वरना छोड़ दे।
6: खट खट। Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: गलीचता को प्यार का नाम देने में बॉलीवुड काफी माहिर है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय बाबू मोशाय। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो हमें टाइम एंड अगेन बहुत सारी ऐसी फिल्में मिली हैं विच आर रोमांटिक, बट उसके साथ ही कुछ प्रॉब्लमेटिक, सीरियसली प्रॉब्लमेटिक थॉट प्रोसेसेस भी एज अ गिफ्ट हमें परोसा गया है ऑन सिल्वर प्लेटर। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉकिंग को प्यार का नाम दे देना। और ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज ऐसे ही कुछ अप्रोचेस को लेकर आई हूँ थ्रू माई 5 का पंच लिस्ट, जिसमें अब नंबर 4 पे लेट्स टॉक अबाउट नॉट रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज ऑफ वुमेन। और इस चीज को प्यार का नाम दे के स्टॉकिंग को ग्लोरीफाई किया गया है टाइम एंड अगेन। अब एपिक एग्जाम्पल के तौर पे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, ये मूवी काफी प्यारी, दिल के करीब है हमारी, लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से राज ने सिमरन के ना कहने के बावजूद उनका पीछा किया और ऐसा करते करते करते करते फाइनली जगह भी बना ली उनके दिल में, वॉज थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हुए नंबर 5 में हम उस थॉट प्रोसेस की बात करते हैं जिसमें जनरली विमेन को ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और उनको मैनिपुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कल हो ना हो 6 दिन लड़की इन, भैया लड़की तो वो चाबी लगी गुड़िया है ना, कि आप जितनी चाबी मारोगे उतना आपको नाच के दिखाएगी। तो बस ऐसे अप्रोचेस को आज तक हमने एज ऑडियंस जो ग्लोरीफाई किया है, इट्स हाई टाइम कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें और जो कुछ भी रैंडमली हमें इन द नेम ऑफ स्क्रिप्ट परोस दिया जाता है उस पे ऑब्जेक्शन करें। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: I like that song.

0: फकत फिल्म्स नेम।
1: फिल्म का नाम था तक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
4: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
5: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: जी बैंगल्स गाना खत्म हुआ संजू राठौड़ की आवाज में और अपने बातों का बैंगल लेके आ गया। मस्त मौला गौरव। जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मुझे पता नहीं को एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है कि यार मैं ऐसे सेफ हाथों में हूँ जहाँ मेरी रोजी रोटी चलती रहेगी और सैलरी आती रहेगी। आप बस मुझे यूं ही सुनते रहिए। मिर्ची घड़ी का टाइम 4:04।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: एक बात जानते हैं कि आप किसी को फोन पर परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं तो आपको लगता है किसको क्या ही पता चल जाएगा, लेकिन अगर पता लगा ना तो MI ने बताया है 100,000 कतरी रियाल का फाइन है फॉर ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग हियर इन कतर। सर देखिए वैसे ही हम इतने क्राइम फ्री हैं और अगर आप ऐसे में ये सोच रहे थे कि चलो भैया इसको फोन पर अड़का देते हैं, ब्लैकमेल कर देते हैं, तो आप ऐसे में और बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। इस तरह का कोई काम मत कीजिएगा। एंड क्या खास होने जा रहा है हमारे कतर में, लेबर मिनिस्ट्री ने किस तरह का कंसल्टेशन प्राइवेट सेक्टर में लाकर किया है, क्या हुआ है अगर हम गल्फ कप की बात करिए, सब कुछ आज अगले 4 घंटों में आपके कानों तक मस्त मौला गौरव पहुंचा देगा। हबीबी तब तक के लिए वॉल्यूम बढ़ा लो और रेडियो मिर्ची को आप लगाई लियो। अब हमारे साथ अगले 4 घंटे दे दो, हम आपको ड्राइवर, आप बैठ के एंजॉय करो गाड़ी में। मिर्ची थॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vjetva la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो, हाँ जी बोलिए।
3: क्या बोलूँ जी, आप बोलिए।
2: आप बोलिए ना।
3: कॉल आपने किया, आप बोलिए।
2: कॉल मैंने किया है। हेलो।
3: अरे बोलो भाई, कॉल तुमने किया, बोलो क्या हुआ।
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार, मैं यहाँ सो रहा हूँ, आपने मुझे कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार। आपने नंबर मेरा डायल किया है, मेरे घर बेल बजी है यार।
3: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा। अरे फोन मैंने नहीं किया यार,
2: फोन आपने, यहाँ बेल बजी यार, मेरे यहाँ भी बेल बजी है।
3: नींद में है क्या?
2: मैं नींद में ही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया, मैं देख रहा हूँ नंबर।
3: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है?
2: आ जाते उठ के, मैं तो फोन काट रहा हूँ, फोन रखी तेरे। हेलो, हाँ बताइए।
3: मेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दबा होगा बार बार।
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए, आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है।
3: हेलो,
2: फिर कोई यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार, मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं।
3: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
2: तो आप गाड़ी चलाइए, नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप अपना काम करिए, फोन मत करिए मुझे कम से कम यार, फोन मत करिएगा बस यहाँ पे।
3: फोन नहीं कर रहा अभी,
2: मैं देख, बदतमीजी से बात मत करिए आप, समझ गया। मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ से। हटा, मेरे चप्पल लेके आ, ये मेरे हाथ में चप्पल है, मैं बता रहा हूँ। मैं
3: चप्पल
2: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे, फोन
3: क्यों आराम कर दिया तुम जैसे।
2: जीना बता रहा हूँ यहाँ से, भाग। इस बार अगर कर दिया ना, बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा। चप्पल चप्पल है मेरे हाथ में,
3: फोन आ रहा है, मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात सुनिए। अभिषेक, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
5: it's hot.
6: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
7: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
6: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
8: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. आपकी चॉइस की लोअर प्राइस पिज्जा बिल्कुल फ्री हो जाएगी। ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम 26 टू 30 सितंबर। तो टेंशन मत लो, ऑर्डर नाउ फ्रॉम पापा जॉन्स एंड डबल द टेस्टी फन। वैलिड ऑन ऑल पिज्जा साइजेस। पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा।
9: खटखट,
10: हु दैट?
9: जाहिर।
10: जाहिर, जाहिर हूँ।
9: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
10: खटखट, हु दैट?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

यार अच्छी बात है अगर आप किसी के लिए दुआएं भेजते हैं, क्योंकि ये तो वाकई में कबूल भी होती हैं और आपको सामने वाला भी उसके बदले दुआएं ही देता है। लेकिन अगर आप किसी को ब्लैकमेल भेज रहे हैं तो प्रॉब्लम है। ऑनलाइन एक्सट्रॉशन एंड ब्लैकमेल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की एक बड़ी वार्निंग आ चुकी है। गौरव यहाँ आपको बताना चाहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने वार्न किया है ब्लैकमेल और ऑनलाइन एक्सट्रॉशन के लिए। ये पनिशेबल ऑफेंस है अप टिल 3 ईयर ऑफ प्रिजन, यानी कि आप जेल के अंदर जाएंगे एंड उसके साथ ही साथ कतरी रियाल 1 लाख तक का फाइन भी देना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है रेसिडेंट से कि भैया थोड़ा विजिलेंट रहिए अगेंस्ट साइबर क्राइम, हाँ जी अवेयर रहिए। एंड साइबर क्राइम एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन पर बकायदा एक वेबिनार था जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ऑर्गेनाइज करके लोगों को बताया किस तरह से थ्रेट या इस तरह की जो ऑनलाइन थ्रेट्स आती है उससे कैसे बचना है। एंड पब्लिक को एजुकेट किया गया कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है अगर आप किसी को ऑनलाइन ब्लैकमेल कर रहे हैं तो वो क्या क्या नुकसान में आ सकता है। बिल्कुल मैं अगर इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्राइम फ्री कंट्री में हम रहते हैं, ये हमारे लिए प्राउड है कि हम रेसिडेंट के नाते भी इस देश को क्राइम फ्री बनाए रखने के लिए अपनी पूरी मेहनत करते हैं। एंड इस तरह का कोई अगर काम कर रहा है तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का भी काम हमारा आपका है, हम उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। मस्त बोला गौरव आपके साथ 89.6 मिर्ची 1 पर। हमारा कतर सेफ रहे इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है, तो बस ऐसे किसी भी मामले में आप पुलिस कंप्लेंट जरूर कीजिए। मिर्ची इट्स हॉट।

0: झा रांझड़ रांझड़ रांझड़ तो बस ये रांझड़ अगर तुम चाहते हो ये तुम्हें याद रखे तो तुम इसे गोल्ड दो ना।
1: मस्त मौला गौरव।
0: मैं तो चाहता हूँ कि कोई आए मुझसे कहे कि मैं इतना पैसे वाला हूँ कि गौरव मैं तुझे सोने से तौल दूंगा। मैं कहूंगा कर ले भाई, तौल दो तुझे एक बार, मुझे उसमें थोड़ा भी दे दियो, मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि आजकल सोने के भाव अलग ही चल रहे हैं। गोल्ड रेट फ्रॉम अल फरदान एक्सचेंज।
2: गोल्ड अपडेट।
0: वेल, अगर बात करें तो अल फरदान एक्सचेंज हमारे कतर में है पैम के एजेंट, यस, जो लेकर आते हैं 24 कैरेट स्विस गोल्ड का भरोसा, वो पैम 1 ग्राम गोल्ड लेडी फौचनाबार आपको अल फरदान एक्सचेंज मिलेगा 567 कतारी रियाल में। पैम 5 ग्राम गोल्ड लेडी फौचनाबार 2652 कतारी रियाल। पैम 10 ग्राम गोल्ड लेडी फौचनाबार एट 5235 कतारी रियाल। पैम 1 आउंस गोल्ड लेडी फौचनाबार एट 16179 कतारी रियाल। एंड पैम के 10 तोला गोल्ड बार एट 60059। आज दाम नीचे की तरफ गए, राइट टाइम टू इन्वेस्ट दोस्तों, ले लो सोना जो है ना वो आगे आपके नींद गवा देगा। जब इतना रिटर्न देगा आप दिन भर गिनते ही रहोगे, अरे पैसे। ये तो अल फरदान एक्सचेंज मिर्ची।
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतार। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम गोल्ड बार्स एंड अर्न कतार एयरवेज एवियोस टुडे। विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
6: Arey wah, ice cream and cake lovers, ready ho jao. Dairy Queen laya hai dhamakedar special promotion.
7: Hanji, 26th se 30th September tak enjoy karo amazing deals. Sunday sirf QR 5 se, Swirls QR 9 mein, Blizzards QR 10 se aur cake sirf QR 60 se.
6: To der kis baaki, apne favorite Dairy Queen outlet par jao aur sweet moments banao. Dairy Queen, happy tastes good. To der kis baaki, sab kuch aadhe price mein.
8: कट
9: अबे कौन है?
8: उत्तपा।
9: उत्तपा कौन?
8: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
9: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: अरे कोई लौट के आया है तो आप ताली बजाइए, ढोल बजाइए, हमारे वहाँ न जाने कब ठंडी लौट के आएगी। न जाने कब तक हमको ये वाली गर्मी सताएगी। जबरदस्त मौसम गर्म अभी भी बना हुआ है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: सूरज चाचू हमको लग रहा है त्रुटि हो रही है, आपको किसी ने तारीख नहीं बताई है। 28 सितंबर हो गए, आप अभी भी अगस्त जुलाई वाला ये जो तेवर दिखा रहे हैं बात सही है नहीं। इतने दिन हम लोगों को आपने झुलसाया, अरे अब तो थोड़ा सा कम तरसाओ। 41 डिग्री सेल्सियस 28 सितंबर को मजाक बना लिया आपने है? सूरज चाचू विश्वास करो, इतना पानी देंगे कि तुम कहोगे अब तो बीच पार्टी करने का मन कर रहा है। इसलिए प्लीज थोड़ा तो टेम्परेचर में नरमी लाओ, इसे 35 के आसपास ले आओ। 35 से हम लोग थोड़ा सुकून तो ले ही लेंगे। और ह्यूमिडिटी तुम भी निकल लो भैया, बेमतलब की चली आई हो। 42% के साथ हमें आज दिन भर बड़ा परेशान किया। इनफैक्ट सवेरे 7:15 बजे वैसी फीलिंग थी कि पूछिए मत। क्यों गए थे हम, कहाँ गए थे सुबह 7:15 बजे बताएंगे? कहाँ लगा के सुनते हो मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
3: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
2: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
6: Dosti kai ko sulai madam. No sorry, no thank you.
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
9: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: सिंह की आवाज में ये आवारापन खत्म हुआ और आपके साथ सीधा साधा लड़का आ गया है। हाँ जी, और जब मैं आपके साथ होता हूँ तो घड़ी का टाइम बताना मेरा सबसे बड़ा फर्ज कर्तव्य धर्म होता है। 5:04 होने को आ गए हैं जी।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और फिर हम इस घंटे बढ़ जाते हैं खेलने को, वो जिसे कहते हैं इसमें आपको एक आवाज सुनाता हूँ और आपको पकड़नी पड़ती है कि ये आवाज तो फलाने एक्टर की लग रही है।
2: पिक्चर जाना चल रही थी उन दिनों, था हवा में था मैं, और मैंने कह भी दिया था उसे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है, और मैंने ये भी कह दिया था कि ये फिल्म तुम्हारी 7 साल नहीं बनेगी, तुम पिक्चर नहीं कम्प्लीट कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है।
0: तो आपको क्या लगता है किसकी आवाज है ये? टुंग टुंग मैसेज शुरू हो गए, मुझे लगता है यूसुफ भाई तैयार है।
2: पिक्चर जाना चल रही थी उन दिनों, था हवा में था मैं, और मैंने कह भी दिया था उसे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है, और मैंने ये भी कह दिया था कि ये फिल्म तुम्हारी 7 साल नहीं बनेगी, तुम पिक्चर नहीं कम्प्लीट कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है।
0: चलिए जी, ऐसा लगता है तो आप ही बताइए आपको क्या लगता है किसकी आवाज है ये। आयुब भाई का जवाब आ गया है। इसके अलावा यार बहुत ही तेज बच्चे हैं ये, सबके सब धमाधम मार रहे हैं जी। एंड एक आखिरी बार सुन लीजिए और अगली बार जवाब के साथ तो लौटूंगा ही कि ये किस एक्टर की आवाज है।
2: पिक्चर जाना चल रही थी उन दिनों, था हवा में था मैं, और मैंने कह भी दिया था उसे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है, और मैंने ये भी कह दिया था कि ये फिल्म तुम्हारी 7 साल नहीं बनेगी, तुम पिक्चर नहीं कम्प्लीट कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है।
0: तो आपको क्या लगता है ये किसकी आवाज थी? 5001896 पर वॉइस नोट में अपना जवाब भेज दीजिए। 5000186 5000186 पर अपना जवाब दीजिए कि ये किसकी आवाज थी जो मैंने इस वक्त यहाँ रेडियो पे प्ले की। एंड फिलहाल के लिए अमित त्रिवेदी कह रहे हैं रातों में आना सुबह को जाना, मिर्ची पर इस गाने को जरूर सुनते जाना।

0: Energy.
1: Busca bala, busca bala, saca bala.
2: É a bala.
1: Burga, burga. Na vida bala, burga.
2: Energy, burga.
3: हेलो
4: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
4: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही है, हाँ मैं तो चल रही है।
4: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
4: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई है, हमारे जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं
3: 9:30-10 बजे तक। ये बताओ ना बचा जाएगा?
4: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
4: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा नहीं वही
4: मैं आपको बता रहा हूँ सर। आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहे हैं, सुना आपने?
4: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
4: अच्छा सर मैं मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चढ़ेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चढ़ाएंगे।
3: हेलो हेलो।
4: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद का बजा रहा है ये?
4: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर।
3: अरे कॉफिन ऑफिन कर तो यहाँ क्यों लेके आए तुम?
5: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
3: अच्छा भैया आप मेरे जाने वाले थे, बजाने वाले थे।
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
7: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
8: नीड टू सेंड मनी होम? मेक इट फास्ट, मेक इट सेफ, मेक इट अल्फाबन एक्सचेंज,
9: योर ट्रस्टेड चॉइस फॉर सेंडिंग मनी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज एंड गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स। विजिट आवर नियरेस्ट ब्रांच और डाउनलोड द अल्फाबन एक्सचेंज ऐप नाउ। फॉर असिस्टेंस कॉल और व्हाट्सएप 4453-7777।
10: अरे वाह आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
11: हाँ जी 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स, संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
10: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
12: फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8 November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
13: Cut, cut.
14: Who that?
13: Jassi.
14: Jassi? Kaun si wali Jassi?
13: Jassi who has come, auntie ji?
14: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: गुरु अंधावा यो यो हनी सिंह की आवाज में हॉली हॉली ये गाना खत्म हुआ और जल्दी जल्दी आ गया।
1: मस्त मौला गौरव
0: अलखोर से लेकर बखरा तक आपको शाम को मैं ही सुनाई देता हूँ। नाम है मस्त मौला गौरव। एंड देवी और सजनों, सवाल किया था आज, पहचान कौन? और आपको बताना था कि ये जो आवाज आज मैंने सुनाई है ये किस एक्टर की आवाज है जो मिर्ची पर आप सुन रहे हैं।
2: पिक्चर ज्यादा चल रही थी उन दिनों, था हवा में था मैं, और मैंने कह भी दिया था उससे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है, और मैंने ये भी कह दिया था कि ये फिल्म तुम्हारी 7 साल नहीं बनेगी, तुम पिक्चर नहीं कंप्लीट कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है।
0: और आपको क्या लगता है किसकी आवाज थी?
3: हाय गुड इवनिंग, दिस इज मकसूद अली, दिस इज गोविंदा ब्रदर।
4: अस्सलाम वालेकुम, ये आवाज है गोविंदा की।
5: गोविंदा राजेश ठाकुर।
6: हाय गौरव, दिस इज अभिलाष। आई थिंक द वॉइस नॉट दैट यू प्लेड इज ऑफ गोविंदा।
7: गौरव जी, गोविंदा चीची का है ये आवाज।
8: गोविंदा का आवाज है गोविंदा।
0: ओके
9: गौरव, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ये आवाज है गोविंदा जी, मैं रूपेश शर्मा बोल रहा हूं।
0: ओके
10: गौरव, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम
10: जी, अपने गोविंदा है।
11: गुड इवनिंग गौरव, यूसुफ ये एक्टर है गोविंदा। आज का तो बहुत इजी हो गया, शायद सभी लोग जवाब देंगे। ओके थैंक यू, बाय बाय।
0: अरे बिल्कुल सही कहा भैया, सिर्फ जवाब यहाँ बोल के नहीं लिख के भी भेजा है गोपाल जी ने, फैजल भाई ने, इसके अलावा सुफियान को थैंक यू, धर्मेंद्र जी को थैंक यू, एंड शारिक भाई को थैंक यू, आसिफ भाई बिल्कुल सही गोविंदा है, मोनिका जी बिल्कुल सही गोविंदा इज द राइट आंसर। सच कहूं अब तक ना मुझे लगता है बड़ा रेयर ओकेशन रहा है जब 100% सही जवाब मिला हो, एंड आज इज वन ऑफ दैट डे, क्योंकि मैं मानता हूं गोविंदा के फैंस उनके ऐसे फैन है ना कि आधी रात में भी उनकी आवाज सुना तो लोग गोविंदा है क्या। 89.6 मिर्ची वन, गोविंदा साहब आप अपने यार, इट्स हॉट।

0: हट काट।
1: कौन है?
0: स्टेन।
1: स्टेन कौन?
0: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
2: खट खट
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

माइंड तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज, तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतने कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

0: परेशान है क्या? आप भी मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आपको इस बात की टेंशन है कि बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, कैसे कराएं?
1: मस्त मौला गौरव
0: आपके लिए एक राहत की खबर लेकर आए। हमारे कतर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन ने आपको राहत दे दी है।
2: #974974
0: यस, बताना चाहेंगे MOE ने आज यहाँ पर एक एक्साइटिंग न्यू रिफॉर्म लाया है। प्राइवेट स्कूल में यानी कि पूरे कतर में 6883 न्यू सीट्स आ गई हैं। यस, हम आपको बता दें कतर के 46 प्राइवेट स्कूल्स में ये लगभग 6883 नई सीट्स जो हैं वह ऐड हो जाएंगी और गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को फ्लेक्सिबल कर दिया, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एक्सपेंड हो और आराम से आपका बच्चा स्कूल जाए, इसी बात को ध्यान में देते हुए अब ये सीट्स बढ़ाई गई हैं। तो ये जो 46 नए प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, ये आपके बच्चे को अब एडमिशन देंगे और आपकी टेंशन होगी खत्म। क्योंकि भाई पिछले दिनों बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा परेशान है कि बच्चे कहाँ जाएंगे, लेकिन कतर बच्चों के एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है और इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन ये एक बड़ा डिसीजन लिया एंड कहा ही जा रहा है कि उनके लाइसेंस में प्राइवेट स्कूल्स में किंडरगार्टन में अंडर द थीम टुवर्ड्स अ फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल क्वालिटी एजुकेशन, ये एक नया बड़ा मेजर स्टेप लिया गया है। सो तैयार हो जाइए, अगर आपका बच्चा अभी तक स्ट्रगल कर रहा था, आप उसके एडमिशन के लिए परेशान थे, तो अक्रॉस 46 स्कूल्स अंडर अ पैकेज ऑफ न्यू रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आराम से आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट पापा मम्मी, सारी टेंशन खत्म कर दी ना मस्त मौला गौरव की इस बात ने। थैंक यू टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
3: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। आई ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो हो गया। बट आई नो कि रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
2: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
5: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Kuch kuch hota hai Anjali. Tum nahi samjho.
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

काला चश्मा जचता है लेकिन मेरे वॉलेट में खाली कुछ भी नहीं जचता। वॉलेट एक ऐसी चीज है ना जो हमेशा भरी रहनी चाहिए, तो जब मैं इसे खाली देखता हूँ तो मेरा मन उदास होता है, दिमाग उदास होता है, शरीर पूरा एकदम आत्मा छोड़ने को तैयार रहता है, लगता है बस इस दुनिया में रहना नहीं। लेकिन फिर जैसे ही 30 तारीख आती है टिडिंग करके मैसेज आता है और फिर से मुझे जीने की तमन्ना है, ऐसी फीलिंग आ जाती है। फिलहाल आपके साथ मस्त मौल गौरव बना है, एंड अगर आपने पैसे बचा के रखे हैं तो फिकर नॉट, आई पे का एक्सचेंज रेट है ना। इस वक्त आपको मिलेंगे एक कतरी रियाल के बदले इंडियन रुपीज अभी भी 26.29। पिछले दिनों ऐसे रेट मिल रहे थे, हम बड़े खुश थे। लेकिन देखिए जब रेट्स अच्छे होते हैं तो पैसे नहीं होते, और जब पैसे होते हैं तो रेट्स उतने बढ़ के नहीं मिल रहे होते। इसीलिए दिमाग की होशियारी से आप बैलेंस करके मामला बनाया करिए, कुछ हमको उधार दिया करिए, कुछ घर भेज दिया करिए। 26.29 INR के बाद अगर हम बात करें श्रीलंका रुपीज अगेंस्ट 1 कतरी रियाल 90.73, अगर पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.10 पाकिस्तानी रुपीज। तपाई को नेपाल रुपीज का रेट था जादो दाजो एक कतरी रियाल के बदले बहनी 42.04। हाँ जी हाजूर राम रो रेट छा 42.04 को नेपाल रुपीज का रेट छा। दाई अगर इसके बाद हम बंधु बांग्लादेशी टका बात करेगा दादा बाड़ी थे पाड़ी थे। हाँ जी एक्टा कतरी रियाल के बदले 33.73 तो 33.73 रेट आ चे बांग्लादेशी टका चिलुम। मस्त मौल गौरव ने यहाँ रेडी मिर्ची में बता दिया है, अगर है तो घर भेजो वरना मेरी तरह सैलरी का इंतजार करो। आई पे एक्सचेंज रेट यहाँ मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: यार सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थी है और इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज द रियल वेल्थ। लेकिन दुनिया की इस भागदौड़ में यार कभी कभी हम अपनी हेल्थ को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन हमें याद दिलाता है हमारा PHCC। शाम के 6:04-5 से ऊपर हो गए।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: मतलब आप इतना मत सोचिए, गौरव ने कहा 6:04-5 हो गए। अरे भाई कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए। 4 मिनट हो गए या 5, क्या फर्क पड़ जाएगा 1 मिनट में। हाँ जी, और ऐसी जिंदगी में छोटी छोटी बातों को ना छोड़ दीजिए। सीनियर कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन एट ली अबीब हेल्थ सेंटर जो हमारे कतर में है, उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन के डॉक्टर मोहम्मद आल ओतैबी साहब ने हम सबसे अर्ज किया है कि हम अपनी हार्ट हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। कैसे? रेगुलर चेकअप के जरिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए, और किसी भी तरह के सिम्टम को इग्नोर करने को बिल्कुल ना सोचें। अगर आपको लग रहा है इसे अर्जेंट मेडिकल अटेंशन चाहिए, सो प्लीज गो एंड गेट इट डन। कल है 29th of September, जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है, और डॉक्टर आल ओतैबी साहब ने यही कहा, डोंट मिस अ बीट, इस बार का ये जो स्लोगन है उसको ध्यान में रखिए। हेल्थ मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने हार्ट को अच्छा हेल्दी रखें, उसके लिए जरूरी हम अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, वॉक जरूर करें, ओवरवेट होने से बचें, फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान दें, एंड अनहेल्दी चीजों से थोड़ी दूरी तो जरूर बना लें। एंड विश्वास कीजिए, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या फिर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ये सब कहीं ना कहीं हमारे कार्डियोवास्कुलर रिस्क को और बढ़ाता है। प्लीज अपने हेल्थ का ध्यान हमें ही रखना है, पर फिर भी PHCC हमें बार बार याद दिलाता है। अगर आपका भी काफी टाइम हो गया है, लास्ट चेकअप हुए, सो प्लीज गो एंड गेट इट डन। कल है वर्ल्ड हार्ट डे, एंड दिल और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहेगा तो हम लंबा जिएंगे, और ऊपर वाला हमारे जिंदगी में वो सब कुछ अच्छा अच्छा देगा जो हम डिजर्व करते। बस इंतजार कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, और ज्यादा चिंता मत कीजिए यार। हम हमेशा कहते हैं चिंता से ना चतुराई घटती है। हाँ जी, 89.6 मिर्ची वाली थॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Murga, murga! ¡La fiesta la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: ¿Aló?
3: ¡Hi! ¡Yo! से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4198 3983।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुधरा था, मतलब।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस। सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
7: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
8: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback.
9: Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
7: Bima for your peace of mind. Terms and conditions apply.
10: Arey wah, ice cream and cake lovers, ready ho jao! Dairy Queen laya hai dhamakedar special promotion.
7: Hanji, 26th se 30th September. तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
10: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
11: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
12: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
13: कैसे रुक सकता है?
14: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
15: 89.6
16: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

जो मैं नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे मुंह।

इंडिया की हॉकी और क्रिकेट की टीमें अब आपस में एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान की टीमें लड़ने वाली हैं। लेकिन ये होगी बैट एंड हॉकी से। यस, बात कर रहा हूँ एशियन गेम्स की, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान की टीम पहले तो हॉकी के मैच में भिड़ने जा रही है, फिर उसके बाद मेंस क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है दोनों ही, यानी कि इंडिया पाकिस्तान की। अब इसकी वजह से हम आराम से हो सकता है जल्दी ही फाइनल मैच में दोनों टीमों खेलते देखें। अगर बात करें तो हॉकी में एशियन गेम्स में सेमीफाइनल में इंडिया पाकिस्तान का मैच पक्का हो चुका है, 1 अक्टूबर को यह गेम होने वाला है। वेल, बात करें लेटेस्ट वाली एकदम मेडल रैंकिंग की, तो इंडिया विद 45 मेडल जिसमें 4 गोल्ड है, हम 12वीं पोजीशन पर है। कतर हमसे 2 पोजीशन नीचे 14वीं पोजीशन पर विद 3 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। वेल, इतना ही कहना चाहता हूं, शानदार प्रदर्शन रहा है हमारे कतर का भी इस गेम्स में, और अब इंडिया के पास मौका है कि जल्दी जल्दी जहां जहां सेमीफाइनल फाइनल पहुंचे वहां पे मेडल जीत कर टॉप 10 में रैंकिंग बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अभी भी हम बहरेन से भी पीछे हैं। यस, विद जस्ट 4 गोल्ड मेडल्स बहरेन लीड कर रहा है, विद 8 गोल्ड मेडल्स बहरेन से ऊपर ईरान, उससे ऊपर थाईलैंड, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, साउथ कोरिया, जापान एंड चाइना लीडिंग विद 128 गोल्ड मेडल। दोस्तों हैरान परेशान ना होइए, हमारी टीम इंडिया जब खेलेगी तो हम पक्का जीतेंगे, और जैसे जैसे मेडल बढ़ेंगे रैंकिंग और बेहतर होगी। फिलहाल के लिए मस्मौला गौरव आगे बढ़ता है मिर्ची इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची 1 पर मैं हूँ आरजे मस्ट फॉलो गौरव। और आज ना एकदम स्कूल स्टूडेंट की तरह मेरी जिंदगी हो गई थी। सुबह सवेरे 6 बजे अलार्म क्लॉक बजा, मैं जल्दी से तैयार हो गया ताकि हमारे कतर में GWM मिर्ची रिचार्ज को लेकर DMI स्कूल जा पाऊँ। एंड वहाँ क्या मस्ती, क्या धमाल हुआ, ये सुनाता हूँ।
1: आज हम है DMI स्कूल में, जहाँ पर बच्चों के साथ हमने किया है मिर्ची रिचार्ज। Have you guys enjoyed it?
2: Yes, it was the best.
3: What did you like the most?
2: I liked the magic show.
1: Magic show, and you?
4: I also liked the magic show very much.
2: It was so good.
1: It was so good. How was Mitchell Recharge?
4: It was very nice.
1: You liked it?
4: Yes.
1: We should come again?
4: Yes.
5: Anyone here won any prize?
1: Yes, you. Come here.
5: Wow. So we have kids winning prizes as well. And what did you win prize?
6: For the question and answer.
5: For the question answer.
1: What was the question?
6: Which planet is called the red planet?
1: And you gave the answer?
6: Mars.
1: Wow.
5: That is the right answer.
1: Who would like to share it with me? Would you like to share your breakfast with me or lunch?
5: Nobody.
1: I love you.
5: With this, मैं हूँ आरजे आफरीन और मेरे साथ है आरजे गौरव।
1: Must follow Gaurav and we are enjoying right reliving our school days.
5: Memories, yes.
1: No doubt. And आगे बढ़ते हैं और बच्चों से बातें करेंगे।
5: बिल्कुल। थोड़ी देर में right here on Mirchi, it's hot.
0: एंड ये था GWM मिर्ची रिचार्ज, जहां पर हमने आज DMIS के बच्चों के साथ बहुत सारा फन मस्ती धमाल किया। पर बड़ा बुरा लगा जब मैंने पूछा हु विल शेयर देयर लंच एंड ब्रेकफास्ट विद मी, नोबडी, एक बच्ची ने कह दिया। तो मुझे लगा ये बच्ची मेरी तरह है, मैं भी किसी से शेयर नहीं करता था। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: तमंचे में तो डिस्को गाना खत्म हुआ लेकिन आपके साथ है पर आज डिस्को जुम्बा सब किया हमने डीएमएस के बच्चों के साथ, जहां पर हम लेकर पहुंचे थे जीडब्ल्यूएम तहसील मोटर्स का मिर्ची रिचार्ज। एंड ट्रस्ट मी, बच्चों ने बहुत सारा फन मस्ती धमाल किया एंड दे एंजॉयड ईच एंड एवरी सेशन विद अस।
1: 9.6 मिर्ची वन से मैं हूं आरजे मस्तमौला गौरव एंड मेरे साथ व्हाट्स योर नेम?
2: आयला।
1: एंड योर्स?
2: अनिता।
1: एंड डिड यू गाइस एंजॉय द मोमेंट?
2: Yes.
1: What was the best?
2: The magic show.
1: And you?
2: Magic show.
1: And did you like the Zumba?
2: Yeah.
1: And what was the song that was playing?
2: Die Die.
1: Die Die?
3: And yeah. Did you like the RJs?
2: Yeah.
1: And who were the RJs? Can you name them?
2: Gaurav.
1: Huh?
2: Afri.
3: Arava.
2: Anshu.
1: And?
3: Girls.
4: Isha.
3: बच्चों के साथ में बहुत सी मस्ती की है हमने राइट हियर ऑन मिर्ची। आप बने रहिएगा फ्रॉम डीएमआईएस स्कूल मिर्ची रिचार्ज इन एसोसिएशन विद जीडब्ल्यूएम एंड तहसील मोटर्स। सुनते रहेगा मिर्ची, इट्स हॉट।
0: एंड ट्रस्ट मी, अगर आप चाहते हैं ये फन मस्ती धमाल आपके स्कूल में भी हो तो बच्चों मैसेज करते रहो 5000196 पर अपना नाम और अपने स्कूल का नाम, ताकि हम लेकर आए जीडब्ल्यूएम का ये मिर्ची रिचार्ज आपके स्कूल में भी। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

0: Hollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग

0: है।
1: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: कट कट
5: भट्ट
6: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
4: भट भट भट भट भट भट भट, बाइक बहुत आवाज करती है।
6: खट खट हू दैट,
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: साज भट्ट एंड सुबोध शर्मा की आवाज में ये गाना, जिसका हमारा रिश्ता जो है लगभग 19 साल पुराना है। अरे इसका पार्ट वन आया था ना हमारा अपन का, उसी का तो गाना है ये, पार्ट टू का। फिलहाल 19 सालों में गाना वैसा का वैसा ही फील दे रहा है। फिलहाल मिर्ची का टाइम शाम के 7:04।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: पापा मम्मी परेशान हूँ अपने बच्चे के एडमिशन को लेकर, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने थोड़ी राहत दी है।
2: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, ये खबर उन पेरेंट्स के लिए राहत भरी खबर है जो अपने बच्चों के लिए एडमिशन सीख कर रहे हैं लेकिन कतर में उनको सीट्स नहीं मिल रही है। तो हम आपको बता दें, कतर की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन ने एक एक्साइटिंग न्यू रिफॉर्म लाया है, जहां पर वो अब कतर में लगभग 7000 न्यू सीट्स 46 प्राइवेट स्कूल्स में एड करने जा रहे हैं। Yes, ये प्रोसेस को और सिंपल बनाएगा, काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को फ्लेक्सिबल इसीलिए बनाया कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो है वो हर बच्चे को मिले और बेहतर शिक्षा का हक सबको है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये 46 स्कूल्स में, जो कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें लगभग 7000 सीट, 6883 एग्जैक्ट नंबर है, ये बढ़ा दी गई है। अब इससे क्या होगा, अब आपके बच्चे का एडमिशन होगा, आप आराम से अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, तो अब टेंशन भूल जाओ। अब उनके लिए उनके स्कूल बैग्स खरीदना शुरू कर दो, टिफिन, लंच बॉक्स, नए बॉटल सब दो, ताकि आपका बच्चा जब स्कूल जाए तो उसे अच्छी वाली फीलिंग आए। चलिए जी, 46 प्राइवेट स्कूल, मोर देन 6880 सीट्स, एंड ये बताता है कि एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट, एंड इसीलिए कतर में बड़ा स्टेप लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन द्वारा। थैंक यू सो मच मिनिस्ट्री को, जिन्होंने उन पेरेंट्स की परेशानी को दूर किया जो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए परेशान थे। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Energy.
1: Escabana, Puscabana, Sacabana, Rabana, Burga, Burga. Na vida, la Burga. Energy, Burga.
2: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
3: Hello,
4: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
3: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
4: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरवील सिंह बोल रहा हूँ.
3: हाँ जी.
4: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
3: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
4: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे. तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरिया से एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
3: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करेगा.
4: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था. मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
3: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
4: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका
3: पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
4: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
3: है. सुनिए मत, सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
4: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
3: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
4: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
3: हाँ बताइए
4: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
3: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
4: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
3: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ. डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन.
7: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स. संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से.
6: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ. डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट गुड. तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में.
8: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है.
9: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है?
8: हाफ पे बैक मतलब?
9: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली.
8: वाओ, किस किस चीज पे?
9: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज.
8: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी.
9: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो. तो देर किस बात की, हेड टू लूलू. हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा. लूलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
10: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
11: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा.
12: दोनों मिलेगा.
13: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
14: 89.6 FM, मिर्ची 1. इट्स हॉट.

यार जैसे अच्छे हीरे की परख जौहरी को होती है, अच्छे खाने की परख अच्छे शेफ को होती है, और मुझ जैसे लोगों की बात करिए तो हम तो सूंघ के पहुंच जाते हैं कि देसी घी में तलती कचौड़ी कहां मिल रही है। वैसे ही संगीत प्रेमी भी ना संगीत की महफिल से जुड़ जाते हैं, और एक ऐसी महफिल के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। और ये म्यूजिकल नाइट्स लेकर आए हैं बंट्स कतर। यस, बंट्स कतर जो कि एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईसीसी अंडर द एजीज ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया है, वो बंट्स कतर लेकर आ रहे हैं तरंग 2026 म्यूजिकल नाइट विथ कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा। वेल, ये कहां होने जा रहा है? डीपीएस ऑडिटोरियम में, ऑन 9th of October, फ्राइडे का दिन है। आपके लिए फ्राइडे की एक पार्टी बिल्कुल तैयार करिए। टाइमिंग्स है 4:30 ऑनवर्ड्स, एंड जैसे ही पहुंच जाएंगे आप वहां बैठ जाएंगे क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चल रहा है मामला। एंट्री बिल्कुल फ्री है, और यहां परफॉर्म करने वाली है सिंगर अनुराधा भट्ट, साथ ही साथ जसकरण सिंह एंड शोधन शेट्टी, ये सब के सब तो होंगे वहां पर। कुछ और इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए दीपक होंगे, वामन होंगे, राजेश होंगे, राजगोपाल होंगे, एंड ढेर सारे कल्चरल प्रोग्राम। सो इफ यू वांट टू स्पेंड योर फ्राइडे विद अ म्यूजिकल थीम वाली नाइट, सो दिस इज वन सच इवनिंग, तरंग 2026 म्यूजिकल नाइट जो लेकर आए हमारे कतर में बंट्स कतर। एंड आई एम श्योर अगर आप संगीत के प्रेमी हैं तो इस महफिल का हिस्सा बन ही जाएंगे। तरंग 2026 म्यूजिकल नाइट बाय बंट्स कतर, एंड ये होगा 9th of October फ्राइडे के दिन, डीपीएस ऑडिटोरियम अल वखरा दोहा कतर में। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

नजर ना लगे बेहतरीन खेल रही है। हाँ जी बता दें, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बाद कतर ने दमदार वापसी की है। एंड अरेबियन गल्फ कप में कतर ने पहले बहरीन को 2-0 से हराया, फिर उसके बाद यमन की टीम को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी दौड़ मजबूत कर दी है। Yes, अब कतर का अगला मुकाबला 30th of September यानी कि बुधवार के दिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से होना है, और यूएई को हराते ही हम अपने ग्रुप को टॉप कर जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस हिसाब से कतर खेल रहा है, इस बार अरेबियन गल्फ कप पर हमारी नजर है, हम इस कप को नहीं छोड़ेंगे। एंड एक बात याद रखिए, टीम ना सीखती है, हर जीत हर हार हमें कुछ सिखाती है, और इसी बात को ध्यान रखते हुए कतर ने बहुत कुछ सीख लिया। और मुझे लगता है जब बात अरेबियन पेनिनसुला की आती है, गल्फ कप की आती है, तो कतर ये मौका जाने नहीं देगा। एंड लेट्स चीयर फॉर आवर अल नावी। 89.6 मिर्ची वन पर मस्मोलो गौरव बस इतने कहेगा, इस वेंसडे हम अपनी टीम को चीयर करने के लिए उतर पड़ेंगे, और सऊदी अरेबिया में हो रहे इस अरेबियन गल्फ कप में कतर जीते इसके लिए हम सब दुआ करेंगे। 89.6 मिर्ची वन, कम ऑन अल नावी, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा। आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us, how old were you when you made this song?
3: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था। सारे बादल नीचे आ चुके। And उस बीच में ना, I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है, देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
2: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा ब्लैक शीप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है। अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
5: Cut, cut.
6: Who there?
5: Whom are you?
6: Whom are you who?
7: Aray, whom are you looking for, madam?
6: Cut, cut. Who that?
8: Only on 89.6 Mirchi 1.
9: Mirchi.
8: It's hot.

यार कितनी यादें थी ना लाइफ की, वो मोनोटोनी हमें कितनी अच्छी लगती थी। वो सुबह का 6 बजना, अलार्म क्लॉक का तेजी से बजना और मम्मी का ये कहना जल्दी करो स्कूल वैन आने वाली है। और अपनी स्कूल वैन ऐसी गाड़ी होती थी टेम्पो टाइप, पे पे पे हॉर्न बजाती थी और उस 3 हॉर्न में हम तीनों भाई गाड़ी के अंदर। बिल्कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूँ, स्कूल लाइफ वर द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ। एंड मैं इतना ही कहूंगा कि यार शायद हम जिंदगी में इतना आगे निकल गए हैं ना, लेकिन फिर भी जब पीछे घूमकर स्कूल की यादों को संजोते हैं इतनी चीजें मिलती हैं कि आप अगर किताब लिखने बैठिए तो पूरी पूरी पुस्तक लिख देंगे और ऑथर बन जाएंगे। इस उम्मीद से कि आज मैंने जो GWM मिर्ची रिचार्ज में DMIS के बच्चों के साथ ढेर सारा फन मस्ती धमाल किया, हमारी मिर्ची टीम ने, अंशु ने, आफरीन ने, आरजे ईशा ने, सब ने बहुत सारी मस्ती धमाल किया एंड अब अगले स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपके स्कूल आए तो 5000 1896 पर बच्चों अपना नाम और अपने स्कूल का नाम भेज दो। एंड अगर आपको मिला मौका, आपका मैनेजमेंट हमें देगा परमिशन, तो हम आपके स्कूल में करेंगे सारा फन मस्ती धमाल। इस उम्मीद से कि आप इंजॉय कर रहे हो मिर्ची पर हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छा सुन रहे हो। मस्मोलक और लेगा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में ढेर सारी बातें लेकर। तब तक ले हबीबी मां सलामा, मिर्ची हॉट है।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.
4: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: द शो स्टार्ट्स इन
6: हिट गाना सुनना आसान है, ये समझना मुश्किल है कि वो हिट आखिर क्यों हुआ. और वही तो हम करते हैं हर हफ्ते के वो 20 गाने जो सबकी जुबान पर हैं. लेकिन मैं सिर्फ उनका काउंटडाउन नहीं करता, मैं उनके पीछे की कहानी ढूंढता हूँ. किस आवाज ने गाने को पहचान दी, किस कैरेक्टर ने उसे यादगार बना दिया, और कैसे एक गाना फिल्म से निकल कर हमारी जिंदगी में उतर गया. Hey, this is the Mirchi Top 20. मैं हूँ सुरेन. गाने आपके, कहानियाँ मेरी. And we kickstart the countdown with गाना नंबर 20. ऊंचा लंबा कद, the rehashed version from Welcome to the Jungle.
7: Number 20.

फुल ऑन मसाला, फुल ऑन मैडनेस, चाहे 2007 हो या 2026। लेकिन बॉलीवुड पिछले 10-15 साल में एक अजीब फेज से गुजरा है। कभी स्केल, कभी VFX, कभी स्पेक्टिकल, जैसे फिल्म को यादगार बनाने के लिए सब कुछ बड़ा होना जरूरी था। लेकिन अब शायद फिल्म मेकर्स को समझ आ रहा है, फिल्म बड़ी नहीं, कहानी और कैरेक्टर्स अनफॉरगेटेबल होने चाहिए। रणवीर का एनिमल, रणवीर का धुरंधर, और फिर एक ऐसे एक्टर जिनके कैरेक्टर्स ने ये काम सालों पहले ही कर दिया था। द नेम इज अजय देवगन, चाहे वो ओमकारा बने। अरे तुम

या फिर बाजीराव सिंघम। दीज आर अजय देवगन टू मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स, लेकिन मेरे लिए पर्सनली विजय साळगांवकर ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। दृश्यम ने दिखा दिया कि ऑडियंस को सीट से बांधे रखने के लिए वीएफएक्स, एक्सप्लोजन्स इनकी जरूरत नहीं है। एक आदमी, एक सीक्रेट और एक किलर कैट एंड माउस गेम ही काफी है। और आयरनी देखिए, दृश्यम की फिल्में अपने म्यूजिक के लिए कभी याद नहीं की गई। एंड बिफोर आई गेट टू दृश्यम, ये बता दूं कि नंबर 19 पर अजय सर का एक और अवतार हमने देखा था इन धमाल 4। उसका गाना साड़ी हैपेंस टू बी गाना नंबर 19। लेकिन गाना नंबर 18, वेल दृश्यम की दुनिया, वहीं से पहला गाना निकल कर आ रहा है। दिस इज विंगंसा, सिद्धार्थ बसरूर की आवाज में, रवि बसरूर का म्यूजिक, आमिर खान के शब्द, फ्रॉम दृश्यम द कंक्लूजन नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
2: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
1: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
3: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
4: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है।
3: हाफ पे बैक मतलब?
4: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
3: वाओ, किस किस चीज पे?
4: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
3: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी।
4: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो। तो देर किस बात की, हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
5: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
7: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
10: नंबर 16।

Shararat in the voices of Jasmine Sandlars and Madhuvanti Bagchi. Ekdam unapologetic Bollywood madness. Aur shayad isliye ye gana yaad reh jata hai. Lekin ek gana countdown se bahar ho chuka hai. Iska exit mujhe genuinely surprise karta hai. To phir aao. Now, आवारापन 2 के तीन गाने अभी भी चार्ट्स में हैं, लेकिन आवारापन की ओरिजिनल फिल्म का ये गाना तो फिर आओ अब इस काउंटडाउन पे नहीं है. एंड मुझे लगता है इसका एक रीजन है. कभी कभी किसी गाने को अच्छा सिंगर नहीं सही आवाज चाहिए होती है. उसमें एक खास मैस्कुलिन वजन की जरूरत थी, एक ऐसी आवाज जो हार्ट ब्रेक को फील भी करे और कैरी भी करे. Somehow I always thought के यार ये गाना एक सिंगर की आवाज में बहुत अच्छा लगता. And that singer is Fahim Abdullah. अगर कोई इस गाने को वो पुरानी रूह, वो darkness और वो अच्छी पकड़ दे सकता था, then in my eyes I thought it could have been Fahim. और फिर Fahim ने अपने social media पर इसका एक cover गा के डाल दिया.

0: बस दर्द वही है, लेकिन आवाज का वजन बदल गया और गाना भी। और शायद इसलिए आवारापन टू का म्यूजिक इतना इंटरेस्टिंग है। ये पुरानी फिल्म को रिपीट नहीं कर रहा है, ये अपनी आवाज ढूंढ रहा है। लेकिन जिन्होंने तो फिर आओ गाया है इन आवारापन टू, उनका डेब्यू सॉन्ग हैपेंस टू बी वे जुनून, कंपोज्ड बाय दिस जीनियस कॉल्ड मिथुन और लिखा है सईद कादरी साहब ने। दिस वन इज अ नंबर 15 फ्रॉम आवारापन टू।
1: नंबर 15।

0: सांसों की माला पे, मिर्जापुर की पूरी एल्बम में मेरा सबसे फेवरेट गाना। एंड इसकी कहानी बहुत पुरानी है। मीराबाई और कृष्ण जी के बीच जो एक समर्पण की लोक कथा है, ये कॉम्पोजिशन उस एहसास से जुड़ा हुआ है। और ये मास्टरपीस तुफैल होशियारपुरी नाम के कवि को एट्रिब्यूटेड है। लेकिन जिस आवाज ने इस कॉम्पोजिशन को पूरी दुनिया की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बना दिया, वो आवाज थी उस्ताद नुसरत फतेह अली खां की। और नुसरत साहब को याद करते वक्त एक डिस्टिंक्शन करना जरूरी है। उनकी कला को सल्यूट करना किसी मुल्क की सियासत को सर्टिफिकेट देना नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक महान आर्टिस्ट का हिसाब चुका रहे हैं, उस इन्फ्लुएंस का जो उन्होंने हिंदी फिल्म म्यूजिक पर छोड़ा। थिंक ऑफ ऑल द सॉन्ग्स, तेरे बिना नहीं लगदा दिल मेरा सोनिया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, निट खैर मंगा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, मेरे रश के कमर, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, मेरा पिया घर आया। यार कुछ रिक्रिएट हुए, कुछ की ट्यून्स को नए लिरिक्स, नए सिचुएशंस और नए नाम मिले, कुछ तो चुराए भी गए, लेकिन इन्फ्लुएंस इतना गहरा था कि नुसरत साहब की मेलोडिक वोकैबुलरी हिंदी फिल्म म्यूजिक का हिस्सा बन गई। और इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है एआर रहमान का एक गाना, जो उन्होंने नुसरत साहब के एक बहुत ही मशहूर गाने सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना से प्रेरित होकर मणि रत्नम की फिल्म गुरु के लिए एक कॉम्पोजिशन बनाई थी। और वो गाना था तेरे बिना, रिटन बाय गुलजार साहब, संग बाय एआर रहमान हिमसेल्फ। दिस हैपेंस टू बी माय पिक ऑफ द वीक।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
2: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
4: कम है के?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
7: नंबर 10।

0: ये आवारापन, अरिजीत की आवाज अभी भी उस पुराने आवारापन का दर्द जिंदा रखती है। लेकिन जिस बॉलीवुड में सूरज बरजातिया ने 1989 में एंट्री ली थी यार, वो बॉलीवुड तो आज बिल्कुल अलग है। कैन यू बिलीव इट, 37 साल हो गए हैं लेकिन सिर्फ 10 फिल्म्स डायरेक्ट किए हैं सूरज जी ने। फिर भी सूरज जी ने एक ऐसी दुनिया बना दी जो आज के बॉलीवुड में ऑलमोस्ट एलियन लगती है। यहाँ फैमिली में लोग एक दूसरे को तू तड़ाक करके बात नहीं करते, एक दूसरे को आप कहते हैं, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, लेकिन कोई विलन नहीं होता। अपनी खुशी से पहले फैमिली की खुशी आती है और बदला लेने से ज्यादा सैक्रिफाइस की वैल्यू होती है। सूरज बरजातिया ने इंडिया को आइडियलाइज नहीं किया, उन्होंने एक आइडियल इंडिया इन्वेंट किया। और सवाल ये है, इतना बदल चुके बॉलीवुड में क्या इस दुनिया के लिए अभी भी जगह है? इसका जवाब हमें मिला सूरज बरजातिया से।
1: Somewhere I feel complete now, even after so many years, people come here like this to see my cinema. My daughter is there, my son-in-law is there with the family, my sons are there, their in-laws are there, I have two granddaughters at home. So somewhere up, main kuch dena chahta hoon. Honestly, this is one of the most progressive films of mine, keeping my values intact. And director wohi hota hai jo kuch kehna chahta hai. So I just want to convey in this film how the generations can stay together. Of course, main kahin phansta hoon har film mein because main goodness mein aur goodness karna chahta hoon. To wo mere apne issues hai, but this is one of my most progressive and favorite films.
0: Generations ko saath rakhna aur apni values ko compromise kiye bina unhe aaj ke cinema mein lekar aana. Shayad Suraj ji ki sabse progressive baat yahi hai ki unhone waqt ke saath apni values badalne se inkaar kar diya. Aur ab isi duniya mein melody lekar aa rahe hain Bollywood ke ultimate hit machine, the man who collaborated with Suraj Barjatya on Prem Ratan Dhan Payo, Himesh Reshamya. नंबर 9 पर डेब्यू हो रहा है ऑफ द टाइटल सॉन्ग ये प्रेम मोल लिया, संग बाय निहाल टोरो एंड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया श्रेया घोषाल। नंबर 9।

0: we be frontin' on the lines. Relax, honey. Get it? Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline?
2: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है?
1: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
2: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।

तबाही नाम का गाना खत्म जरूर हुआ है, लेकिन असली तबाही तो सलमान खान ने मचाई हुई है। भाई ने बिग बॉस पर उन ट्रोल्स और उन जर्नलिस्ट को सीधा निशाने पे ले लिया जिन्होंने क्रिटिसिज्म और कैरेक्टर असैसिनेशन के बीच की लाइन ही मिटा दी थी। फिल्म बुरी है तो बोलो, एक्टिंग खराब है फिर भी बोलो, अगर वजन मेरा बढ़ गया है उस पर भी बोलो, लेकिन पर्सनल होने का लाइसेंस वो किसी को नहीं मिला है। और फिर सलमान खान ने उन जर्नलिस्ट को भी कॉल आउट किया जो एक्ट्रेसेस की तस्वीरें खींचकर उनके बॉडी पार्ट्स को जूम करके सोशल मीडिया पर बेचते हैं। उसे जर्नलिज्म कहना जर्नलिज्म की इंसल्ट होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं है, दैट इज चीप वॉयरिज्म। और जर्नलिस्ट या पत्रकार नाम का शील्ड पहन लेने से वो रिस्पेक्टेबल नहीं हो जाता। और मुझे सबसे ज्यादा मजा एक आयरनी में आता है, बॉलीवुड में लाइन क्रॉस करना सलमान खान से बेहतर कोई नहीं जानता है, लेकिन इस बार भाई ने लाइन क्रॉस नहीं की, भाई ने एक नई लाइन खींच दी है। और जब कोई इंडस्ट्री के अंदर से इस टॉक्सिक कल्चर को रोकने की बात करता है उसे क्रेडिट मिलना चाहिए। बाय द वे, द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द चार्ट्स इज चुनरी चुनरी, जो है फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, लेकिन ओरिजिनल वाले में सलमान भाई का स्वैगर याद है। नंबर 6।

0: 12, आज उसी भाई के नाम, सलमान खान के नाम मेरा रीवाइंड ट्रैक। वो बात जो जर्नलिस्ट एंड ट्रोल्स की क्लास लगाने के बाद वो बिंदास बोल सकते हैं। बॉलीवुड, मैं हूँ हीरो तेरा।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हमें त्रिवेदी का ये गाना बिना किसी एफर्ट के मूड हल्का कर देता है। लेकिन रोमांस की दुनिया में एक इंटरेस्टिंग चेंज जरूर आया है। पहले रोमांटिक गाने आते थे और उसके साथ में लव स्टोरी भी मिल जाती थी। प्राइम एग्जांपल फॉरएवर विल बी दिस सॉन्ग।
1: हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना।
0: फिर हमें रणबीर और दीपिका दिखे। सिर्फ पिछले साल हमें एक लव एंथम भी मिला।

आज जब इन गानों को सुनते हो तो एक कहानी सामने आ जाती है, लेकिन आजकल कुछ गाने ऐसे हैं जो आपको कहानी देते ही नहीं, इनफैक्ट आपको जगह देते हैं अपनी कहानी बनाने की। वारू फॉरएवर ये परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि 2018 में जब मिर्जापुर आई थी ये गाना उसी टाइम पे हमने पहली बार सुना था, लेकिन ये गाना अब सीरीज से बाहर निकल गया है। कपल वीडियोस, हार्ट ब्रेक एडिट्स, वेडिंग मोन्टाजेस, अपनी फोटोग्राफ्स, अपनी यादें। मिर्जापुर ने सिर्फ गाना दिया था, इंटरनेट ने उसका रोमांस लिख दिया। और शायद आज रोमांटिक गानों की डेफिनेशन भी बदल रही है। पहले गाना आपको लव स्टोरी दिखाता था, आज गाना आपको अपनी लव स्टोरी दिखाने की जगह देता है, क्योंकि एवरीवन इज द डायरेक्टर ऑफ देयर ओन लव स्टोरी, और अपनी कहानी में सब शाहरुख खान है। और वही गाना रोमियो श्रेया घोषाल की आवाज में मिर्जापुर द मूवी में एक नई जिंदगी लेकर आ रहा है। On number 3, probably the fastest climber of the Mirchi Top 20, ye hai Varun Forever. Number 3.

गहरा हुआ सुनते ही वो बर्फीली पहाड़ियां, रणवीर सिंह, सारा अर्जुन एक बाइक पे बैठे हुए, वो सारे विजुअल जहन में आ जाते हैं। और शायद ग्रेट फिल्म सॉन्ग्स की एक खूबसूरत क्वालिटी यही होती है कि आवाज, गाना और चेहरा एक ही याद बन जाती है। लेकिन बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे भी हैं जहां गाना याद रह गया लेकिन चेहरा बिल्कुल नहीं याद आता। और कभी कभी इसका रीजन सिंपल है, कास्टिंग इज ऑल रॉन्ग, गलत है।

ये गाना आई एम श्योर कि आपकी प्लेलिस्ट में आज भी मौजूद है। इस गाने का नाम है मौला मेरे मौला फ्रॉम द फिल्म अनवर और इसे बनाया था मिथुन ने। गाना आज भी जिंदा है, लेकिन ऑनेस्टली एक सवाल का जवाब बताओ, क्या आपको इसके हीरो याद है? नहीं ना, लेट मी टेल यू द नेक्स्ट सॉन्ग।

अरे खूबसूरत गाना साइबो फ्रॉम शोर इन द सिटी, एंड ये गाना कितने लोगों को याद है, लेकिन फिल्म कितने लोगों को याद है? फेसेस तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ऑडियंस कभी कभी गाने को एक्टर से आजाद कर देती है, लेकिन इसका ऑपोजिट भी होता है जब कास्टिंग इतनी परफेक्ट होती है कि गाना सुनते ही एक्टर की आंखों में वही इमोशन दिखने लगता है जो सिंगर की आवाज में हम सुनते हैं। शायद इसलिए आज का जो नंबर वन गाना है वो नंबर वन पे है, क्योंकि जब जब आपके कानों में तेरा मेरा रिश्ता नाम की आवाज गूंजेगी, इमरान हाशमी का चेहरा आपकी नजरों के सामने होगा, पूरे हार्ट ब्रेक के साथ, उस दर्द के साथ। बिल्कुल उसी इंसान के लिए बना हुआ ये गाना। इट इज नंबर वन वंस अगेन अनडिस्प्यूटेड ऑन द मिर्ची टॉप 20। तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज नंबर वन।

0: हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत किसी रिश्ते को बनाता है वक्त। Unfortunately, मेरा वक्त इस शो पे अभी खत्म हो गया है, and that brings a close to this episode of the Mirchi Top 20. ये वादा है कि मैं आपको फिर मिलूंगा यहीं on the Mirchi Top 20, 20 गानों के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ. Until then, Suren, over and out.
1: Suren के साथ, only on Mirchi. It's hot.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Songs जो याद रहे forever, legacy जो जिंदा रहे forever. मिर्ची पर सुनिए लता forever. Forever. Celebrating the melodious legacy of लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ मिर्ची पर. It's hot. It's hot.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर इट्स हॉट।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार श्रोता साथियों, आपका स्वागत है मिर्ची पर लता फॉर एवर विद जीतू राज। इस बड़े ही विशिष्ट संस्करण में कोकिल कंठी स्वर कोकिला दीदी लता मंगेशकर की एक और वर्षगांठ है और उनके इस बर्थडे के मौके पर मिर्ची के प्लेटफॉर्म पर हम ये विशिष्ट संस्करण आपके खदमत में लेकर आए हैं। इसमें अलग अलग अनुभव स्वानुभव हिंदुस्तानी सिनेमा की बातें और लता मंगेशकर की विशिष्ट बातें होंगी। पिछले कुछ सालों में जहां पर आरजे जीतू राज रेडियो के साथ संलग्न रहा, हिंदुस्तानी सिनेमा के कई कई लोगों के साथ साक्षात्कार करने के अवसर प्राप्त हुए हैं एंड इन्हीं के साथ कोकिल कंठी दीदी लता मंगेशकर के साथ भी कई बार साक्षात्कार हुए हैं, कई बार उनसे निजी तौर पर मुलाकातें हुई, कभी कभार सिनेमा की बातें और लता मंगेशकर की विशिष्ट बातें होंगी। पिछले कुछ सालों में जहां पर आरजे जीतू राज रेडियो के साथ संलग्न रहा, हिंदुस्तानी सिनेमा के कई कई लोगों के साथ साक्षात्कार करने के अवसर प्राप्त हुए हैं एंड इन्हीं के साथ कोकिल कंठी दीदी लता मंगेशकर के साथ भी कई बार

0: एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी ताकत है हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा में जिन्होंने न सिर्फ कई कई भाषाओं को स्पर्श किया है, जो न जानते उन्हें बताएं कि उन्होंने एक आध अंग्रेजी गाना भी गाया है, इसे जीतूराज ने सुना है, मगर सिर्फ संगीत नहीं है। लता ये एक ऐसा साक्षात्कार है, लता एक ऐसा अनुभव है जो सिर्फ संगीत और गीत तक ही महदूद नहीं रहता। ये एक ऐसा विशाल काय देव तुल्य अनुभव है जिस अनुभव को स्पर्श करने के बाद हम में से कोई भी कुछ और पवित्र ही हो जाता है। बस ऐसे ही किसी ने लता मंगेशकर को संगीत सरस्वती नहीं ना कहा होगा, कोई कारण होगा। यानी संगीत सरस्वती के साथ के हमारे अनुभव, आपके अनुभव, ये सब मिलकर ये शो होगा जिसे हम मिर्ची पर लता फॉरएवर कह रहे हैं। अगर हम आपके विचारधारा के साथ नहीं मिले तो हमें साक्षात आपसे मुआफी मांगने का हक दें, अगर कोई ख्याल गलत पड़े तो मुआफी दें, मगर उस ख्याल के साथ रुके नहीं। हमारे इंस्टाग्राम के आईडी दे रहे हैं आपको, आप अपने ख्याल, आपका कोई एक दीदी लता मंगेशकर गाया गया हुआ पसंदीदा गाना होगा वो भी भेजें, आपका अगर कोई अनुभव है जहां आपका साक्षात्कार हुआ था दीदी लता मंगेशकर के साथ वो भी भेजें। हमारी इंस्टाग्राम पर आईडी है मिर्ची जीतूराज, MIRCHIJEETURAAJ। आए इस लता मंगेशकर के सुरों के पवित्र बहती हुई गंगा जमुनी संस्कृति का अनुभव लें और आगे बढ़ें मिर्ची पर लता फॉरएवर विद जीतूराज। नमस्कार।
1: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतूराज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना क्या बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हाय, ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
3: हेलो
4: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
5: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार, अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं कभी वो दबा रहे हैं, आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा।
3: तो वही मैं सुन रहा था, मतलब।
4: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
3: हाँ जी,
4: कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
8: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है?
7: हाफ पे बैक मतलब?
8: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
7: वाओ, किस किस चीज पे?
8: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
7: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी?
8: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर। मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट
1: मिर्ची पर लता फॉर एवर सुन रहे हैं आप। नमस्कार ए हिंदुस्तान, हमारे आपके रेडियो साथी आरजे जीतू राज के साथ है। लता मंगेशकर को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तेरे में से जो नहीं जानते उन्हें बताएं। जीतू राज, एक ऐसा मौका भी था जब जीतू राज लता मंगेशकर के तब मिला था जब हम लोग 98.3 मिर्ची के 10 साल पूर्ण कर चुके थे एंड षणमुखानंद हॉल नाम की एक जगह है मुंबई में जहां पर साफे के फूल जो महाराष्ट्र में बड़े प्रचलित है, जीतू राज को भी बड़े पसंद आते हैं, उन फूलों के पूरे ऐसे बिखराव में दीदी लता मंगेशकर लाल सोफे पर बैठी थी एंड मेरे को भीड़ भड़क के बीच में से जगह निकाल कर अंदर जाने का प्रयत्न करना था, जो मैंने किया एंड वहां पर जाकर दीदी लता मंगेशकर से बस दो ही सवाल पूछने का चांस मिला, एक सचिन तेंदुलकर के बारे में एंड दूसरा क्या, हाँ ये सुनिए ना टुकड़ा।
2: एंड अहोभाग्य जीतू राज के फाइनली मेरे को पाए लगू करने को मिल रहा है। दीदी लता मंगेशकर के, दीदी कैसी हैं आप?
3: बस मैं ठीक हूँ, आप लोगों की दुआ से।
2: सचिन तेंदुलकर आपको मम्मी कहते हैं, माँ हैं आप उनकी, कैसे लगता है?
3: बहुत अच्छा लगता है और बहुत पहले उन्होंने मुझे कहा है ये और अभी वो बात सब लोगों को मालूम हुई है क्योंकि मैंने ही बताई वो, और मुझे बहुत खुशी है कि वो मुझे इतना मानते हैं। वो एक हमारे भारत की शान है, इतना बड़ा वो प्लेयर है और इतना सज्जन का है। कभी मैंने उनके मुंह से किसी की बुराई, कोई बुरा शब्द कभी नहीं सुना। एक दिन मैंने अचानक उनको एक जगह मिले वो, तो मैंने पूछा, किसी आदमी के लिए पूछा, मैंने कहा ये प्लेयर जो है ये आपके साथ कैसा बिहेव करता है, क्या है ये आदमी? प्लेयर नहीं था एक्चुअली, वो जो सिखाने आते हैं ना अपने यहाँ। तो उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छे हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसे तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कितना अच्छा उन्होंने उस बात को उलझ जाती बात वो सुलझाया, मतलब तो वो एक उस आदमी की शराफत का ये है कि वो कितना शरीफ है। और उनके पिताजी मेरे रिजनाथ के दोस्त थे।
2: दीदी पुनः सादर चरण स्पर्श, एक मैसेज रेडियो मिर्चीला जर आपके तरफ से मिलेगा रेडियो मिर्ची मुंबई को।
3: मैं क्या कहूँ, आप इतने मतलब पॉपुलर है, आपका मैंने शो भी देखा रेडियो मिर्ची का और मुझे बहुत खुशी हुई और आपके 10 साल पूरे हो रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत भगवान करे और तरक्की करे आप और दुनिया सुने और आप हमेशा खुश रहे।
2: दीदी थैंक यू सो मच, तुम्हारा सादर चरण स्पर्श,
3: मी तुम्हारा नमस्कार करते आणि माझ्या शुभेच्छा तुम्हाला देते।
1: लता ये नाम नहीं है, लता ये अध्यात्म है, लता ये संगीत है, लता ये आराधना है। ये मिर्ची पर लता फॉरएवर सुन रहे हैं आपके रेडियो साथी आरजे जीतू राज के साथ। लता मंगेशकर के बर्थडे, उनके जन्म दिवस पर ये हमारी टीम मिर्ची ने बनवाया हुआ एक तोहफा है जो आपके लिए है, और वहां स्वर्ग में हमारी जो दीदी मंगेशकर बैठी हैं उन तक हमारा ये पैगाम भी पहुंचे। आप भी कोई एक पैगाम भेजें उनके नाम हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जो मिर्ची जीतू राज है, मिर्ची जीतू राज MIRCHIJEETURAAJ। ये बताना ना भूलिएगा कौन से शहर में सुन रहे हैं आप मिर्ची पर लता फॉर एवर जीतू राज। नमस्कार, जय हिंद, ए हिंदुस्तान हमारे।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब...

0: hypermarkets, don't miss out. Visit your nearest Lulu hypermarket and make your anniversary shopping extra special. Lulu hypermarket, where the world comes to shop.
1: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ मिर्ची पर, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर इट्स हॉट।
1: नमस्कार। मिर्ची पर लता फॉर एवर चल रहा है, यानी कुछ ऐसे अनुभव आपके रेडियो साथी आरजे जीतू राज के, जिसमें लता के साथ की कुछ बातें हैं, उनके साथ के कुछ अनुभव है। और आए आगे बढ़ते हैं। हम में से कई लोगों को शायद जानकर आश्चर्य होगा कि मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के आगे जब दीदी लता मंगेशकर ने एज ए चाइल्ड ये गुजारिश करी थी कि उसे गाना है या अभिनय करना है, तो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर ने कहा था थाम बाड़ा नको। एंड दीदी लता मंगेशकर की बातें एंड उनके संपूर्ण इतिहास के सागर मंथन को मंथित करके चंद मोतियों को चूक कर जीतू राज तेरे खदमत में पेश करने का प्रयत्न करेगा। एंड ऑफ कोर्स ये अट्टहास होगा। अट्टहास ऐसे हिंदी शब्दों को कहते हैं जो फेलियर होता है, प्रयत्न होता है सक्सेसफुल होने का, वो हो नहीं पाएगा जीतू राज, क्योंकि दीदी लता मंगेशकर की बातों को बताते हुए कौन कामयाब हो पाएगा। ये दो तीन शब्द नहीं है, संगीत का संपूर्ण पुराण है। एंड वो सलीम किस तरह से मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पहले नहीं चाहते थे, दिन अचानक जब कोई एक नाटक था जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर ने बिठाया था, एंड उस नाटक का एक पात्र शायद जब नाटक का मंचन होने वाला था तब नहीं आया था, एंड दीदी लता मंगेशकर उन सारे रिहर्सल्स में हुआ करती, तो उन्होंने वो सारे जो नाटक संवाद थे वो पठित कर लिए थे। एंड जब वो पात्र नहीं आया था, उस पात्र के कपड़े पहनकर मेकअप पहनकर दीदी लता मंगेशकर रंगमंच पर चढ़ गई थी ताकि नाटक का मंचन रुक न पाए। एंड अचानक से विंग में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर बाबा आए, एंड उन्होंने देखा कि ये क्या है। एंड वो देखने के बाद फिर वो आश्चर्यचकित हो गए, और उसके बाद उन्होंने उन्हें अपनी शिष्या बना दिया, जो वैसे तो थी अब हो गई ऑफिशियली। एंड देन एज दे से संगीत के इतिहास में वो संगीत सरस्वती जन्म ले रही थी जिन्हें आगे चलकर तू और मैं मिलकर कहते पद्म विभूषित भारत रत्न। गायन कोकिला संगीत सरस्वती, प्रभु कुंज की माता, भारतीय संगीत की महालक्ष्मी दीदी लता मंगेशकर, जिनके बारे में जीतू राज जितने भी शब्दों का उपयोग करे शब्द कम पड़ जाएंगे, भाषाएं अपूर्ण रह जाएंगी, संगीत की विधाएं रुक जाएंगी, सांसें थम जाएंगी, लता मंगेशकर ये नाम चलता रहेगा। मिर्ची पर लता फॉर एवर उनके वर्षगांठ पर एक और प्रयत्न के उनके यादों के कई कई जो फूल है उनमें से एक हाथ दो फूल जो हमें याद है वो आपकी खदमत में पेश कर रहे हैं। आपका ये रेडियो साथी जीतू राज, आप कौन से शहर में सुन रहे हैं और आपके क्या विचार है उससे हमें मालामाल करना न भूलें। हमारे इंस्टाग्राम पर आपके नाम के साथ हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है मिर्ची जीतू राज MIRCHIJEETURAAJE। नमस्कार, जय हिंद।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: मिर्ची पर जारी रहेगा लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: खटखट, अकबर।
2: अकबर हु?
1: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
2: खटखट, हु दैट?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। It's hot.
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मिर्ची पर लता फॉरएवर चल रहा है आपके रेडियो साथी आरजे जीतू राज के साथ, जहां पर भाव है, स्पर्श है, उम्मीद है कि वो एक गायिका जिनको हम सुर सरस्वती कहते हैं, उनके जन्म दिवस पर उनको अपनी तरह से उनके ही इंटरव्यू, उन्हीं के विचारों का तोहफा दें। आगे बढ़ते हैं। हमारी टीम मिर्ची ने लता मंगेशकर के नाम हैशटैग मिर्ची सलाम भेजते हुए ये जो खास शो तैयार किया है, इसमें अभी जीतू राज अपनी टीम के साथ मिलकर जो करने जा रहा है, ये अगर हम लोग न करें तो इस शो में बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। वो क्या है सुनो।
2: हेलो
1: दीदी।
2: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार जीतू राज रेडियो मिर्ची मधु।
2: हाँ नमस्कार, बोला कैसे आप?
1: सादर चरण स्पर्श सगळ्यात पहिले।
2: कैसे हैं आप?
1: धमाल धमाल। आपसे बात करते हैं तो कुछ और पवित्र और पावरफुल हो जाते हैं। दशहरा बद्दल काही तरी सांगा ना। दशहरा नॉर्मली दीदी कैसे घर पे मनाती है?
2: नहीं, हमारे घर पे तो दीदी सिंपल मनाते हैं। आपको मालूम है वो आपट्याचे पान अपन म्हणतो ना।
1: हाँ।
2: सोना दिया जाता है, घर में पूजा की जाती है और सब नए कपड़े वगैरह लाते हैं और सबको मिलते हैं। आज सब मिलना होता है ना लोगों का
1: जी,
2: लोग आके मिलते हैं।
1: एक्चुअली मला एक प्रश्न विचारायची पण हिम्मत होत नाही है, तरी विचार तो। हाँ। सुना है कि दीदी के जो दो फेवरेट चीजें हैं उनमें एक तो क्रिकेट है और एक है हीरे और जवाहर खरीदना, तो दशहरे पे हीरे वगैरह खरीदने की प्रथा है, दीदी इस बार कुछ कर रही है ना?
2: देखिए मेरी माँ थी तो हमारे यहाँ दशहरे पे सोना खरीदा जाता था, मतलब सोना थोड़ा सा, ऐसे नहीं कोई 10 ग्राम ऐसे सोना, क्योंकि माँ कहती थी कि आज सोना खरीदना चाहिए,
1: शुभ होता
2: है। हम लोग तो सोना खरीदते थे और मुझे हीरे वगैरह पसंद है, पर वो मैं बार बार खरीदती नहीं हूँ, कभी कभी कभी कभार खरीदती।
1: चलो ठीक है। हाँ। दीदी रेडियो मिर्ची पर जीतू राज का एक सपना है, आपकी इजाजत हो तो बताऊं?
2: आप बताइए।
1: अब पुनः हृदयनाथ मंगेशकर ने फिर से कंपोज करना चाहिए। हाँ। कुछ बंदिशें होनी चाहिए लेकिन की जैसी, एंड दीदी लता मंगेशकर ने फिर से पंडित हृदयनाथ की कुछ बंदिशें गानी चाहिए।
2: जरूर गाऊंगी मैं, जरूर उसको आपका ये मैसेज उस तक पहुँच जाएगा।
1: दीदी फिर से आपको हम सब की तरफ से दशहरे की शुभकामनाएं, यानी सादर चरण स्पर्श।
2: नमस्कार
1: दीदी। कोकिल कंठी सुर सरस्वती, संगीत की महारानी और स्वयं में विजय पताका लता मंगेशकर। लता मंगेशकर कहीं नहीं जाती, लता मंगेशकर जैसे इतिहास, लता मंगेशकर जैसे पुराण, लता मंगेशकर जैसे आध्यात्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं, एंड इसलिए वो है, वो हैं तो जीतू राज है, वो है तो रेडियो है, वो है तो संगीत है, वो है तो भारत है। दीदी लता मंगेशकर के लिए टीम मिर्ची की तरफ से मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, ये शो करना हर किसी को अच्छा लगेगा। ये शो सुनते हुए तेरे में से भी हर किसी को अच्छा लगा होगा, बट बिलीव मी हर कोई जो सुन रहा है, शायद जीतू राज अगर ये बात कहे तो चलेगा, कि हम में से कोई भी न चाहता होगा कि इस तरह का शो हमको करना पड़े, बट ये शो करते हुए हमारी टीम को ये रियलाइज हुआ कि ये शो करते हुए भी जो दीदी लता मंगेशकर के साथ की बातचीत है या जो दीदी लता मंगेशकर की जिंदगी की कुछ कहानियां तेरे साथ हम लोगों ने बांटी हैं, उनको बांटते हुए ऐसे लगा कि लता मंगेशकर फिर से हम लोगों को सबको एक अलग तरह की इंस्पिरेशन दे रही है, एक अलग तरह की ब्लेसिंग दे रही है, एंड इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ लता भी हमारे साथ रहेंगी, आप भी रहेंगे। ये मिर्ची पर लता फॉरएवर सुन रहे हैं आपके रेडियो साथी आरजे जीतू राज के साथ, लता मंगेशकर के बर्थडे, उनके जन्म दिवस पर ये हमारी टीम मिर्ची ने बनवाया हुआ एक तोहफा है जो आपके लिए है, और वहां स्वर्ग में हमारी जो दीदी मंगेशकर बैठी हैं उन तक हमारा ये पैगाम भी पहुंचे। आप भी कोई एक पैगाम भेजें उनके नाम हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जो मिर्ची जीतू राज है, मिर्ची जीतू राज MIRCHIJEETURAAJ। ये बताना ना भूलिएगा कौन से शहर में सुन रहे हैं आप मिर्ची पर लता फॉरएवर विजीत राज। नमस्कार, जय हिंद, ए हिंदुस्तान हमारे।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉरएवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉरएवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉरएवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

मिर्ची पर जारी रहेगा लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स
1: हॉट। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मिर्ची पर लता फॉर एवर ये सुन रहे हैं। इस शो में आपके रेडियो साथी आरजे जीतू राज के साथ हैं। ये हमारे मिर्ची प्लेटफॉर्म का एक विशिष्ट प्रयत्न है लता की जन्म दिवस की जो सुंदर आभा है उसे अपने शब्दों, अपने वाक्यों और लता मंगेशकर के साथ की हुई बातचीत के कुछ टुकड़ों को आप पर न्योछावर करते हुए करने का। मिर्ची पर लता फॉरएवर आरजे जीतू राज आपके साथ है, नमस्कार। और एक अनुभव बताना चाहता हूँ आपके रेडियो साथी आरजे जीतू राज के साथ हैं। ये हमारे मिर्ची प्लेटफॉर्म का एक विशिष्ट प्रयत्न है लता की जन्म दिवस की जो सुंदर आभा है उसे अपने शब्दों, अपने वाक्यों और लता मंगेशकर के साथ की हुई बातचीत के कुछ टुकड़ों को आप पर न्योछावर करते हुए करने का। मिर्ची पर लता फॉरएवर आरजे जी

0: और उस उत्सव में, तो वो जमाना तब था जब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह नहीं था, एक्स नहीं था, स्नैपचैट नहीं थे, और हम जो रेडियो पर शोज करने वाले हैं या जो पत्रकार हैं या जो टेलीविजन पर शोज करते हैं, हम सब जो सेलिब्रिटीज हैं, जैसे अमिताभ बच्चन कहें, शाहरुख खान कहें, सलमान कहें, सनी देओल कहें, शुभा मुद्गल कहें, जगजीत सिंह कहें, लता मंगेशकर, इनसे बहुत निजी, आशा भोसले कहें, इनसे बड़ा निजी राबता हुआ करता, निजी राबता यानी संबंध फोन लाइन पर हुआ करता था। तो लता मंगेशकर से मिलने के लिए उस समय जो पीआर मैनेजर्स होते थे वो पैपराजी से थोड़े अलग होते थे, पीआर मैनेजर से भी बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप हुआ करता। तो उस समय कोई एक बहुत बड़ा फंक्शन था जिसमें लता मंगेशकर से मिलने के लिए हमें आमंत्रित किया गया था, हम वहां पहुंचे भी थे, मगर उस समय टेलीविजन बहुत बड़ा था और हम रेडियो पर बस अपनी उंगलियों को स्पर्श कर रहे थे कि अभी रेडियो बड़ा होगा, रेडियो बड़ा होगा। सबसे पहली मुलाकात की बात कर रहा हूँ लता दीदी के साथ, एंड फिर वहां पर हमें आमंत्रित किया गया, हम अंदर गए, बहुत बड़ा हॉल था और बहुत सारे टेलीविजन के कैमराज हमारे सामने थे और हमारे हाथों में हमारी रेडियो मिर्ची की टीम ने एक छोटा सा रिकॉर्डिंग मशीन दिया था, उसे उस समय आईसी रिकॉर्डर कहते थे, अभी इस्तेमाल में नहीं आता आईसी रिकॉर्डर, आज के जो आरजेज होंगे वो ये सुनते हुए शायद सोचेंगे कि आईसी रिकॉर्डर इस्तेमाल किया था आरजे जीतूराज ने। तो वो लेकर हम लता मंगेशकर के आगे गए थे और तब लता मंगेशकर की जो निजी टीम थी उनको लगा कि ये, और उम्र भी कम थी हमारी तो चेहरे की लाली अभी गई नहीं थी तो तभी बस रेडियो का शुभारंभ था मुंबई में, तो उनमें से किसी एक को लगा कि ये कोई उत्साही विद्यार्थी है जो बस यूं ही आया है यहाँ पर। उस समय सेलफोन इतने लोकप्रिय नहीं थे और हम लता की टीम से जब मिले थे तो उन्होंने तकरीबन हमें गेट आउट कह दिया था एक वो समय जब तो हम खफा हो गए थे और हमारे अंदर एक मथुरा का ऐसा व्यक्ति बसता है जो इन सब बातों को बहुत निजी तौर पर लेता है, तो हमारे अंदर का बसा हुआ मथुरा का जो व्यक्ति है वो थोड़ा क्रोधित हो गया, और हम कान्हा और राधा जी को बहुत पसंद करते हैं तो हमने कहा ये तो हमारी साथ बदसलूकी हो गई। तो हम वो जो बहुत बड़ा समारोह था जहां पर लता मंगेशकर बैठी थी, हम उस समारोह से तकरीबन सिर ऊंचा करके आंखों में रक्त रंजित अश्रुओं को बहाते हुए वहां से निकल पड़े थे, और उस समय हमारा लता मंगेशकर के साथ इंटरव्यू नहीं हुआ था। मगर उसी मजमे में एक आध ऐसे लोग थे जो हमको बतौर आरजे जीतूराज के जानने लग गए थे, उनको जब पता चला कि जीतूराज चूंकि लता मंगेशकर की टीम ने उनके साथ शायद जरा सा दुर्व्यवहार किया है इसलिए इंटरव्यू किए बगैर ही निकल गए, शायद ये जो संदेश है वो स्वर सम्राज्ञी कोकिल कंठी लता मंगेशकर तक पहुंच गया था। आप मानेंगे नहीं, यकीन विश्वास नहीं बैठेगा, आज जब आपके आगे ये बात बता रहा हूं उनके जन्म दिवस की ये सुंदर आभा के बीच, अगले दिन सुबह को हमारा लाइव शो चल रहा था, उस समय लैंडलाइन बहुत लोकप्रिय थी, आजकल नहीं है लैंडलाइन इतनी भी लोकप्रिय, एक फोन बजता है, हमारे टीम में से एक लड़की दौड़ते हुए आती है, उस समय जो हमारी फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट थी, उन्होंने कहा लता मंगेशकर का फोन आया है, और हम वहीं निस्तब्ध खड़े हो गए हमारे लाइव शो के दरमियान। आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति जो अगले दिन लता मंगेशकर का इंटरव्यू करने से क्रोधित होकर भागकर आया था क्योंकि ऐसा लगा कि उनके टीम ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था, उसके अगले दिन शो पर लैंडलाइन पर लता मंगेशकर का फोन आता है। उसके बाद हमने लता मंगेशकर से क्या बातें करी वो सब कुछ यहां नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको हमारी जब आत्मचरित्र, हमारी ऑटोबायोग्राफी जब आएगी तब पता चलेगा। अभी आप इस शो का लुत्फ उठाएं, मिर्ची पर लता फॉरएवर। आरजे जीतूराज सिर्फ प्रयत्न कर रहा है कि लता मंगेशकर के वर्षगांठ पर उनके साथ के हमारे जो अनुभव है वो समस्त मिर्ची प्लेटफॉर्म के हमारे श्रोता साथियों तक पहुंचे। उसके बाद लता मंगेशकर के साथ का हमारा रिश्ता कुछ और सशक्त हो गया, कुछ और भावनात्मक हो गया, कुछ और नजदीकी हो गया। साथ में रहें, आपके ख्याल हम तक पहुंचने चाहिए। इंस्टाग्राम पर हमारा इंस्टा आईडी मिर्ची जीतूराज है, मिर्ची पर लता फॉरएवर, साथ में रहें। नमस्कार, अहमदस्ना हमारे
1: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतूराज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ मिर्ची पर, इट्स हॉट,
1: इट्स हॉट.
2: हेलो,
3: हाय, ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है. अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए. धन्यवाद. अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए. धन्यवाद. अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया 9 दबाइए. धन्यवाद. अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया 9 दबाइए. अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए 3. धन्यवाद. अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए 6. अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए 5. धन्यवाद. अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए 7. धन्यवाद. अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739. हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है. अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,9,83.
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ. आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं. आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुधरा था.
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339. हो गया.
2: हाँ जी.
3: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ, सिर्फ मिर्ची पर. इट्स हॉट.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट।
1: स्वर सम्राट की कोकिल कंठी संगीत सरस्वती दीदी लता मंगेशकर के जन्मदिवस पर प्रयत्न है कि ये जो विशाल फुलवारी है उनके गानों की, उनके इतिहास की, उसमें से मिर्ची पर लता फॉर एवर

0: दिया था। अब मिर्ची पर लता फॉरएवर में ये ध्यान से सुनिए।
1: दीदी तुम चाहते हो फंक्शन में मैं आया था एंड मस्ट कन्फेस कि आप अभी भी उतनी ही सुंदर उतनी ही स्लिम ट्रिम हेल्दी लगती हैं। प्लीज आपके सारे जो सुनने वाले फैंस हैं उन्हें बताएं दीदी किस तरह से अपने आप को ऐसे वेल रखती हैं।
2: ये इसका कोई ऐसे राज नहीं है, मतलब मैं जैसे हमेशा रहती थी वैसी हूँ। कोशिश सिर्फ ये करती हूँ कि वेट ना बढ़े मेरा, क्योंकि वेट बढ़ने से ना थोड़ा आदमी डल हो जाता है, काम करने को मन नहीं करता है। मतलब मेरा खाना पीना बहुत थोड़ा होता है और संभालती हूँ अपने आप को कि मैं एक खास एज के बाद आदमी का वेट वैसे ही बढ़ता है।
0: हाँ।
2: वो नहीं बढ़े ये कोशिश करती रहती हूँ बस।
0: ये अपनी सेहत का राज

0: फूल हैं, उनको आए फिर से नौछावर करते हैं समूचे हिंदुस्तान पर, तो हमारे हाथ फिर से थरथर कांपने लग गए, फिर से वैसे ही प्रतीत होने लग गया जैसे उस समय होता जब हम अपने शो के दरमियान लता मंगेशकर इस किंवदंती इस लेजेंड को फोन लगाते, उनसे बातें करते। अभी ऐसे एहसास हो रहा है कि जैसे वो हमारे आसपास ही हैं। कहाँ जाने वाली है, वो अमर हैं, अमर थी, अमर रहेंगी। आप में से कौन कौन ये शो कहाँ कहाँ सुन रहा है, अपने विचारों से हमें अवगत कराएं ताकि हम मिर्ची पर कुछ और ऐसे प्रयत्न करें जो आपके दिलों की धड़कनों को कुछ और तेज कर जाए, जैसे हमारी दस्तक दे रहे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। हम ऐसे सोच रहे हैं कि लता हमारे आसपास ही कहीं पर हैं। अवश्य अपने विचार हमें भेजें हमारे इंस्टाग्राम पर, मिर्ची पर लता फॉरएवर हमारा इंस्टाग्राम आईडी लिख लें, मिर्ची जीतूराज MIRCHI JEE TURAJ। आपके विचारों से हमें अवगत कराएं, हमें कुछ और साहूकार करें तो हम ऐसे प्रयोजन बार बार करते रहेंगे। जैसे मिर्ची पर लता फॉरएवर हमारे मिर्ची प्लेटफॉर्म पर हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, साथ में रहें।
1: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर। मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
1: 89.6, 89.6
0: मिर्ची। आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मिर्ची पर लता फॉरएवर सुन रहे हैं आपके रेडियो साथी आरजे जीतूराज के साथ। दीदी लता मंगेशकर का जीवन अगर सिर्फ एक शब्दों में या एक शो में बताने का प्रयत्न करे तो नामुमकिन है। ये एक इतना बड़ा इतिहास है कि जिस पर कई कई किताबें लिखी गई हैं, कई कई गाने बनवाए गए हैं, कई कई कहानियां लिखी गई हैं, कई कई लोगों ने इस पर फिल्म बनवाने का प्रयत्न किया है। ऑफकोर्स नाकामयाब रहे होंगे क्योंकि लता मंगेशकर नाम की ये जो इतनी बड़ी संस्था है, संस्था को तू और मैं क्या लिख पाएंगे। जीतूराज जब ये शब्द बोल रहा है तो ऐसे समझ रहा हूँ कि मेरे सामने माइक्रोफोन नहीं बट दीदी लता मंगेशकर है और उनके चरणों पर अपने माथे को केशर करके ये शब्दों को बोलने का प्रयत्न कर रहा है। दीदी लता मंगेशकर जब मुंबई आई थी, फिर में से कई लोगों को जानकर बहुत अच्छा लगेगा, तब मुंबई में इतनी सारी रीग नहीं हुआ करती। अपना ये जो महालक्ष्मी मंदिर है फेडर रोड की तरफ वर्ली सी फेस के पास से, वो इतना कवर्ड नहीं हुआ करता। जैसे इन दिनों दीवारें बनी है वैसी नहीं थी। तो दीदी लता मंगेशकर मलाड, अंधेरी, जुहू, अपना यहाँ जेकब सर्कल के पास जो फेमस स्टूडियो है हमारे मिर्ची मुंबई के स्टूडियो के ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर रिकॉर्डिंग्स के लिए दौड़ा दौड़ी किया करती है। एक दिन में कई कई गाने रिकॉर्ड किया करती, तो बीच में कभी कभार उन्हें रिहर्सल भी किया करना पड़ती ना। तो ऐसे कभी कभार मैंने सुना है दीदी लता मंगेशकर को बोलते हुए, उनसे जब कई कई इंटरव्यूज किए हैं, कि जब रियाज करना होता तो ज्यादा जगह नहीं हुआ करती, एंड ट्रेन में दौड़ा दौड़ी करते हुए अगर थक जाती तो उस समय का जो महालक्ष्मी मंदिर था, उस महालक्ष्मी मंदिर के पीछे की तरफ जो दरिया बहता है वहां पर बड़े बड़े पत्थर हुआ करते, एंड दीदी लता मंगेशकर उन पत्थरों के बीच में जाकर उस पानी में बैठकर अपने आवाज से रियाज किया करती, ताकि अगले दिन जिस गाने की रिकॉर्डिंग हो उस रिकॉर्डिंग में उनके उच्चारण, उनका सुर, उनकी लय, उनका ताल सब सही हो। हम में से हम सब बहुत खुशकिस्मत नहीं है, हम अब सिर्फ महालक्ष्मी मंदिर के दीदार कर पाते हैं, उन पत्थरों को भी नहीं देख पाते जिन पत्थरों ने पवित्र हुआ हुआ चाहा था। लता मंगेशकर उन पर बैठकर अपने गानों का रियाज की हैं। हम में से कई कई लोग हैं जिनके कई कई फेवरेट्स होंगे लता मंगेशकर के। तो अगर इंस्टाग्राम पर है तो @मिर्चीजीतूराजन इंस्टाग्राम, या ट्विटर पर है तो @मिर्चीजीतूराजन ट्विटर, या लिंक्डइन पर अगर है तो JeeTuraj लिंक्डइन पर। तेरे दीदी लता मंगेशकर की कोई भी फेवरेट बात, कहानी या गाना भेजना अच्छा लगेगा। इज्जत बढ़ जाएगी कि हमारी टीम ने लता मंगेशकर के नाम ये जो शो समर्पित किया है उस पर तूने भी अपना सहभाग दिया। मिर्ची पर लता फॉरएवर जीतूराज।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉरएवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉरएवर। मिर्ची पर सुनिए लता फॉरएवर, फॉरएवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट।

मिर्ची पर जारी रहेगा लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। 89.6 मिर्ची, सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर। मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर इट्स हॉट।
1: अभी जो बात हम दीदी लता मंगेशकर से पूछने वाले हैं या पूछ चुके थे उसे आज के जो जेंजी हैं, अल्फा हैं या फिर मिलेनियल्स भी हैं वो गौर से सुना। मिर्ची पर लता फॉरएवर चल रहा है। हमारी टीम मिर्ची ने विचार किया कि इस बार जब लता मंगेशकर की वर्षगांठ हम मना रहे हैं, उनके बर्थडे उनके सालगृह पर एक अनूठा प्रयोजन करें। मिर्ची पर लता फॉरएवर आपके रेडियो साथी आरजे जीतूराज के साथ आप सुन रहे हैं, जहां पर लता मंगेशकर से हमारे संपूर्ण रेडियो जीवन में जो बातें करी हैं, कभी उनसे मिलकर, कभी रूबरू, कभी फोन पर, उनमें से कुछ अंश आपके खदमत में हम पूरी टीम ने मिलकर बहुत परिश्रम किया है शो को संचालित करने के लिए। ये उनके जन्मदिवस पर हमारी खास भेंट है। आरजे जीतूराज, आपके रेडियो साथी ने कहा कि जितने भी जेंजी हैं, जितने भी नौजवान हैं, ये अब जो बात आपको सुनाने जा रहे हैं उसे गौर से सुनना, कुछ पैगाम मिलेगा लता मंगेशकर से। जब हमने ये पूछा था
2: दीदी को कैसे लगता होगा, दीदी मंजा आमच्या साठी, हम जैसों के लिए दीदी एक संपूर्ण युग है संगीत का, लता मंगेशकर है, आणि आमच्या युगातले काही लोक तुम्हाला गाण्याची म्हणजे सूर वगैरे सांगत असेल की ये गाना ऐसे है वैसे, तो दीदी को कैसे लगता है?
3: मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा जब म्यूजिक डायरेक्टर के सामने, मतलब आज 65 साल से जब भी मैं म्यूजिक डायरेक्टर के सामने बैठती हूँ और गाना सीखती, तो मैं ऐसे सीखती हूँ कि ये सामने जो बैठा है वो जो चाहते हैं वो गाना मेरा फर्ज है, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर को प्रोड्यूसर लेते हैं और वो जो बनाते हैं वो अच्छा ही है। अगर कभी मुझे ऐसा लगे कि भाई यहाँ कुछ ऐसा करें या वैसा करें या कोई तान रखे, तो वो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि अगर ऐसा किया तो कैसा लगेगा, तो उन लोगों को अगर पसंद आ जाए तो वो होता है।
1: वाह वाह।
3: और ये मेरे साथ सबसे ज्यादा शंकर जय किशन के साथ होता था। शंकर जय किशन जब मेरे साथ रिकॉर्डिंग होती थी उनकी
1: जी,
3: तो वो मुझे कहते थे कि आपको अगर कुछ इसमें लगे कि यहाँ कोई हरकत कहनी है या कोई आलाप गाना है तो आप गाइए, हम आपको इतनी आजादी देते हैं आप गाइए, तो गाते वक्त अच्छा भी लगता था।
1: नाउ आई नो, अभी मेरे को पता है कि क्यों शंकर जय किशन के स्वरबद्ध किए हुए गाने इतने अच्छे हुए हैं।
3: शंकर जय किशन, कभी कभी मदन भैया भी कहते थे कि आपको जो अच्छा लगे वो गाए, तुम गाओ लता, तुम्हें अच्छा लगे वो गाओ, ये कहा करते थे वो। और अगर मैं कोई उनके मतलब पसंद की कोई तान वगैरह कहूँ तो वो बहुत खुश हो जाते थे।
1: क्या बात है। लता फॉरएवर, मिर्ची पर लता फॉरएवर आप सुन रहे हैं। लता मंगेशकर के वर्षगांठ पर जिन चीजों ने आपके इस रेडियो साथी आरजे जीतूराज को रेडियो के साथ जुड़े हुए रखा है, अब एक संपूर्ण युग हो गया, उसमें से कुछ कारण ऐसे हैं जैसे लता मंगेशकर के साथ की ये साक्षात्कार, ये बातचीत कैसे लग रही है? उनकी एक और वर्षगांठ को हम कुछ प्रफुल्लित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे आरजे जीतूराज ने कहा कि ये एक संपूर्ण फुलवारी है जिसमें कई कई फूल हैं जो सुगंधित हैं, महकते हैं, उनमें से कुछ चूग कर एक माला बनाकर अपने श्रोता साथियों पर हम न्यौछावर कर रहे हैं। हमारा ये छोटा सा प्रयत्न आप लोगों को कैसे लग रहा है, आप कौन से शहर में सुन रहे हैं ये अवश्य बताना। इंस्टाग्राम पर हमें मिर्ची पर लता फॉरएवर आपके ये रेडियो साथी आरजे जीतूराज, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल आपने लिखा होगा मिर्ची जीतूराज, MIRCHIJEETURAJE। संपूर्ण हिंदुस्तान में जहां जहां हमारी आवाज पहुंच रही है, आपका लता का कोई फेवरेट गाना अगर हो या कोई किस्सा हो वो भी शेयर करें, हम उसे पढ़ना पसंद करेंगे, इससे हम कुछ और मालामाल हो जाएंगे। जैसे कहा, लता की वर्षगांठ पर ये मिर्ची की खास भेंट, मिर्ची पर लता फॉरएवर विद आरजे जीतूराज। नमस्कार, जय हिंद, हिंदोस्तान हमारे।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

मिर्ची पर जारी रहेगा लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर। मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट।
1: तमाम हमारे श्रोता साथियों के लिए हम इस बार लता मंगेशकर की वर्षगांठ पर मिर्ची पर लता फॉर एवर, यानी ये सिर्फ मिर्ची के लिए
2: तो नहीं।
0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट।
1: तमाम हमारे श्रोता साथियों के लिए हम इस बार लता मंगेशकर

0: मिर्ची साथी, रेडियो साथी जितुराज ने लता मंगेशकर से, क्योंकि स्वयं हमको भी ये उधेड़बुन हमेशा रही थी कि क्या लता मंगेशकर ने सिर्फ हिंदुस्तानी भाषाओं में गाया है। ये हम सब जानते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की तकरीबन प्रत्येक भाषा में गाया है। तो गंगा जमनी संगम का दूसरा पर्यायवाचक नाम लता मंगेशकर है। फिर एक बार ऐसे भी आया जब हम स्वयं, हमारे पैरों तले की जमीन जो है वो मानो हिल गई थी। ऐसे क्या हुआ था, ये इंटरव्यू का टुकड़ा सुनिए।
1: सारी भाषाओं में तकरीबन गा चुकी हैं दीदी आप?
2: मैं हिंदुस्तानी भाषाओं में तो गा चुकी हूँ, पर मतलब हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में गाया है मैंने, 36 भाषाओं में गाया है।
1: बाप रे बाप, 36 भाषाओं में
2: कुछ? हाँ, और 36 भाषाओं में कुछ ऐसे है जो मैंने सिर्फ शो में गाया है। जैसे मैं रशिया गई थी तो रशियन में मैंने गाया था, मैं फिजी गई थी तो मैंने फिजी जुबान में गाया था, मैं सुरीनाम गई तो सुरीनामी जो थी उसने गाया था, फिर मैंने कनाडा में एक अंग्रेजी गाना गाया था। मतलब मैं जब अफ्रीका गई थी तो मैंने स्वाहिली में गाया था।
1: काय बापरे, माझे अशी म्हणजे मुरकुडी वळणार आता, स्वाहिली में गाया आपने दीदी?
2: और स्वाहिली मेरा गाना बहुत पॉपुलर हुआ था और वो रिकॉर्ड में भी है, मतलब एक शो में मैंने गाया था तो वो गाना उन्होंने रिकॉर्ड करके मतलब रिकॉर्ड किया था।
1: क्या बात, दैट इज दीदी लता मंगेशकर। दीदी यू नो, आपने मुंबई का एक संपूर्ण युग देखा है, म्हणजे कोल्हापुरावरून जेव्हा तुम्ही मुंबईला आले आणि मुंबई मध्ये, मी दीदी को पूछू की मुंबई की बारिशें जब आती हैं, बारिश पाऊस जेव्हा येतो, तो दीदी इन बारिशों को देखकर क्या सोचती हैं?
2: मुझे बारिश पसंद है, पर वो जो मतलब एक साल पहले जो हुई थी वो बारिश, मतलब वो तो कुछ कमाल ही हुआ था, पर मुझे बारिश वैसे ही बहुत अच्छी है। मैं सबसे ज्यादा घबरा जाती हूँ गर्मियों में, मुझे सर्दियों में अच्छा लगता है, बारिश में अच्छा लगता है।
1: बारिशों मध्ये जरा घरी एकट्या असलात, समजा जे कदाचित नसेल होत केव्हा, पण अगर अकेली है तो दीदी को क्या करना पसंद आएगा जो बहुत बारिश हो रही है बाहर?
2: मुझे भजिए खाना अच्छा लगता है।
1: दीदी आप पकाती हैं? सॉरी, म्हणजे तुम्हाला कधी काय जेवण वगैरे करायची कला वगैरे कधी केलं?
2: मी स्वयंपाक फार छान करते।
1: व्हाट इज योर फेवरेट डिशेस दीदी, क्या पकाती है मस्त?
2: मैं मराठी स्टाइल का तो मैं सब पका सकती हूँ, और नॉनवेज में मैं मटन अच्छा बनाती हूँ, मैं पसंदा बनाती हूँ, मैं चिकन बनाती हूँ, मुझे सब आता है।
1: हाउ स्वीट, दीदी के हाथ का।
2: मैं पूरण पोळी भी अच्छी बनाती हूँ।
1: पुरणपोळी बनवता तुम्ही?
2: यस, मला माझ्या आजीने शिकवलं।
0: यह हसी अब सिर्फ यादों का खजाना है। इसे गुनगुनाते हंसी के साथ मिर्ची पर लता फॉरएवर किया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा है ये अनुभव बिल्कुल निराला आपके लिए। इस शो को मिक्स करते हुए मेरे अंदर जो लता के सुर बसे हैं वो पुनश्च जागृत हो गए। आप लोगों को कैसे लगा अवश्य बताना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। मगर एक ख्याल है जो यहाँ कहे बगैर हर कलाकार ये शेर कभी ना कभी बोलता होगा जो दीदी ने कहीं पर गाकर छोड़ा है, कि मेरे तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, देख ले सब आकर मुझे। एक जमाना था जब अभी आपका ये जो रेडियो साथी है जीतुराज, मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया था करीब 25-30 सालों तक, तो कोई जानता नहीं था कि मैं कैसे दिखता हूँ। फिर हमारी टीम ने कहा कि आपको चेहरा दिखा देना चाहिए, तो अब लोग बाग इंस्टाग्राम वगैरह पर मेरा चेहरा देख सकते हैं। मगर उस समय मेरे को इस बात से बड़ी त्रासदी होती थी कि मेरा चेहरा दिखाना क्यों आवश्यक है, और तब दीदी का गाया हुआ ये शेर मेरे को बड़ा प्रोत्साहित करता कि मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, देख ले सब आकर मुझे। मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, देख ले सब आकर मुझे। मैं कोई तमाशा तो नहीं, मगर हर कलाकार एक तरह से तमाशा ही होता है। मिर्ची पर लता मंगेशकर की वर्षगांठ पर ये हमारी एक अदनासी कोशिश मिर्ची पर लता फॉरएवर, आपको कैसे लगा अवश्य बताना, और ऐसे प्रयोजन हम करते रहेंगे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है मिर्ची जीतुराज, MIRCHIJEETURAAJ। भेजना कौन से शहर में सुन रही है अवश्य बताना हमारे इंस्टाग्राम के आईडी पर। और सुनने के लिए बहुत बहुत सादर धन्यवाद, सादर आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।
3: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट,
1: इट्स हॉट। 89.6
2: मिर्ची।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर। मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट,
1: इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट
1: मिर्ची पर लता फॉर एवर। लता मंगेशकर सर सम्रागी कोकिल कंठी सरस्वती लता मंगेशकर के वर्षगांठ पर टीम मिर्ची का ये विशिष्ट प्रयोजन है जहां पर हम मिर्ची पर लता फॉर एवर कर रहे हैं। आरजे जीतूराज को ये जिम्मा हमारी टीम मिर्ची ने देकर हमारी इज्जत अफजाई करी है जहां पर हम लता मंगेशकर के साथ के कुछ निजी अनुभवों की बात कर रहे हैं, कुछ उनके साथ हमारे जो साक्षात्कार हैं इंटरव्यू हैं उनके कुछ पीसेस कुछ टुकड़े आपके खदमत में पेश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये हमारा प्रयत्न पसंद आ रहा है। मिर्ची पर लता फॉरएवर में एक दिन ऐसे भी था जब हमें याद है हम हमारे लाइव शो में मुंबई में हम लाइव शो करते हैं, अब लाइव शो में बहुत बिजी थे और उस व्यस्तता में हमें पता चला हम कुछ दिनों से लता मंगेशकर से बातचीत करने का प्रयत्न कर रहे थे, कोई एक विशिष्ट प्रयोजन था और अचानक से हमें फोन आया था लता मंगेशकर की टीम से कि आज लता दीदी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है और फिर कुछ हो गया जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए थे। तो हमने दीदी को नम्र विनती की कि दीदी हम फोन पर आपसे बात करें तो चलेगा क्या। वो लता थी, वो कभी भी ना नहीं कहती थी। हमारा पहला जो उनके साथ का किस्सा था जो हम बता चुके हैं, उसके बाद जब जब हमने इंटरव्यू के लिए फोन किया या उनके साक्षात्कार के लिए उनसे व्यक्तिगत तौर से मिलने के लिए गए, लता ने हमें इंटरव्यू दिया था, उनकी भलमनसाहत थी ये। तो एक सवाल उनसे हमने लिसनर जिन हमारे जो श्रोता साथी हैं मुंबई में उनके हवाले से पूछा था, ये ध्यान से सुनना, ये उस समय का टुकड़ा है जब रीमिक्सिंग अपने उरूज पर पहुंचने लग गई थी और लता दीदी उस समय गाना थोड़ा कम कर दी थी। ठीक है, संपूर्ण विश्व में जो ये सुन रहे हैं, हिंदुस्तान में जो सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना किस तरह से जब एक किंवदंती अर्थात एक लेजेंड बात करती हैं अपने गानों के बारे में और आज की पीढ़ी के बारे में जो संगीत को एक अलग दिशा निर्देश दे रहे हैं। मिर्ची पर लता फॉरएवर अब आरजे जीतूराज के साथ हैं, सुने।
2: मैंने पिछली बार आपका इंटरव्यू किया था उसके बाद ये सवाल आए हैं तो उसमें से एक सवाल कि दीदी लता मंगेशकर फिर से हिंदी फिल्मों में कब गा रही है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है?
3: नहीं, अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ तय नहीं किया है कि नहीं गाऊंगी और ऐसा भी कुछ तय नहीं है कि कब गाऊंगी। जब कोई अच्छा मुझे लगेगा, ऐसी फिल्म लगेगी जिसमें सब गाने हैं मेरे, तो मैं गाऊंगी।
2: ये इन दिनों जो कहीं आपके गाने पॉपुलर गाने रीमिक्स होते हैं, दीदी को इन पर गुस्सा नहीं आता? कहाँ लता की आवाज और कहाँ ये आजकल रीमिक्स करके गाए हुए गाने?
3: नहीं, गुस्सा क्या आएगा, पर उनके लिए मुझे एक तरह से दया आती है कि उनके लिए कोई नई चीज तो नहीं ना गाते, वो वही पुरानी चीजें हमने जो गा के रखी है वही गाते हैं, तो उनका कोई उनका नाम उसमें क्या हुआ।
2: क्या बात है।
1: तो एक तरह से देखा ये मिर्ची पर लता फॉरएवर में लता की वर्षगांठ पर एक प्रयत्न है फिर से लता को आपके खदमत में। वो जब बात करती उनका लहजा उनका अंदाजे बयां वो आपके खदमत में हमारी टीम ने लाने का प्रयत्न किया है आरजे जीतूराज के कंधों पर। ये बहुत बड़ा जिम्मा सौंपा है, उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा है। इस जवाब में देखा उन्होंने कैसे जो गानों का रिमिक्स हो रहा है उसके बारे में कहा कि फिर जो काम कर रहे हैं वो कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं। अब अच्छा है आज जब आप ये शो सुन रहे हैं तब कहीं कहीं ओरिजिनल गाने आ रहे हैं, बस मगर न तो आशा है हमारे साथ न तो लता है हमारे साथ। आप में से जो संपूर्ण हिंदुस्तान में ये शो सुन रहे हैं उनको मैं बताऊं कि मैंने अजय अतुल जो आजकल के दौर के सबसे कामयाब मौसीकारों में से एक है, मैंने अपने मुंबई के रेडियो शो पर कहा था कि अजय अतुल की जिंदगी की सबसे बड़ी हार ये है जो हमेशा रहेगी। और मैंने ये तब कहा था जब आशा और लता जिंदा थी कि उन्होंने आशा भोसले और लता मंगेशकर से गाने गंवा लेने चाहिए, नहीं गंवाए। अब अजय अतुल कितना भी संगीत करें एक तो खला हमेशा रहेगी कि वो आशा और लता से गंवा नहीं पाए। आपकी राय आपके विचार हमें अवश्य भेजना हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मिर्ची जीतूराज, हमारी आईडी है MIRCHIJEETURJJ। मिर्ची पर लता फॉरएवर चल रहा है, उनके जन्मदिवस पर ये टीम मिर्ची का प्रयत्न है उन्हें फिर से हमारी खदमत में वैसे ही प्रस्तुत करें जैसे वो थी जैसे वो हैं जैसे वो रहेंगी। ये ना भूलें कौन से शहर में सुन रहे हैं ये हमें बताना। मिर्ची पर लता फॉरएवर आपके रेडियो साथी आरजे जीतूराज के साथ, नमस्कार, जय हिंद, ए हिंदोस्तां हमारे।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉरएवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉरएवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉरएवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतूराज के साथ मिर्ची पर। It's hot.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर। मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट।
1: नमस्कार। मिर्ची पर लता फॉरएवर चल रहा है आपके रेडियो साथी आरजे जीतू राज के साथ, जहां पर भाव है, स्पर्श है, उम्मीद है कि वो एक गायिका जिनको हम सुर सरस्वती कहते हैं, उनके जन्म दिवस पर उनको अपनी तरह से उनके ही इंटरव्यू, उन्हीं के विचारों का तोहफा दें। आगे बढ़ते हैं हम दीदी लता मंगेशकर की बातें करते हुए। जीतू राज अपने स्वयं के मिर्ची के लाइब्रेरी से कुछ ऐसे मोती चूग कर लाएगा जिनका हार बनवाएगा और तेरे को इस हार से अलंकृत करेगा। कई बार ऐसे मौके मिले हैं जब दीदी से पर्सनली मिला था जीतू राज, उनसे फोन पर बातें की है, इंटरव्यू किया है, बस ऐसे ही जाकर उन्हें चरण स्पर्श किया है। इसी में से एक ऐसा टुकड़ा है दीदी के साथ के बातचीत का, जहां पर बड़े ही स्वाभाविक तौर से मदन मोहन के बेटे और मदन मोहन का जिक्र हो गया था, उसका ये टुकड़ा सुनिए।
2: रेडियो मिर्ची पर मुंबई हमारी टेलीफोन लाइन को गद गद कर देती है जब भी हमारी लाइन पर होती है। हमारे साथ आदरणीय दीदी लता मंगेशकर है। दीदी पाए लागू चरण स्पर्श जीतू राज।
3: नमस्कार। कैसे आप?
2: धमाल। आप कैसे हैं?
3: मैं ठीक हूँ, थैंक यू।
2: बाबरे, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने सुना है कि मदन मोहन साहब की कुछ पुरानी धुने हैं जो हम लोगों ने कभी नहीं सुनी, वो आप लोग फिर से लॉन्च कर रहे हैं किसी एल्बम में दीदी?
3: जी हाँ, उनके बेटे ने ये किया है, मतलब संजीव कोहली ने
2: जी,
3: और उनके गाने अभी वो है, और उसके साथ वीर धारा का मेकिंग का वो उन्होंने वो भी बनाया है, मतलब वो वीर धारा में था वो उन्होंने लिया है, और दो रिकॉर्ड उसने मतलब बनाए हैं।
2: अरे बाप, यानी दीदी ये कई सालों पहले की रिकॉर्डिंग्स होंगी ना?
3: बहुत बहुत पुरानी है।
2: मैं अगर साल याद करने को कहूँ तो आएगा?
3: मदन भैया को गए हुए कितने साल हुए देखिए ना, उससे पहले उन्होंने जो बनाए थे वो गाने हैं।
2: बाप रे बाप।
3: और वो सरगम एचएमवी के पास नहीं थे, शायद उनके बेटे के पास थे, तो उसने वो रिकॉर्ड बनाया है।
2: क्या
3: बहुत सुंदर मतलब सीडी बनी है, मेरे पास आई है वो।
2: अच्छा, आपको सुनने का चांस मिला था?
3: जी हाँ।
2: मैं उसमें से, यानी आपके जो तमाम फैंस हैं, करोड़ों हैं सारी दुनिया में जो इंटरव्यू सुनेंगे, उनको मैं कुछ अंदर की बात पूछूं, एल्बम बाहर आए हमारे लिए तो उसके पहले, तो दीदी क्या बताएंगी उस एल्बम की कुछ अंदर की बात?
3: एल्बम में खास बात तो मुझे ये लगी कि एक तो पुराना है, इसमें कोई शक नहीं, और मदन भैया का फिर से रिकॉर्ड आना एक बड़ी बात है इतने सालों बाद। उसमें रफी साहब के भी गाने हैं, और शायद महेंद्र कपूर भी है, मैं हूँ, आशा है शायद, तो मतलब ये सारे ही लोग उसमें गाए हुए हैं, तो एक नई बात हो गई ना
2: दीदी।
3: और अच्छी बात हुई, आजकल जो चल रहा है म्यूजिक उसमें एक नया ये हुआ है।
2: You said it, आजकल जो चल रहा है उसमें ये नया ट्रेंड बहुत आवश्यक है। सुरों की कमी है दीदी, वो सुरों की कमी शायद आप लोग भरेंगे वापस।
3: हम लोग भरेंगे या नहीं मालूम नहीं, पर कम से कम थोड़ा अलग तो लगेगा।
2: क्या बात है। बहुत अच्छा।
1: ये कहना जरूरी नहीं है जीतू राज का कि तूने गौर किया होगा किस तरह से जिस मदन भैया को बड़े प्यार से मदन भैया दीदी कहती हैं, उसका जिक्र इसमें आ गया। एंड हम में से कई कई लोग जो दीदी के चाहने वाले हैं, इस मदन भैया की कई कई कहानियां दीदी के थ्रू सुने हैं। मिर्ची पर दीदी लता मंगेशकर साष्टांग जीतू राज के सामने मूर्तिमंत है मेरे माइक्रोफोन के रूप में, उन्होंने सादर चरण स्पर्श कहते हुए कह रहा हूँ मिर्ची पर, इट इज लता मंगेशकर।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

मिर्ची पर जारी रहेगा लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। 89.6, 89.6, 89.6। आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। It's hot. It's hot.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट
1: मिर्ची पर लता फॉर एवर। उम्मीद यही है हमारी पूरी जो मिर्ची प्लेटफॉर्म की टीम है संपूर्ण हिंदुस्तान में, हम सब ने मिलकर ये प्रयत्न किया है कि दीदी लता मंगेशकर कोकिल कंठी सुर की सरस्वती जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए उनके वर्षगांठ पर ये एक और हमारा पुष्प गुच्छ जो है हमारे शब्दों का, हमारे ख्यालों का, उनके गानों का, उनके इंटरव्यू के टुकड़े जो हमारे पास थे, उन सबों का ये मिला जुला जो गुलदस्ता है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड इस तरह के प्रयोजन हम करते रहेंगे, इस तरह की कोशिशें करते रहेंगे कि हमारे मिर्ची प्लेटफॉर्म के जितने भी श्रोता साथी हैं उन तक हम कुछ न कुछ नवीन पहुंचाते रहें। मगर आप लोगों की राय, आप लोगों के सलाह मशवरों से हमारा ये प्लेटफॉर्म जिंदा है, चलता रहेगा। तो अपने ख्याल बेसाख्ता भेजे एंड हम आपके ख्यालों का इंतजार करते रहेंगे। वैसे कुछ एक हद बात जो शो के बीच में शायद आपको जीतूराज नहीं बता पाया वो बताते चलें कि हिंदुस्तान के कई कई बड़े बड़े सिनेमा के प्रोफेशनल्स के साथ, हिदायतकारों के साथ, निर्माताओं के साथ, कलाकारों, गायकों, गीतकारों से जीतूराज ने बात करी है। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन से लेकर दीदी लता मंगेशकर, आशा भोसले तक, हमेशा से एक बात हुई है, एक ही ऐसी गायिका, एक ही ऐसी किंवदंती, एक ही ऐसी लेजेंड थी जिनके साथ बात करते हुए हर इंटरव्यू में जरा सा नासाज हो जाता, जरा सा नर्वस हो जाता। मेरे को अभी याद है जब दीदी लता मंगेशकर के इंतकाल की, ये तो उनके जन्म दिवस का विशिष्ट शाहकार हमारी टीम ने आपने खिदमत में पेश किया, मगर जब उनके देहांत की इन्फॉर्मेशन आई थी मैं जहां था वही रुक गया था और वहां से दौड़ाते हुए मुंबई में दीदी का घर जहां पर है उसे प्रभु कुंज कहते हैं, मेरी गाड़ी प्रभु कुंज की तरफ मुड़ गई थी और मैं कुछ देर बस प्रभु कुंज के बाहर रक्त रंजित आंसुओं से खड़ा था। काफी समय लगा मेरे को फिर वहां से अस्पताल तक जाने के लिए और पुनः फिर उनके घर की तरफ रुख करने के लिए। ऐसे हम हिंदुस्तानियों के कई अनुभव होंगे, मेरे ही नहीं, आप में से भी कई होंगे जिनके जिंदगी के कई पहलुओं पर लता मंगेशकर ये नाम लिखा है। हमारे साथ ये अनुभव आप शेयर करें क्योंकि इस तरह के तोहफे हम आपकी खदमत में लाते रहेंगे, लता मंगेशकर के और कई कई जन्म दिवस के स्पेशल्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपका कोई ख्याल, आपका कोई फेवरेट गाना, आपका कोई फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है, भेजना इंस्टाग्राम पर, हमारी आईडी मिर्ची जीतूराज है, MIRCHIJEETURAAJ। उम्मीद है ये शो आप लोगों को पसंद आया होगा एंड जैसे कहा कि हमारी टीम इस तरह के प्रयत्न हमेशा करती रहेगी कि हमारे मिर्ची प्लेटफॉर्म पर आपको हम मनोरंजन का जितना भी सामान है वो देते रहे। हम जब तक फिर से मिले आपके साथ, आपका ये रेडियो साथी जीतूराज आपसे अलविदा तो नहीं लेगा, फिर से मिलने की उम्मीद से कहेगा नमस्कार। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत सादर धन्यवाद। जय हिंद हिंदुस्तान।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लगता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओ टू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, भाई तेरा बस लगता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।

ग्वाले करने को हुड़दंग, गोविंदा के दिन सब हो गए हैं, गोविंदा के संग। अरे समझे,